0: सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, हंसी में खुशी। वाचन स्वर सुधा सिंह का है।
1: हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो चंदन के समान है, किसी के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। खुशी और गम हर व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हंसमुख की श्रेणी में आते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको भाता है, जबकि उदास चेहरे को लोग पसंद नहीं करते। यदि आप मुस्कुराते या हंसते हैं तो सामने वाले लोग भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार हंसकर अपने गमों को भुलाने का प्रयत्न तो करते ही हैं, दूसरों की तकलीफ भी कुछ कम करते हैं। उदास चेहरे लोगों को उदास कर देते हैं। किसी को उदास देखकर आसपास के लोगों को खुशी नहीं होती। ये तो कुदरत की देन है कि किसी की खिलखिलाहट लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और किसी की आंखों के आंसू अन्य की आंखें भी गीली कर देते हैं। हंसी को स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि बताया गया है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जो चेहरे पर एक अनोखी चमक लाता है। यही वजह है कि हंसमुख लोगों के चेहरे दमकते रहते हैं। हंसी मानसिक तनाव को कम करती है। हंसने से मानसिक तनाव कम होता है। जहां तक हो सके तनावग्रस्त व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के साथ जरूर उठना बैठना चाहिए जिन्हें हंसने हंसाने की आदत हो। हंसमुख लोगों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। लोग ऐसे लोगों का साथ पसंद करते हैं जिन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि हमेशा रोना रोने वाले व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। उदासी किसी को नहीं भाती। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आंसुओं पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दुख तकलीफों के साथ भी इंसान को जीना तो पड़ता है। क्यों ना हम सभी आंसुओं के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयत्न करें, थोड़ा खुद हंसें, जरा दूसरों को भी खुशी देने का प्रयत्न करें। हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी।

0: प्रसन्नता तो अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। विशुद्ध हंसी ही खुशी देती है। क्रूर हंसी खुशी देने के बजाय रुला भी सकती है। भद्दा मजाक करना, अपमानित करना, मानसिक चोट पहुंचाना हंसी नहीं बल्कि अशिष्ट है। ये असभ्यता दर्शाता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसना एक घटिया आदत है। जो हंसी खुशी बांटे वही हंसी वास्तव में हंसी है। ये मानवता का तकाजा है, हंसिए हंसाइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, हंसी में खुशी। वाचन स्वर सुधा सिंह का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है कृषि वानिकी और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों से यानी कि फसलों और वृक्षों से लाभ प्राप्त करने की विधि को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें हम पेड़ों के साथ साथ शाकीय पौधे, झाड़ियाँ, फल फूल एवं अनेक तरह के वृक्षों को लगा करके लाभ लेते हैं। कृषि वानिकी का अर्थ है खेतों पर वनों के विकास एवं विस्तार से है। कृषि वानिकी कृषकों को अकेले अथवा भागीदार में अपने संसाधनों के संबंध में अपनी भूमि पर वन लगाने अथवा प्रबंधन करने की दिशा में किया गया एक संकल्प है। कृषि वानिकी के उद्देश्य क्या होते हैं इस संबंध में आप जान लें। वर्षा के जल का प्रभावी उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेकार बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग कर पोषक तत्वों के जमाव से भूमि का सुधार भी इससे होता है। बेरोजगारों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी इसका प्रमुख कार्य है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जलवायु को सुव्यवस्थित कर सुधार करना भी कृषि वानिकी का उद्देश्य है। किसान अपनी जमीन से आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, फल, चारा, जलावन, लकड़ी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। निम्न भू उर्वरता, अधिक क्षरण और भू अपरदन से प्रभावित भूमि के टिकाऊपन तथा भूमि उत्पादकता में बढ़ोतरी इससे कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि वानिकी का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भवन निर्माण के लिए इससे सस्ती और हल्की लकड़ी प्राप्त होती है। स्थानीय लोगों के लिए जलावन हेतु लकड़ी मिल जाती है, पशुओं के लिए चारा भी मिलता है और हरी खाद भी प्राप्त हो जाती है। ठंडी हवाओं से फसलों की सुरक्षा भी होती है। कृषि वानिकी हेतु जो आप पौधे का चुनाव करेंगे या पेड़ का चुनाव करेंगे वो शीघ्र बढ़ने वाला होना चाहिए, जिससे कि कम समय में किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सीधा तना वाला होना चाहिए ताकि ज़्यादा छाया नहीं फैलावे, और ज़्यादा छाया नहीं फैलाने से हमारी मुख्य फसल को नुकसान नहीं हो। कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। जड़ें भूमि में नीचे जाकर पोषक पदार्थ ऊपर लाती हैं, जिससे कि अन्य फसलों को भी लाभ होता है। दलहनी बीज वाले जो वृक्ष होते हैं कृषि वानिकी में वे बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि

0: वे वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं और उससे मुख्य फसल को भी प्राप्ति हो जाती है। कम से कम शाखाएं निकले और जमीन पर से ही अधिक घनी न हो, इस बात का आप ध्यान रखते हुए वैसे वृक्षों को साथ लगावें। कम पोषक तत्व, सिंचाई और देखभाल की आवश्यकता पड़े उस तरह के पेड़ों को भी लगाना चाहिए। प्रतिकूल दशाओं में भी सफलतापूर्वक जो पेड़ वृद्धि कर सकें कृषि वानिकी के लिए आवश्यक होते हैं। कृषकों के लिए उसकी पत्तियां, लकड़ी आदि लाभदायक हो, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा प्रदान कर सकें, रोगों के प्रति रोगरोधी हो, छाया से सहनशील हो, ऐसी फसलें और ऐसे वृक्षों को ही लगाना चाहिए। जड़ें एवं उनकी वृद्धि की विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिससे भूमि की विभिन्न सतहों पर कृषि फसल प्रभावित न हो। पौधों का प्रत्येक भाग किसानों के लिए उपयोगी है, तो इसलिए आप कृषि वानिकी का प्रयोग कर सकते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। इससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ईंधन, चारा, पत्ती और रेशा, गोंद आदि प्राप्त हो सकता है। भूमि कटाव की रोकथाम हो सकती है। कृषि के साथ यदि आप पशुपालन करते हैं तो कृषि वानिकी इसके लिए वरदान है। इस पद्धति के द्वारा ईंधन की भी प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ियों की भी प्राप्ति होती है। तो यदि किसानों की आय दोगुनी करनी है तो इसके लिए कृषि वानिकी आवश्यक है।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था कृषि वानिकी और वार्ताकार थे
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और काली

0: घाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

धन्य है माता सीता, फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया। और फिर एक दिन

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुईं। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है बच्चों के सर्वांगीण विकास और आहार। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक कुमार पांडे। श्रोताओं, बच्चों के सर्वांगीण जो विकास है उसमें शारीरिक विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए ज़रूरी है कि उनका आहार किस तरह के हो। इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर विवेक कुमार पांडे हैं। डॉक्टर साहब,
2: जी नमस्कार, धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा विषय चुना है आज के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भी बच्चे जो जन्म ले रहे हैं तो उनका आहार हमारे जो गार्जियन है, पेरेंट हैं,
1: जी
2: उनके
1: जी
2: हाथ में है। बच्चे खुद से तो कर नहीं सकते हैं,
1: जी
2: तो जब वो ध्यान देंगे उस चीज़ से, तो जो कैसे एक ईंटे के से शुरुआत होती है घर का बनना, उसी तरह बच्चों का भी शरीर का विकास एक एक आहार से उसका विकास
1: उस पे
2: होगा।
1: डिपेंड करता है। जी
2: तो उसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती 6 महीने तक हम लोग बार बार ये दोहराते हैं कि माँ बाप बच्चे को सिर्फ दूध दें, माँ का दूध दें।
1: जी
2: ये जो डब्बे का दूध या गाय का दूध लोग सोचते हैं कि इजीली अवेलेबल है, आसानी है, उस पे नहीं जाएं। आहार की शुरुआत वहीं से होती है कि पहला तो सबसे पहले जन्म लेता है बच्चा तो गाढ़ा पीला दूध जो
1: माँ का।
2: बच्चे को इम्यूनिटी देता है
1: जी
2: माँ
1: जी
2: का, वो जितना जल्दी हो सके जन्म होते ही पहले बच्चे को माँ को दिया जाता है। और इस चीज़ के लिए माँ को तैयार करना होता है, मेंटली फिजिकली उनको काउंसिल करना होता है, क्योंकि पहली बार जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ भी उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं। तो सबसे पहला आहार वही है माँ का दूध, और वो सबसे उत्तम है। तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है। फिर 6 महीने के बाद एक पड़ाव आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है,
1: जी
2: कि जब बच्चा 6 महीने का हो गया तो उस समय हम बच्चे को बाहरी जो खान पान है वो बच्चे में देते हैं। तो उस समय हम लोग को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या दें।
1: जी
2: तो शुरुआती जब बच्चा 6 महीना का हो गया तब हम बच्चे को शुरुआत में चावल का बना हुआ या जो दाल के बने हुए आइटम है उससे
1: जी
2: शुरुआत करते हैं। गांव
1: दाल के
2: में दाल का
1: पानी।
2: पानी बहुत
1: जी जी
2: प्रचलित है,
1: जी
2: लेकिन दाल का सिर्फ पानी नहीं, पूरा दाल दीजिए, उसमें बहुत सारा ये रहता है। शुरू में देने में दिक्कत आती है इसलिए
1: जी
2: दाल
1: जी
2: का पानी प्रचलित है। तो शुरुआती दिनों में
1: अच्छा, अच्छे से पका हुआ जो
2: पका
1: दाल
2: के
1: है।
2: हम लोग खाते हैं उससे ज़्यादा उसको पकाना पड़ता है। और
1: जी
2: उनके बच्चों के आहार जो है, बच्चों का आहार जो है वो उनके लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए।
1: जी
2: अगर बच्चा देख के

0: पसंद कर रहा तो वो खाएगा, देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में अच्छा होना चाहिए, उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: और बच्चे चबा नहीं सकते अच्छे से, तो ज़्यादा उनको पका के और थोड़ा मैस देना रहता है, और कोशिश करना रहता है कि हर आहार जो है बदल के दें। मतलब अभी आपने दिया है कि खिचड़ी बना के दिया है, तो अगली
1: जी
0: बार
1: जी
0: दलिया बना के दे दिए, फिर कुछ सूजी का हलवा बना के दिए, दाल बना दिए, रोटी दूध में मैस के खिला दिए, तो आहार बदलेंगे। और जब बच्चा आपका 6 महीने से आगे बढ़ेगा, तो हमें धीरे धीरे दूध को कम करना है। बहुत गार्जियन क्या करते हैं कि दूध
1: ज़्यादा से
0: पिलाते
1: ज़्यादा
0: रहते
1: दूध
0: हैं,
1: पिलाते हैं।
0: तो 6 महीने तक तो दूध पिलाना है, लेकिन 6 महीने के बाद दूध ज़्यादा पिलाने से बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनको धीरे धीरे खाना खिलाएं, और जब बच्चा 9 महीना का हो जाए तो 4-5 बार उनको खाना खिलाना है, और जैसे और 1 साल से ऊपर हो जाए तो दूध और कम कर देना है। लेकिन माँ का दूध आप 2 साल तक दें तो और ये उचित
1: बेहतर
0: रहेगा,
1: है।
0: 1 से 2 बार पिलाते रहें तो उसका फायदा है।
1: डॉक्टर साहब, अगर जैसे कि एक
0: जी
1: बच्चा अगर 1 साल का हो गया, तो
0: जी जी
1: दूध की मात्रा लगभग दिन में कितना
0: ये
1: होना
0: हम लोग
1: चाहिए?
0: बोलते हैं कि 400-500 ml से ज़्यादा दूध नहीं देना है, ताकि बच्चे को दूध में उतना वो पार्ट नहीं है जो बाद में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है। जितना प्रोटीन चाहिए उतना नहीं है, जितना शुगर चाहिए नहीं है, तो हमको सॉलिड फूड ज़्यादा देना है।
1: जी।
0: 1 साल के ऊपर 4 से 5 बार मिनिमम सॉलिड फूड, और बीच में स्नैक्स के तौर पे कुछ फ्रूट्स या नट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं। और आज के डेट में बच्चे मार्केटेड सामान पे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनसे गार्जियन से अनुरोध है कि दूर रखें थोड़ा, जितना
1: बाहर के
0: संभव हो
1: जंक फूड
0: सके।
1: से
0: जय
1: उनकी
0: जी
1: आदत वैसे भी
0: जी
1: बाद में
0: जी
1: चल के आदत लग जाएगी,
0: जी
1: इसलिए उनसे
0: वो टेस्ट वैसा वो आ जाता है बच्चों के वो पे कि वो फिर बाकी नॉर्मल खाना खाने में दिक्कत आती है।
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के आहार, उनके शारीरिक विकास के लिए बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में विषय था बच्चों के सर्वांगीण विकास और आहार। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।
1: उसको भगवान ऐसे लोक में भेज देते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का मालिक है।
2: अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे एन राजम का वायलिन वादन, राग देवगिरी विलावल। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का प्रसारण होगा दिन के 10:15 पर। और बाल कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। वैज्ञानिकी कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर।

0: पूरी बुलेटिन का प्रसारण होगा शाम के 6:05 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा। सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम का थीम है वंचितों को वरीयता। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 8:00। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात के 9:30 पर और रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10:00। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहारस्य भवन निर्माणस्य सम्पत्ति क्रय विक्रयणस्य च विषये विशेष समवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमा सुरक्षा बलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत 5 वर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुं अर्हन्ति। इतः पूर्वं आवेदन समर्पणाय अंतिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकः एव आसीत्। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञान विभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधार वृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तर राज्यानां अधिकतर भागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके गोवायां तमिलनाडौ पुदुच्चेर्यां अंडमान निकोबार

0: द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीयपुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नवचण्डीगढे भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो

0: चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 7 जून है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब आगे आपको आज उन प्रमुख व्यक्तियों के जन्मदिन से अवगत कराते हैं। सुमित अंतिल, जो कि भारत के भाला फेंक पैरा ओलंपिक पैरा एथलीट हैं, इनका जन्म 7 जून 1998 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति, इनका जन्म 7 जून 1974 ईस्वी को हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास, इनका जन्म 1914 ईस्वी को 7 जून को हुआ था। अमेरिकी प्रसूति एनस्थेटिस्ट थी वर्जीनिया एपगर, इनका जन्म 7 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में फिर से आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम में अब जानते हैं आज का इतिहास और देखते हैं क्या छुपा है आज के इतिहास में। 7 जून 1539 ईस्वी को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। 7 जून 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 7 जून 1989 ईस्वी में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। इनकी यात्रा 7 जून 1995 ईस्वी को शुरू हुई थी। 7 जून 1998 ईस्वी को स्पेन के कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता। 7 जून 2007 ईस्वी को अमेरिका ने सऊदी अरब के राजदूत रहे प्रिंस बांद्रे बिन सुल्तान के हथियारों की दलाली में करोड़ों पाउंड के घोटाले का खुलासा किया था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज के दिन का इतिहास। कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारे आज का हालचाल का अंक अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगला पॉप म्यूजिक सुनिए, अलिसा चिनॉय की आवाज में।

इसी के साथ पॉप म्यूजिक यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए एन राजम का वायलिन वादन, राग देवगिरी बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे एन राजम का वायलिन वादन, राग देवगिरी बिलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: Collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के

0: साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
3: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीना।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
4: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी।

0: दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलावामी सरहदों पर जायदादों के खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जाँच एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। और फुटबॉल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर लगातार छठी मरतबा खवातीन की सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलावामी सरहदों पर जायदादों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अमित शाह की तरफ से हिदायत उस वक्त सामने आई जब उन्होंने शिमाल मशरिकी रियासत के सरहदी इलाकों से मुतालिक BSF के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये हिदायत भी की कि गुज़िश्ता 5 साल की ज़मीन से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की पूरी चेन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी ज़िलों में माली ज़ाब्तगी को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। जनाब शाह ने हिदायत दी कि कलेक्टर्स और GST अफसरों को भी तरबियत दी जानी चाहिए और बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT जाली करेंसी का सर्वे कराए। वजीर दाखला ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वालों को तरबियत देने के लिए कैंपों का अहतमाम किया जाना चाहिए ताकि मनशियात और आतिशी असलाह के खतरात से निपटा जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि इन कैंपों से पटवारियों, मकामी पुलिस और BSF अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में इस बात को उजागर किया गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बैन अलावामी सरहदों से मुतासर इलाकों के आला मेयारात को यकीनी बनाने के कहीं पूरी तरह कारबंद है, जबकि वो सरहदी इलाकों की मजमू तरक्की और सलामती के लिए मरकज और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल को फ़रोग दे रहा है। आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेश की रसाई और फरोख से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज्जम जालसाजी गिरोहों का काम है जो तलबा और उनके कुनबों की बेचैनी पर पनपते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: NTA ने कहा है कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। NTA ने कहा है कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुकाम से इसे हटाने और कार्रवाई करने में मसरूफ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन न करें, ना ही इसी तरह के किसी से मैसेजेस को आगे बढ़ाएं और ना ही धोखेबाजों के फरेब में आएं। NTA ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए NTA की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इन्हेसार करने की अपील की है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल सेहत इको निज़ाम को फरोग देने के तई अहद बस्ता है। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से ज्यादा मुनफरद आभा शिनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं और 100 करोड़ से ज्यादा डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन आभा ID से मुंसलिक कर दिया गया है।

मुकम्मल इंटरव्यू 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड और इजाफी मीटरों पर आज शाम 7:10 पर मोदी हुकूमत के 12 साल की हमारी खसूसी सीरीज में नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि TMC हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकदस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी, लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल PM इकतसादी मुशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम और इकतसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदाम और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इकतसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहत से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाती तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर UPI इंडिया और नेपाल के UPI को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दो तरफा तआवुन को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बैरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राजील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले

0: खाना पकाने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपए थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में थ्रिसूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड़ के शुमाली जिलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुताबिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछलियाँ पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जैक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज़ माहरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खत्े में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक NCR में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक

0: समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
3: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, सिविल सर्जन और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निदेशकों को 15 दिनों के भीतर फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है।

0: उन्होंने कहा कि 7 प्रमुख बिंदुओं पर अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। इधर अग्निशमन पुलिस के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार नट ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर पटना के 5 अस्पतालों और 3 होटलों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 52 अस्पतालों और होटलों से अग्नि सुरक्षा मानकों में लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराई गई है।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है या था जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: गौरतलब है कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को निर्देश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के 268 अंगीभूत और 479 संबद्ध कॉलेजों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। लगभग 60,000 एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एनएसएस से जुड़े युवाओं को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, अग्निकांड और अन्य प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से निपटने की जानकारी दी जाएगी। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी कल तक का समय है, इसलिए इंतजार करना चाहिए।
2: अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: राज्य के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत 4 वर्षीय CBCS आधारित स्नातक पाठ्यक्रम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बाद अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को 4 से 6 सप्ताह की अवधि में कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की होगी और इसका क्रेडिट 5वें सेमेस्टर में जोड़ा जाएगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र को समूह में इंटर्नशिप करने की अनुमति नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में 27 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 40 ट्रैफिक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इन स्थानों पर 500 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार जनवरी 2022 से अब तक 50,663 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक पटना में हिट एंड रन के मामले दर्ज किए गए। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी

0: 1,040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। 5 किलोग्राम भार वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़ाकर 386 रुपये कर दिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज सीमांचल के कई जिलों समेत राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
4: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बक्सर, बांका, मुंगेर और जमुई जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों के चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को ना माने और ना ही भुगतान करें। एनटीए ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि ऐसे संदेश आगे ना भेजें और धोखाधड़ी के झांसे में ना आएं। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने और केवल सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। पथ निर्माण विभाग ने बक्सर बरौनी रेलखंड स्थित LC70A पर निर्माणाधीन आरओबी के धंसने के मामले में 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बताया कि आरओबी की मुख्य संरचना पर

0: कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से रेलवे प्रशासन ने आरओबी पर यातायात बंद कर दिया है। राज्य के 180 परीक्षा केंद्रों पर आज बीएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों की जांच के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए पूरी जाँच की जा रही है। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर आज से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बंगलापर मोहल्ले के एक मकान में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में राजस्व विभाग के विशेष सर्वेक्षण अमीन कंचन राम समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अररिया जिला समाहरणालय के परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। सुपौल जिले के दत्ता टोला क्षेत्र में तैनात एसएसबी टीम ने एक नेपाली वाहन से 1700 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर लिया है। भोजपुर की स्थानीय अदालत ने जून 2023 में दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति और सास ससुर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1,00,000 रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चयन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, वैभव टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है, 15 साल के वैभव से चमकी भारतीय क्रिकेट टीम। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा महंगी। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप 2026 के अंडर 18 के विजेता मोहम्मद रियान को 22,50,000 रुपए का चेक सौंपा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त तो हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मन में आपका बहुत खैर मकदम करती हूँ। चलिए एक नज़र डालते हैं आज नशर होने वाले प्रोग्राम पर। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्बे मामूल गज़ल से ही होगा। इसके बाद आज आप सुनेंगे सेहतनामा, जिसका मौजू होगा फर्स्ट एड की अहमियत और इसकी ज़रूरत। इस मौजू पर सैयद मुमताज़ करीम से एजाज हुसैन की गुफ्तगू होगी और प्रोग्राम के आखिर में चंद गज़लों का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं महेंद्र कपूर की इस खूबसूरत गजल से।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: अभी आप हजरत मुहानी की लिखी ये गजल सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। गिजा की अहमियत यानी खाने पीने की चीज़ों का एहतराम क्या कैसे करें। तो गिजा जिसे रिस्क कहते हैं, इसका एहतराम जिंदगी की बका और शुक्रगुजारी की बुनियाद का तकाजा है। अनाज का एक दाना भी ज़ाया करना नाशुक्री और जुल्म के मुतारिफ़ है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग फाकाकशी के आज भी शिकार हैं। ग़िज़ा इंसानी वजूद की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसकी बेहुरमती से बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। इस्लाम ने हमें खाने के आदाब सिखाए हैं और रिस्क की कद्र करने की तलकीन की है। हमारे नबी ने फरमाया कि दस्तरखान पर गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लेने से इंसान खुशहाल रहता है। इसलिए खाने पीने की चीज़ें ज़ाया ना करें, क्योंकि जानबूझकर अनाज या पानी का एक कतरा भी ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। और आज के दौर में एक तरफ जहाँ गरीब पेट भर के खाने के लिए तरसते हैं, वहीं दूसरी तरफ होटलों में और कई घरों में भी लाखों टन खाना रोज़ कचड़े में फेंक दिया जाता है। ये लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि रिस्क को ज़ाया करने से मुआशरे में माशी अदब, तवाज़न और बरकत का खात्मा होता है। इसलिए खाना इतना ही तैयार करें जितना खाया जा सके, प्लेट में इतना ही लें जितना आसानी से खा सके, और खाना बच जाए तो संभाल कर रख दें, दोबारा यूज़ करें गर्म करके, वरना जो ज़रूरतमंद हो उन तक पहुंचा दें। हर निवाले पर अल्लाह का शुक्रिया ज़रूर अदा करें। ग़िज़ा का एहतराम असल में ज़िंदगी, मेहनत और खालिक की अता करदा नेमतों का एहतराम है। चलिए आप चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का सेहतनामा। सेहतनामा का मौजू है फर्स्ट एड की अहमियत और इसकी ज़रूरत। इस मौजू पर सैयद मुमताज़ करीम से एजाज़ हुसैन की गुफ्तगू।
1: सामईन, आज के सेहतनामा का मौजू है फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी मदद, और इस मौजू पर हमने मदऊ किया है जनाब सैयद मुमताज़ करीम साहब को, जो कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। फर्स्ट एड पे ही तफसील से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि फर्स्ट एड क्या है और इसकी कितनी अहमियत है?
2: बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट एड एक तरह का इलाज है जो इमरजेंसी हालात में दी जाती है। चोट लग जाना हो, या आग से जल जाना, या बीमार होना। बीमार होने का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी का शुगर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, या कोई हादसा हो गया, सांप काट लिया, कुत्ता काट लिया, इस हालात में हम फर्स्ट एड कैसे देंगे? किसी की जान बचाने के लिए आप हमेशा डॉक्टर पर डिपेंड नहीं रह सकते।

0: ऐसा पॉसिबल नहीं है हर जगह डॉक्टर आपके आसपास हो, इसलिए सही तरीके से फर्स्ट एड देने से फौरन उस इंसान को आराम मिल जाता है और उस इंसान की हालात को ख़राब होने से हम बचा सकते हैं।
1: यानी शुरुआती दौर में ही अगर उसे हम इलाज दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है वो,
0: हाँ
1: मतलब गंभीर जो हो सकता था वो काफ़ी हद तक
0: हाँ
1: उसमें
0: हाँ
1: कमी आ जाती है।
0: जी जी
1: सर क्या होता है कि जैसे जल गया है कोई, तो हॉस्पिटल ले जाने में देर होने पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाता है जलने पे बात
0: देखिए,
1: करें?
0: किचन में ही लोग वर्क कर रहे हैं, खास करके लेडी,
1: जी
0: तो वो जल जाता है। और जलने की सूरत में सबसे पहले ये करना है कि आपके यहाँ ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, जो पानी है आपके यहाँ नल में, जो पानी आ रहा है, जले हुए हिस्से में तब तक पानी डालते रहिए जब तक उसका जलन कम ना हो जाए।
1: जैसे बर्फ वगैरह से
0: नहीं,
1: अगर
0: एकदम नहीं बर्फ़ से
1: नहीं,
0: सेकना,
1: अच्छा
0: नहीं,
1: अच्छा
0: एकदम बर्फ़
1: क्योंकि
0: यूज़
1: अक्सर
0: नहीं
1: लोग
0: करना।
1: क्या होता है कि सीधे बर्फ ले आते हैं कि ज़्यादा वो कूल, ज़्यादा ठंडा है तो
0: नहीं
1: उसका ये।
0: नहीं नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, मगर बर्फ़ से उसको, आइस से नहीं सेकना है उसे।
1: अच्छा, ये कंफ्यूजन था जो
0: हाँ
1: कि ज़्यादातर लोग
0: हाँ
1: यही
0: आइस
1: करते
0: से
1: हैं।
0: नहीं सेकना, और पानी तब तक डालते रहना है जब तक उसके जलन कम ना हो जाए। और जलन जब कम हो जाएगा तो उसे सूखे कपड़े से सोख लीजिए, और वहाँ पर एलोवेरा क्रीम आता है या बर्न्स क्रीम आता है, जो आपके यहाँ आपके पास अवेलेबल है, जो घर में है, एलोवेरा क्रीम, बर्न्स क्रीम, उस क्रीम को आप लगा
1: सर
0: दें।
1: कुछ चीज़ें आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, वो ऐसा लगता है कि कुछ को वो मिसगाइड भी करते हैं कई चीज़ों के लिए, तो ये सही तरीका
0: यस
1: इलाज है जलने के मामले में? जब ये कई बार होता है कि जो गंभीर रूप से कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ ज़्यादा जल जाते हैं, कहीं आग लग गई, उसमें फंस गया कोई आदमी, तो वो तरह का जला हो, तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा सकता है?
0: देखिए, अगर गंभीर रूप से जला हुआ तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल से वहां पर आप लेकर के जाइए, और गंभीर रूप से जले हुए को आप क्या कर, फर्स्ट एड आप नहीं दे पाइएगा।
1: नहीं, कई लोग
0: हाँ
1: जैसे होता है कि कंबल से उसको ढक दें
0: नहीं,
1: ऐसे।
0: आग बुझाने के लिए कंबल से हम आग पे, आग का फैलाव ना हो, आग का फैलाव नहीं, अगर जले हुए हिस्से पे अगर आप कंबल डाल दीजिएगा, स्किन टच होगा तो वो,
1: वो
0: और तो
1: तो
0: स्किन में प्रॉब्लम होगा।
1: हाँ, चूंकि अक्सर ये भी एक
0: हाँ
1: मिसकॉन्सेप्शन है, कई बार कई लोगों का हमने देखा है कि कोई जला हुआ आदमी आया तो उसको पहले कंबल से ढक के तब कहीं ले जा रहे हैं हॉस्पिटल
0: नहीं,
1: और कुछ ये।
0: कंबल से ढकने का कंसेप्ट ये है कि अगर उसका जिस्म जला हुआ है, उसके उसके कपड़े में आग लग गई है, तब हम कंबल से उसको ढक देंगे कि उसको आग बुझ
1: जी,
0: जाए।
1: वहां तक
0: आग,
1: सही
0: हाँ,
1: है
0: आग बुझाने के लिए हम कंबल
1: लेकिन
0: यूज कर रहे हैं।
1: जी
0: अगर वो जल गया है, जलने के लिए फर्स्ट एड के लिए हम कंबल लगाए उस पर डाल रहे हैं, नहीं, ये सही नहीं,
1: कई जगह ऐसे ऐसा
0: नहीं,
1: भी
0: ये सही
1: करते हैं
0: नहीं।
1: लोग।
0: और ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर अगर अभी देखिए, जो बर्न्स होता है, जल जाता है किसी भी जगह आज, मगर सेहत में हम फर्स्ट एड पे बात कर रहे हैं, तो ये भी आप देखिए कि जो जल रहा है, यानी जलता है दो तरीके से, अगर कोई घर जल गया है या कोई बाहर में कुछ जल रहा है, तो आप उसका धुआं को देखिए, वो धुआं किस तरीके का है। धुआं दो तरीके से होता है, एक काला उठता है और एक उजला उठता है। अगर काला धुआं उठ रहा है तब वहां पर आप बालू डाल दीजिए, तो जल्दी वो आग पे काबू कर लेगा। और उजला अगर धुआं उठ रहा है तो आप वहां पर पानी का फोर्स, सबसे पहले तो आप आग को बुझाइए, आग बुझ जाएगा
1: जी,
0: तभी तो आप
1: तभी
0: इंसान
1: फिर
0: का,
1: रेस्क्यू
0: इंसान
1: करेंगे आप
0: आप
1: उसको आप।
0: रिस्क्यू करेंगे,
1: जी
0: इंसान को लाइएगा
1: जी
0: पहले। अब
1: जी
0: वहां पर ला करके के देखना है उसका जिस्म जला है वो किस तरह का जला, अगर हल्का फुल्का जला है तो आप फर्स्ट एड खुद कर लीजिए, अगर ज्यादा जला है तो इमरजेंसी हालात में आप जल्द से जल्द उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट
1: जी
0: हॉस्पिटल है, वहां आप लेकर के जाइए।
1: ये सही तरीका है। और एक जहाँ आग लगती है, लोग आग में फंस जाते हैं, कई लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से आप बचाया जाए?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एक कि धुएं की वजह से दम घुट, तो उस इंसान को सबसे पहले आप, मैंने, वहां से बाहर लाइए और खुली जगह पे लाइए, ला करके उसको लेटाइए, लेटा दीजिए, और लेटाने के बाद आप उसका पल्स देखिए, उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पल्स
1: सही।
0: देखने के बाद अगर उसके बॉडी को हिलाइए, अगर उसका आप नाम जानते हो, उसके नाम से उसको आवाज दीजिए कि वो उठ रहा है कि नहीं, फिर भी अगर नहीं उठ रहा है तो वहां पर हम CPR देंगे उसे।
1: अब तो ये हो गई जलने की बात। कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो गया, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कहीं गिर गए ऊपर से, तो अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है उनकी, कट्स लग जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह का फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए?
0: अगर एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी से गिर गए हैं, आप जा रहे हैं, आपने देखा वो बंदा गाड़ी से गिर गया है, गिरने के बाद सबसे पहले आप उसको उठाएं, उठा कर करके एक क्रॉट से हटाएं, वो कि जब एक्सीडेंट जब होता है तो वहां पर लोगों ने हेल्प करने के लिए, मदद करने के

0: लिए कम होते हैं, नज़ारा देखने के लिए ज़्यादा
1: बात है,
0: होते
1: सही
0: हैं।
1: बात है।
0: तो आप सबसे पहले उस इंसान को एक यानी खुली जगह पे लेकर के आइए, और खुली जगह पर लेके आने के बाद उसका देखिए कि उसको चोट कहाँ पर लगा है,
1: पहले
0: चोट
1: पता
0: आखिर
1: करना
0: लगा
1: है।
0: क्या है, उसको फ्रैक्चर हुआ है या क्रॉच आया है या हल्का फुल्का कुछ भी है। अगर यह क्रॉच आ गया है तो वहां पर तो पॉसिबल नहीं है कि आप रोड पे कुछ कर सकते हो। घर में अगर है तो चलिए, घर में आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, आप फर्स्ट एड बॉक्स से
1: कुछ
0: आप कुछ भी कर, हाँ कुछ भी
1: वगैरह लगा
0: वाइटमिन वगैरह कुछ भी आप लगा दीजिए,
1: सकते
0: कर दीजिए। मगर वहां पर आपके पास कुछ है नहीं तो इमिडिएटली कोशिश कीजिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है या नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं वहां पर आप उसको लेकर के जाइए। हाँ, अगर इन केस फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर में क्या हो रहा है कि ऐसे हड्डी टूटने की जगह क्या होता है कि सूजन आ जाता है, यानी स्विलिंग आ जाता
1: फूलना
0: है,
1: शुरू हो
0: फूलना
1: जाता है।
0: शुरू
1: हाँ
0: हो जाता है।
1: सही।
0: मीन्स इस समझ में ये आ रहा है कि जिस बंदे को चोट लगा है उसको फ्रैक्चर हो गया है,
1: सही।
0: हो कि उसका स्विलिंग बढ़ रहा है। तो स्विलिंग बढ़
1: अच्छा,
0: रहा है उस केस में क्या करना है कि आप
1: ले
0: पास की
1: लेते
0: दवा
1: हैं
0: की
1: तो।
0: दुकान से कुछ अगर ऐसे क्रेप बैंडेज वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो क्रेप बैंडेज वगैरह बांध कर करके, क्योंकि क्रेप बैंडेज बांधने से थोड़ा सा स्विलिंग कम रहता है, ज्यादा नहीं होता। मैं जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है आस पास में जो
1: वहां
0: हॉस्पिटल,
1: तक
0: वहां तक उसको आप
1: पहुंचाने के
0: रेस्क्यू
1: लायक
0: करें।
1: आप बना
0: हाँ,
1: सकते हैं
0: वहां
1: उसको।
0: तक उसको ले जाए। हाँ, ये देखें कि जहां पर उसका फ्रैक्चर हुआ, जहां पर स्विलिंग हुआ, वहां पर उसका बॉडी मूवमेंट ज्यादा ना हो।
1: अच्छा, उसको
0: हाँ, बॉडी
1: उठा
0: मूवमेंट,
1: के ले
0: हाँ
1: जाए
0: उठा,
1: या उसको
0: ऐसे उठा
1: सहारा
0: करके
1: दे के
0: ले,
1: ले
0: सहारा से
1: जाए।
0: ले जाए कि उसका बॉडी, मुझे हो सकता है कि बॉडी मूवमेंट होगा तो उसका जो जख्म है वो और बढ़ सकता है, उसका फ्रैक्चर और बढ़ सकता है।
1: ये इस पे
0: तो
1: ध्यान
0: हाँ,
1: रखना
0: उस पर
1: पड़ेगा।
0: ध्यान देना है।
1: हड्डी टूटने के बारे में आपने ये सारी बातें बताई कि किस तरह से हम फर्स्ट एड दें।
0: करना
1: अक्सर दम घुटने पे या फिर हार्ट पेशेंट को कई बार वो फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इनके लिए फर्स्ट एड का क्या तरीका है?
0: ने दम घुटने के बारे में बताया, और हार्ट के पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट नहीं भी है, रास्ते में चल रहा है, वो गिर गया, अभी होश की हालत में है, तो सबसे पहला काम उसको हम CPR देंगे। क्या होता है CPR? कहते हैं कार्डियो पल्मरी रिसुसिटेशन। ये एक तरह का फर्स्ट एड है। सबसे पहले हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर आप उसका नाम जान रहे हैं तो उसके नाम से आप उसको आप बुलाएं,
1: तेज
0: उसका
1: आवाज में
0: तेज
1: उसको
0: आवाज में
1: मतलब।
0: आप उसको कॉल करें। अगर फिर भी वो नहीं उठ रहा है तो इमिडिएटली आप उसका पल्स देखें। पल्स जो देख रहे हैं, पल्स लेफ्ट हैंड साइड का गर्दन या कलाई पे आप देखें, पल्स उसका चल रहा है कि नहीं। 10 सेकंड, 15 सेकंड में कम से कम 10 से 12 बार पल्स होना चाहिए। अगर नहीं पल्स चल रहा है, पल्स कम हो तब लगेगा हार्ट अटैक आया है, तब मरीज को सीधा करके गर्दन सीधा करना है और सीधा लेटा देना है खुली जगह पर, और वहां पर भीड़ भाड़ नहीं हो।
1: हवा
0: दोनों,
1: चार आनी
0: हाँ
1: चाहिए वहां
0: हवा
1: पे।
0: आनी चाहिए।
1: सही।
0: दोनों हथेलियों को उंगली को आपस में फंसाकर हाथ को सीधा रखना है, यानी जो दोनों हथेलियां है हमारा, इसको उंगली को आपस में फंसाकर हाथ को सीधा रखना है और हार्ट पर रखकर दबाव देना है, यानी हार्ट पर रखकर के आपको
1: हाँ
0: दबाव देना
1: जी।
0: है। और अपने जो ये हमारा जिस्म है, जिस्म का पूरा वजन अपने कंधे पर देना है
1: अच्छा।
0: और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, और लंग्स से निचली हड्डी से 4 उंगली ऊपर,
1: ऊपर। अच्छा,
0: हाँ लंग्स जो हमारा
1: हाँ।
0: हमारा जो लंग्स जो छाती जिसको बोलते हैं, छाती, हमारे छाती से निचली हड्डी से 4 उंगली ऊपर या चौथी उंगली जहाँ खत्म होती हो,
1: अच्छा।
0: दोनों चेस्ट के बीच में प्रेस करना है, यानी दबाव डालना
1: दबाव।
0: है, जल्दी जल्दी करना है, और इसको यानी 1 मिनट में 30 बार प्रेस करना है,
1: अच्छा,
0: और 1 मिनट में हाँ
1: फास्ट।
0: फास्ट करना है। 30 बार प्रेस करेंगे और 2 बार मुंह से फूकेंगे।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: उसको।
0: जैसे उसको फास्ट फास्ट यानी हाथ से दबाव हम दे रहे हैं, इस तरह से दबाव कर रहे हैं, आवाज कर रहा है वो, यानी आवाज हो रहा है, और उसके बाद 30 टाइम्स, अगर 30 बार हमने दिया तो 2 बार उसको मुंह से हम सांस देंगे, अपने मुंह से उसके
1: उसके
0: मुंह में
1: मुंह में।
0: फूकें, इस तरीके से फूकेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक वो होश में ना आ जाए।
1: अच्छा, तो
0: ये हुआ CPR।
1: ये CPR का तरीका
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: जिसको हर आदमी को जानना चाहिए,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी जी
1: इसमें हम बहुत सारी जान बचा सकते हैं
0: जी
1: इसके।
0: जी
1: और एक चीज़ ये भी है कि
0: गांव देहात
1: जैसे अक्सर बरसात के मौसम में या कभी भी ऐसा होता है गांव में ज़्यादातर के लोगों को सांप या बिच्छू काट लेता है, तो सांप या बिच्छू काट लेने पे किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा सकता है और कैसे लोगों की जान बचाई जा
0: का
1: सकती
0: हमारे यहाँ लगभग हर साल 20,000 लोग मर जाते हैं सिर्फ सांप काटने से, और ये जहरीले सांप है। और इंडिया में 200 तरह का सांप होता है, और ये सांप कुछ सांप तो बहुत जहरीले होते हैं, जैसे कोबरा हो गया, ये सब जहरीले सांप होते हैं। और गांव में खास करके कि अभी भी वहां पर लोग इलाज नहीं कराते हैं, वहां पर टोटका लोग करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, यानी सांप काट लिया चलो भाई।

0: झाड़ फूँक करा लें या चाहे टोटका करा लें, नहीं ये एकदम गलत है।
1: एक चीज़ और ये भी है कि
0: हाँ
1: अक्सर बहुत सारे 75% लगभग जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं।
0: जी
1: किसी को सांप ने काटा तो वो अगर झाड़ फूँक वाले के पास चला जाता है, वो जो जहरीला नहीं है वो ठीक हो
0: हाँ
1: गया, तो
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: लगता है कि भाई उस टोटका करने वाले ने, झाड़ फूँक वाले
0: हाँ
1: ने सही कर दिया,
0: जी जी
1: जबकि ऐसा होता नहीं
0: ऐसा नहीं
1: है।
0: होता
1: ये जहरीला सांप जब भी काटता है तो
0: है।
1: आप कुछ भी कर लें, ये आपको बचा नहीं सकते।
0: नहीं
1: तो
0: और

0: होता नहीं
1: ऐसा नहीं
0: है,
1: होता
0: ये जहरीला सांप जब भी काटता है तो
1: है।
0: आप कुछ भी कर लें, ये आपको बचा नहीं सकते।
1: नहीं, और
0: तो
1: देखिए अगर
0: ये एक अक्सर
1: हाँ
0: ऐसा देखने में आया है,
1: जहरीला
0: तो उसके लिए कैसे ये कर रहे हैं कि सबसे पहला कदम क्या हो?
1: सांप हो या जहरीला सांप नहीं हो, आप उसे फर्स्ट एड दें।
0: जी
1: सबसे पहले आप जहां पर सांप ने डसा है उस घर में जो भी साबुन है उस साबुन से अच्छी तरीके से उसको आप क्लीन कर ले, एकदम धो दें। और धोने के बाद कटे हुए जगह से 2 से 3 इंच ऊपर बैंडेज लगा दें ताकि वो जो जहर है उस जहर का फैलाव ना हो।
0: वो खूब टाइट
1: हाँ,
0: करके,
1: टाइट कर करके,
0: ये
1: हाँ
0: शायद
1: टाइट
0: है ना।
1: करके बांध ले, से 1 घंटा से कम वक्फे तक ही उसको बांधे। ऐसा नहीं है उसको बांध दिए 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं करना है।
0: अच्छा,
1: यानी 1 घंटे से कम नहीं, 45 मिनट तक बांधे, उसके बाद फिर
0: मतलब इसको
1: उसको
0: बांध के आप तुरंत किसी भी हॉस्पिटल या
1: हाँ
0: इसमें
1: हाँ
0: रश कर
1: हाँ
0: जाएं,
1: यानी जो
0: क्योंकि
1: भी
0: ये भी
1: नियरेस्ट
0: एक,
1: हॉस्पिटल वहां पर जाए, क्योंकि जहर का जो फैलाव है वो आगे नहीं बढ़ेगा।
0: मतलब आधा
1: हाँ
0: घंटे ही
1: हाँ
0: टाइम मिलता है
1: आधा घंटा,
0: अक्सर
1: हाँ
0: देखने में
1: आधा
0: आया
1: घंटे के,
0: है
1: 1 घंटा टाइम
0: कि,
1: आपके मिल जाए, 1 घंटा
0: तो
1: आपको
0: अगर ये सब कर
1: हाँ
0: देने पे आपके पास आधे घंटे और
1: हाँ
0: मिलने का चांस होता
1: जी
0: है
1: जी
0: मेरे
1: उसमें
0: ख्याल
1: क्या
0: से।
1: हुआ, जहर का जो फैलाव है जो वो नहीं होगा। ओके, अक्सर लोग क्या होता है गांव में गए, नहीं हुआ चलो भाई टोटका करवा ली, वो झाड़ फूक करवा ली, ठीक हो। नहीं, सबसे पहले अगर जहरीला सांप हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप पहले उसको क्लीन करें और धोने के बाद 2-3 इंच ऊपर आप उसको बैंडेज से, जो अगर बैंडेज नहीं है तो घर में कपड़ा होगा आपके पास, जो कपड़ा है उस कपड़े से टाइट से बांध ले। और बांधने के बाद इमिडिएटली आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल से आप वहां पर जाए।
0: तो ये हो
1: हाँ
0: गया सांप से के काटने पे, बिच्छू के काटने पे भी
1: हाँ
0: लगभग
1: सांप और
0: यही
1: विष्णु, हाँ
0: यही कोई भी
1: जी
0: जहरीला
1: जी
0: उस तरह का
1: हाँ
0: ये है। तो अच्छा, एक चीज़ और ये, जैसे कुत्ते ने अगर काटा है तो
1: जी
0: उसका
1: जी
0: क्या ये है?
1: ने कुत्ते ने भी जो काटा है कुत्ते में भी सेम है, वहां पर भी आपको कटे हुए जगह को पानी या साबुन से साफ कर लेना है। जहां पर कुत्ते ने काटा है उसको भी
0: ताकि
1: साबुन,
0: इन्फेक्शन या कोई भी और
1: हाँ,
0: चीज
1: वो कि
0: भी।
1: कटे हुए जगह के आसपास साफ कर ले। काटते समय कुत्ते का जो लार है वो उसके आसपास लग जाता है, क्योंकि सांप जब काटता है तो डसता है, मगर कुत्ता जो काटता है तो उसका स्लाइवा जो रहता है जिसको लार बोलते हैं वो लार चारों तरफ लग जाता है। तो इमिडिएटली उसको क्लीन कर ले, और वहां पर खून निकल रहा है तो उस जगह को दबा करके खून को रोकें। रोके चोट की जगह पे कुछ एंटीसेप्टिक ताकि जर्म से जो है जो कीटाणु है वो फैलाव ना हो। और उसके बाद फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह चले
0: वही तो
1: जाइए,
0: है
1: वहां
0: अब।
1: जाकर के डॉक्टर के सलाह पे रेबीज का इंजेक्शन वगैरह अगर है वो बताते हैं, एडवाइस करते हैं, वो देख लेंगे।
0: ये जरूरी
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: रेबीज
1: वो
0: का इंजेक्शन
1: हाँ रेबीज
0: लगाना
1: का
0: भी
1: इंजेक्शन
0: बहुत जरूरी है।
1: जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है।
0: जी
1: अक्सर लोग नहीं लगाते हैं, टेडवेट का इंजेक्शन लगा करके छोड़ देते हैं। नहीं, टेडवेट के इंजेक्शन से ज्यादा बेहतर है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाइए, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।
0: अच्छा, रेबीज का
1: हाँ
0: इंजेक्शन और
1: हाँ
0: सांप का भी जो
1: हाँ ये जो भी
0: मिलता है
1: इंजेक्शन है
0: इंजेक्शन।
1: गवर्नमेंट की तरफ से
0: जी
1: फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है, आपको सिर्फ जाना है।
0: बस इतनी ही
1: हाँ
0: तकलीफ करनी है
1: हाँ
0: आपको
1: हाँ क्योंकि अक्सर लोग जाते नहीं, नहीं क्यों
0: नहीं,
1: जाए,
0: चूंकि
1: हाँ, और
0: पैसे
1: वो, और
0: लगेंगे।
1: इसका असर अभी नहीं होता, इसका असर बाद में असर पड़ता है।
0: कई लोगों को बहुत
1: हाँ
0: पाँच
1: जी
0: पाँच साल बाद
1: जी
0: रेबीज का असर हुआ
1: जी
0: और वो
1: हाँ, आपने
0: जान
1: फर्स्ट एड
0: गंवाई
1: कर दिया, आपने
0: पड़ी।
1: फर्स्ट एड कर दिया है तो आप फर्स्ट एड करने के बाद इमिडिएटली 1 घंटा 2 घंटे के बाद नियरेस्टली जो भी डॉक्टर से, जो भी हॉस्पिटल पे जैसा वो बोलते हैं वैसा करना है।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि हर घर में फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी होता है, तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, क्या रखे हैं उसमें?
1: ये आपने बहुत अहम सवाल किया। हर घर में खाने के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनता है, वो यानी जितना भी जंक फूड है सब अपने घर में वो रखते हैं और लाके खाते हैं, मगर फर्स्ट एड के नाम पे उनके घर में कुछ भी नहीं रहता है। और जब कोई हादसा हो जाता है तब वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान
0: इधर
1: होकर के
0: उधर
1: इधर
0: जब
1: उधर
0: भटकते हैं
1: भटकते हैं,
0: और
1: और
0: तक
1: उसी हालात में और
0: देर
1: कुछ
0: और
1: अनहोनी हो जाता
0: देख
1: है।
0: जैसे
1: तो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या हो, जैसे बैंडेज, तो बैंडेज 6 इंच का भी आता है, चौड़ा आता है 8 इंच, जो भी एक बैंडेज वो रखें, कॉटन जिसको आपने रुई बताया, क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज इसलिए कि कभी मोच आ गया, मोच आने पे आप क्रेप बैंडेज से बांध दिए, बांधने के बाद यानी क्रेप बैंडेज से बांध दिए तो अगर हल्का फुल्का मोच आ जाता है तो वो क्रेप बैंडेज बांधने से ही वो ठीक हो जाता है, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैंडी प्लास, किचन में लेडी काम कर रही हैं, कट
0: अटने पटने
1: गया
0: पे।
1: कट
0: हाँ
1: गया, आप कट गया तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, उसके लिए आपके पास हैंडी प्लास्ट है, आप हैंडी प्लास्ट को अपने फिंगर में उसको क्लीन कर लीजिए, कॉटन से क्लीन कर लीजिए, और क्लीन करने के बाद हैंडी प्लास्ट लगा दीजिए तो वो आपका वो सही हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी आप फर्स्ट एड देने से पहले अपना हाथ को पहले क्लीन कर लीजिए,
0: जो
1: सैनिटाइज
0: जो लोग
1: करके
0: फर्स्ट एड दे रहे हैं
1: हाथ दे
0: उनके
1: रहे
0: लिए
1: हैं,
0: जरूरी
1: और
0: है।
1: देने के बाद

0: या फिर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साफ पानी से अपने हाथों को धो लें, और धोने के बाद तभी वो फर्स्ट एड दें। मैक्रोपोर टेप्स, स्प्रिट, ग्लव्स, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इसलिए कि आपने फर्स्ट एड दे दिया, फर्स्ट एड देने से देने के बाद आपने अपने हाथ को क्लीन किया, टॉवल हो सकता है आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से ही हाथ को क्लीन कर लीजिए। फेस मास्क, आइस पैक। आइस पैक इसलिए किसी का खून बहुत तेजी से बह रहा है, कट गया, छट गया, तो उसमें क्या होता है, हम आइस पैक लगाएंगे तो आइस पैक लगाने से क्या होगा, वो खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, मगर जलने के केस में हमको आइस पैक यूज नहीं करना है, इसका ध्यान देना है। हाँ, बेटाडीन चाहे आयोडीन सॉल्यूशन, थर्मामीटर। थर्मामीटर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में थर्मामीटर है ही नहीं, जो थर्मामीटर बहुत जरूरी है, बच अगर हाँ आस पास के पड़ोसी से मांगते हैं, खासकर जहाँ छोटे बच्चे यानी बच्चे हैं वहाँ तो थर्मामीटर बहुत जरूरी है, क्योंकि बुखार आप कैसे टेम्परेचर को अपना पे, फीवर कितना है, कभी कभी ऐसा होता है 104-105 फीवर हो जाता है, लोगों को लगता नहीं फीवर है, तेज फीवर है, और उसी 104-105 फीवर में बच्चे को कन्वर्जन आ जाता है।
1: सही,
0: हाँ
1: अक्सर ऐसा होता
0: जी।
1: है।
0: छोटा कैंची, साबुन, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन। ब्लड प्रेशर मशीन अगर आप आपके घर में कोई बीपी का दवा ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो बीपी मशीन रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप उनको कभी अगर उनका बीपी बढ़ जाता है तो आपको पता नहीं है, हैं सिर्फ आप बोले उनको सर में चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा नहीं, चक्कर आने का कारण क्या है।
1: जैसे इसे कोई सिम्टम ऐसा हो तो तुरंत बीपी
0: हाँ
1: मशीन
0: हाँ
1: से चेक करके
0: ब्लड
1: बता
0: प्रेशर
1: सकते हैं।
0: ऑटोमेटिक बीपी मशीन है, किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, किसी
1: तो
0: को कंपाउंडर को
1: तब तो
0: बुलानी
1: सस्ती
0: है।
1: सस्ती
0: हाँ,
1: मशीनें भी आ
0: ऑटोमेटिक
1: गई।
0: बीपी मशीन है। शुगर मशीन है, कभी
1: हाँ
0: देखिए शुगर बहुत ज़्यादा,
1: डायबिटीज
0: शुगर
1: की
0: बढ़ जाता है,
1: मशीन
0: शुगर कम हो जाता है, शुगर मशीन
1: भी।
0: वाला स्टेशन।

0: क्या करना है उसमें, नारियल तेल या कड़वा तेल, सुसुम
1: अच्छा
0: सुसुम नारियल तेल या कड़वा तेल हल्का डालेंगे तो जो कीड़ा अंदर गया है वो कीड़ा बाहर आ जाएगा, या टॉर्च की रोशनी से, आपको वो बड़ा टॉर्च नहीं रखना है, पेंसिल टॉर्च रखना है,
1: अच्छा
0: तो पेंसिल टॉर्च से रखिएगा तब तो वो आपको एयर में वो जाएगा,
1: जाएगा, सही
0: बड़ा
1: बात
0: टॉर्च
1: है।
0: रखिएगा तो वो तो जाएगा नहीं, रोशनी तो जाएगा, पेंसिल टॉर्च की रोशनी से जैसे आप कान में डालिएगा अगर कोई कीड़ा मकौड़ा अंदर गया है तो वो बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट एड किट में रखें, और फर्स्ट एड किट में रखने के साथ कुछ मेडिसिन भी रखना बहुत जरूरी है,
1: हाँ, अक्सर
0: जो
1: पेट
0: नहीं आपको,
1: खराब हो गया
0: हाँ जो कब,
1: या
0: हाँ जैसे कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा आप खा लिए हैं तो गैस बहुत ज़्यादा
1: गैस
0: बन
1: आ
0: जाता
1: रहा
0: है,
1: है।
0: इसलिए कुछ गैस की दवा, या बहुत तेज़ बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल का टैबलेट, हाँ, या कभी ऐसा होता है कि आपने दवा लिया और दवा रिएक्शन कर गया, तो दवा रिएक्शन
1: ये
0: का,
1: भी
0: दवा
1: सही।
0: रिएक्शन बहुत ख़राब होता है, और उससे अगर आपके पास वक्त नहीं रहता उस इंसान को बचाने के लिए, तो उस कंडीशन में आप गोली जो आती है गोली आप रख सकते हैं, अगर रिएक्शन ORS, कभी ऐसा होता है रात भी रात में
1: डिहाइड्रेशन।
0: बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, लैटिंग हो रहा है, और उससे क्या जिस्म का पानी निकल जाता है, अब पानी निकल जाने का आप डॉक्टर के यहाँ जाते जाते तो और पानी निकल जाएगा ना, तो आप उसको क्या कीजिएगा, पानी निकल तो ORS पिलाते चले जाइए, ताकि उसका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो,
1: सही सही।
0: ठीक है। पेन रिलीफ बाम, कभी चोट लग गया, कट लग गया, दर्द हो रहा है तो पेन रिलीफ बाम, पेन रिलीफ जेल आता है उसको लेके लगा दीजिए, जैसे मैंने जलने पे बताया क्रीम मैंने बताया, या कटने पे हो गया टी बैग क्रीम, इस तरीके से कुछ मेडिसिन कुछ ऑइंटमेंट भी फर्स्ट एड बॉक्स में रहना चाहिए। हाँ, सबसे अहम जो ज़रूरी बात यह है कि आप जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो मेडिसिन रख रहे हैं उसका सबका हर 3 मंथ पे या 6 मंथ पे आप उसका एक्सपायरी चेक करें,
1: एक्सपायरी सही।
0: ऐसा नहीं है कि आप
1: हाँ
0: दवा लाएं और दवा ला करके रख दिए और जब दवा यूज़ कर रहे हैं तो पता हुआ ये तो एक्सपायर कर
1: एक्सपायरी
0: गया, और हमेशा ये ख्याल रखें दवा अगर आप स्ट्रिप को काट रहे हैं तो जहां पर एक्सपायरी लिखा रहता है उस हिस्से को ना काटें, उसकी आगे वाले हिस्से को काटें ताकि
1: ताकि
0: उस
1: पता
0: दवा का
1: रहे फिर।
0: एक्सपायरी उसमें दिखा रहा है, और देने से पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट एड के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक सवाल या और है कि फर्स्ट एड से रिलेटेड कहीं बिहार में क्या कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में आप हमारे सामने को बताएं कि कहाँ कहाँ इसकी पढ़ाई होती है या इसके बारे में बताया जाता है।
0: देखिए, आपने बहुत अहम सवाल आपने किया फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग के लिए आपको किसी हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 10 क्लास पास आउट हैं, अगर 10 क्लास पास आउट नहीं भी हैं तब भी आप फर्स्ट एड का ट्रेनिंग ले सकते हैं, और बिहार में ये कोर्स होता है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसका कोर्स है, फर्स्ट एड का कोर्स है, और इसका कोर्स का फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपया कोर्स फ़ी है, और 7 to 8 days का है,
1: अच्छा
0: उस 7 से 8 दिन का ये कोर्स है, उस कोर्स में मैंने जितना अभी यहाँ पर आपसे बात किया ये सारे टॉपिक को वहाँ पर कवर किया जाता है,
1: अच्छा
0: और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी बताया जाता है, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। और सपोज मान लीजिए आपने फर्स्ट एड कोर्स अभी किया 2025 में किया, तो इसको फिर आपको every 3 years पे जाकर के आपको रिन्यूअल
1: रिन्यू,
0: कराना है,
1: अच्छा
0: रिन्यूअल मतलब कि दोबारा फिर
1: और भी
0: करना है,
1: क्या नई चीज़
0: क्योंकि
1: आ रही है
0: आपने
1: फिर।
0: फर्स्ट एड का कोर्स कर लिया, और अल्लाह ना करे कि कोई घटना आपके यहाँ घटे, घटे जब घटा नहीं तो आपने प्रैक्टिकली किया नहीं तो हो
1: हाँ
0: सकता है कि
1: भूल
0: आप
1: गए
0: भूल
1: हैं।
0: गए, तो इसलिए आप हर 3 साल पे जाकर के फिर उसको रीट्रेनिंग कर लिया कीजिए, रीट्रेनिंग कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट मिलवा है, वो सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग किया, तो इसीलिए
1: तो कई जगह
0: मैं
1: जैसे वॉलंटियर्स कई बार कहीं जाते हैं किसी भी इस तरह के हादसात वगैरह में, तो इसमें इन ये लोग भी काफ़ी मददगार साबित हो सकते
0: हाँ
1: हैं। आप अपने इलाके में आपकी पहचान अच्छी बन सकती है
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप ट्रेनिंग किए हुए हो, बहुत सारे लोगों की आप मदद कर लेते हैं, तो अंदर से भी आपको
0: हाँ एक
1: काफ़ी
0: हैप्पी खुशनेस
1: सेटिस्फैक्शन
0: में
1: होता है, खुशी
0: अगर
1: मिलती है।
0: अन्य,
1: डॉक्टर साहब, आज फर्स्ट एड के बारे में आपने बताया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपको भी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, और आज बहुत अच्छा गुफ्तगू फर्स्ट एड पे हमने आपने किया।
2: जी सामईन, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि फर्स्ट एड में जितनी भी दवाएं हों उसको गाय बगाय चेक करते रहें कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं कर गया है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा, जिसका मौजू ही था फर्स्ट एड की अहमियत और ज़रूरत। इस मौजू पर सैयद मुमताज़ करीम से इजाज़ हुसैन की गुफ्तगू हो रही थी। आइए प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं।

अभी आप इब्राहिम आशिक की लिखी ये गज़ल सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में ये प्यारी गज़ल।

सामईन अभी आप बशीर बद्र की लिखी ये गज़ल सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त यहीं ख़त्म होता है। ज़र्रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए शाश्वत सचदेव और जैस्मिन संदलास की आवाज़ में धुरंधर द रिवेंज फिल्म के इस गीत को। गीत के बोल जैस्मिन संदलास ने लिखे हैं और संगीत शाश्वत सचदेव का है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy. laughs>
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए AR रहमान, सुजान और क्रिस एनरिकी की आवाज़ में। फिल्म है रोबोट। संगीत AR रहमान का है और गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश शमिताभ फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज़, इलैया राजा का संगीत और स्वानंद किरकिरे के गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।
1: लीजिए प्रस्तुत है किलकारी बिहार बाल भवन पटना की प्रस्तुति बाल किलकारी।

0: नई शुरुआत, नया अंदाज हम लाए हैं, आप प्यारे श्रोताओं के लिए एक नई रवानी लाए हैं। आइए सुनते हैं बाल किलकारी।
1: नमस्कार, मैं अनुराग कुमार
2: और मैं आकृति राज।
1: बाल किलकारी के इस नए अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। आकृति, जरा सोचो, अगर इस दुनिया में संगीत ना होता तो कैसा लगता?
2: फिर तो हर रोज स्कूल की बोरिंग घंटी की तरह लगती और मम्मी का वो सुबह का भजन वाला स्पीकर भी चुप रहता।
1: और मैं तो गाते गाते ब्रश करता हूँ, बिना म्यूजिक के मैं ब्रश भी नहीं कर पाता। लेकिन सच बताओ, संगीत सिर्फ गाना नहीं है, ये एक कला है, बिना शब्दों के भी दिल से दिल तक पहुँचने वाली भाषा है। संगीत हमारी भावनाओं का सबसे प्यारा और सशक्त रूप है। तुमने कभी सोचा है कि संगीत के बिना हमारी दुनिया कितनी वीरान होती? सोचो ना, सुबह उठो और चिड़ियों की चहचहाहट ही न सुनाई दे, बस एकदम सन्नाटा।
3: और सोचो कोई शादी हो और बैंड बाजा, डीजे, नाच गाना कुछ भी ना हो, बस दूल्हा चुपचाप घोड़े पर बैठा हो और लोग चुपचाप उसे घूर रहे हो, कितना अजीब लगेगा तब।
1: और फिल्मों का सोचो, कोई सीन चल रहा है लेकिन कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, ना डर का साउंड, ना ही फाइट का।
2: ऐसे तो कोई भी सीन जोरदार नहीं लगेगी, कोई फिल्म ही नहीं देखेगा तब तो।
3: और त्योहारों की बात सोचो, दिवाली बिना पटाखों की होगी, होली बिना ढोल के, ईद बिना कव्वाली के।
2: और स्कूल की प्रार्थना सभा, सिर्फ खड़े रहना बिना प्रार्थना के।
3: और जब कोई उदास होगा तब कोई राहत फतेह अली खान का गाना भी नहीं होगा जिसे सुनकर रो भी लिया जाए।
1: सच में बिना संगीत के हमारी दुनिया एक रंगीन तस्वीर की तरह होगी, सब कुछ होगा पर महसूस कुछ नहीं होगा।
2: मतलब बिना संगीत के तो सब कुछ फीका हो जाएगा।
1: बिल्कुल, संगीत है तो जीवन में

0: स्वाद और एहसास है, वरना ये दुनिया बस एक वीरान मैदान है।
1: यही तो अद्भुत बात है संगीत की, सिर्फ इंसान ही नहीं पक्षी भी गाते हैं। पत्तों की सरसराहट, बारिश की बूंदे, सब में संगीत है। संगीत हमसे बात करती है, हमें अपने इर्द गिर्द दुनिया से जोड़ती है।
2: बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि संगीत की शुरुआत कब हुई?
0: बहुत ही अच्छा सवाल। दरअसल इतिहासकारों को यकीन है कि 40,000 साल पहले के इंसान भी संगीत से जुड़े हुए थे। लकड़ी और हड्डियों से बने वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी मिल चुके हैं। सबसे पहला बांसुरी शायद शिकारियों ने ही बनाई थी।
2: तो शिकारियों ने मस्ती के लिए बांसुरी बनाई थी?
1: नहीं रे, पहले संगीत मस्ती नहीं थी, जरूरत थी। शिकार के दौरान जब एक दूसरे से जोर से बोल नहीं सकते थे, तब वो बांसुरी की आवाज से इशारा करते थे, जैसे दाएं जाओ, छिप जाओ, शिकार नजदीक है, ऐसे सांकेतिक सुर।
2: अरे वाह, मतलब बांसुरी उस समय का जंगल वाला वॉकी टॉकी था।
0: इससे अलग अगर सोचो तो कितनी अद्भुत बात है ना, जब इंसान ने बोलना भी ठीक से नहीं सीखा था, तब भी वो गुनगुनाता था।
1: और आज हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं, अपने सुरों, गीतों और संगीत से,
2: और वो भी दिल से।
1: तुम लोगों को पता है, पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे, तब भी संगीत का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होता था।
2: संगीत युद्ध में? अरे वहाँ तो तलवारें चलती थी, ढाल टकराते थे, वहाँ भला संगीत का क्या काम?
1: बिल्कुल काम था, तब मोबाइल तो थे नहीं कि हेलो आ जाओ इधर से वार करो बोला जाता होगा। लोग शंख, नगाड़े, तुरही जैसे वाद्य यंत्र बजाकर सिग्नल देते थे, जैसे हमला करना है, पीछे हटना है या नया प्लान क्या है।
2: हाँ, जैसे बाहुबली फिल्म में युद्ध शुरू होने से पहले नगाड़े बजाकर इशारा किया जाता था।
1: हाँ, और जरा सोचो, जब ये बजते थे तो सैनिकों का हौसला भी बढ़ता था और जोश में लड़ते भी थे।
0: सिर्फ युद्ध ही नहीं यार, धार्मिक पूजा में भी संगीत का बहुत बड़ा रोल है। तुमने ध्यान दिया है, मंदिरों में आरती के वक्त मंजीरा, ढोलक और घंटियां बजती हैं।
1: बिल्कुल, और गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन होता है, चर्च में भी हारमोनियम और पियानो पर गीत गाए जाते हैं। मतलब हर धर्म में संगीत के जरिए भगवान से जुड़ने की कोशिश होती है।
2: संगीत तो दिल की बात कहने का जरिया भी है। खुश हो तो गाना गुनगुनाने का मन करता है, दुखी हो तो कोई उदास गीत अच्छा लगता है।
1: और प्यार में तो, अरे सबसे पहले लोग गाना ही सुनाते हैं, तेरे लिए ही जिया मैंने।
0: संगीत हमारी भावनाओं का एक्सप्रेस ट्रेन है, चाहे गुस्सा हो, डर हो या इमोशनल फीलिंग, सब कुछ उसमें मिल जाता है।
1: तो अब तो ये पक्का हो गया कि संगीत सिर्फ मस्ती के लिए ही नहीं होता, वो तो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाता है।
0: क्या तुम जानती हो, प्राचीन मिस्र में जब कोई राजा मरते थे, तब संगीत वाद्य यंत्र उनके साथ मकबरों में रखे जाते थे। उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी राजा को संगीत चाहिए। यह संगीत का वही जादू है जो जीवन के हर पहलू को छूता है।
1: ये सच में जादू है, एक ऐसी चीज जो समय, भाषा, सभ्यता से परे है। इसने सभी संस्कृतियों से जोड़ने का काम किया है।
2: यह सारी बातें तो प्राचीन काल की हुई, उसके बाद संगीत कैसे फैला?
0: फिर आया मध्य युग, जब चर्च और राजा लोग संगीत को संरक्षित करने लगे, धीरे धीरे संगीत को लिखना भी शुरू हुआ, ताकि उसे बार बार बजाया जा सके। तुम जानती हो, यूरोप में ग्रीक और रोमन संस्कृतियों के बाद संगीत को शास्त्रीय रूप में स्वीकार किया गया था।
1: और फिर आया पुनर्जागरण, जब गाने एक से ज्यादा सुरों में गाए जाने लगे, जिसे कहते हैं पॉलीफोनी। उस समय का संगीत इतना अलग था कि उसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।
0: और फिर आया बैरोक युग, बाख, हैंडेल, विवाल्दी जैसे महान संगीतकारों का दौर। उनके संगीत ने चर्च, शाही दरबार और यहाँ तक कि आम जनता के दिलों में जगह बनाई।
1: और मत भूलो शास्त्रीय युग, जिसमें बीथोवेन, मोजार्ट और हेडन जैसे महान संगीतकारों ने हमें सिखाया कि संगीत कैसे आत्मा को छू सकता है। बीथोवेन का 9वां सिम्फनी और मोजार्ट के ओपेरा आज भी लोगों को रुलाते हैं, भावनाओं को उजागर करते हैं। फिर 19वीं सदी, जब संगीत और भी भावनात्मक हो गया, रोमांटिक युग, शुमान, चोपिन, ब्राह्मस के संगीत में हमें मानवीय संवेदना की गहरी छाया देखने को मिली।
0: और फिर 20वीं सदी का आधुनिक संगीत, डेबूसी, अस्ट्रॉस जैसे कलाकारों ने नए प्रयोग किए, अमूर्तता, भाव और रंग भर दिए।

0: तो कुल मिलाकर संगीत बदलता रहा, बढ़ता रहा और हमारे साथ चलता रहा। कभी कभी तो लगता है कि संगीत हमें सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है।
1: बिल्कुल सही कहा, किसी वाक्य के मुकाबले संगीत हमें जल्दी समझ में आते हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या लोकगीत, पॉप म्यूजिक हो या भजन, हर धुन में एक कहानी छिपी होती है और यही तो संगीत का असली जादू है जो हमारे दिलों में हमेशा रहता है।
0: सबसे मजेदार बात, हर जगह का अपना अलग संगीत होता है। राजस्थान का लोकगीत अलग, असम का अलग, तमिलनाडु का अलग, सब अपनी संस्कृति की कहानी कहते हैं।
1: संगीत से हमारी पहचान जुड़ी है, शादी हो, त्योहार हो या गांव का कोई लोक उत्सव, बिना संगीत सब अधूरा लगता है।
0: ये लोकगीत क्या होता है?
2: लोकगीत मतलब वो गाने जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। कोई शादी हो, त्योहार हो, खेतों में काम हो या बारिश का मौसम, हर मौके का अपना गीत होता है।
1: बिल्कुल, जैसे छठ गीत, छठ पूजा में कांच ही बस के बजते ही लगता है जैसे पूरा मोहल्ला जाग गया है।
2: और फिर होते हैं धार्मिक गीत, भक्ति गीत या फिर आल्हा। लेकिन लोकगीत सिर्फ पूजा या त्योहारों के लिए नहीं होते, कुछ गाने समाज को आईना दिखाने के लिए भी होते हैं। जैसे बिरहा, जिसमें दर्द होता है, दूरी होती है, और झूमर, जिसमें फसल के मौसम और त्योहारों की बातें होती है, और कजरी, जब बादल गरजते हैं और खेतों में हरियाली आती है, उस वक्त गाया जाता है। सच में लोकगीत मौसम से भी जुड़े होते हैं।
0: मतलब गानों से लोग जागरूक भी होते हैं।
1: मुझे सामा चकेवा पसंद है, वो जब हम बहने मिलकर गाती थी।
2: और कलाकारों की बात करें तो शारदा सिन्हा और भरत शर्मा व्यास जैसे बड़े कलाकारों ने इन गीतों को सिर्फ गांव तक नहीं, पूरे देश

0: हमारा संस्कार, हमारी यादें और हमारे रिश्तों का हिस्सा होते हैं।
1: हाँ, जब दादी रोटी बेलते बेलते कोई सोहर गा देती थी ना, तो लगता था ये गीत हमारी आत्मा का हिस्सा है। तुम लोगों को पता है कि 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी है, मतलब म्यूजिक डे।
2: हाँ, हर साल 21 जून को पूरी दुनिया वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी विश्व संगीत दिवस मनाती है। सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं, बल्कि संगीत की अहमियत समझने के लिए।
0: मतलब सिर्फ डीजे और पार्टीज के लिए नहीं?
1: नहीं बाबा, इसका असली मकसद है संगीत को सबके दिलों तक पहुँचाना, चाहे कोई क्लासिकल गाता हो या लोकगीत सुनता हो।
2: इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस से हुई थी, जब वहाँ के कल्चर मिनिस्टर जैक लैंग और एक संगीतकार मॉरिस फ्लूरेट ने 21 जून को संगीत उत्सव मनाने की पहल की।
0: वाह, और ये अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
1: हाँ, आज दुनिया के हर कोने में लोग इस दिन संगीत कार्यक्रम करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, नए कलाकार मंच पर आते हैं।
2: लेकिन यह दिन सिर्फ जश्न का नहीं है, यह याद दिलाने का दिन भी है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक एहसास है। यह तनाव को दूर करता है, दिलों को जोड़ता है और हमें हमारी जड़ों से मिलाता है।
0: जैसे हमारे बिहार के लोकगीत सोहर, छठ गीत, कजरी, झूमर, ये सिर्फ गाने नहीं, हमारी भावना है।
1: तो आइए आज विश्व संगीत दिवस पर हम सब मिलकर संगीत के उस रूप को सेलिब्रेट करें जो हमें हमारी पहचान से जोड़ता है, मन की बात कहता है और दुनिया को एक रंग में रंग देता है। संगीत जीवन की सबसे मीठी भाषा है, आइए इस भाषा को सुने, समझे और सहेजे।
2: बहरहाल अब हमारे जाने का वक्त हो चला है, पर जाने से पहले पिछले एपिसोड के सवाल जवाब हो जाए।
1: तो हमारे पिछले बार का सवाल था कि बाल श्रम निषेध दिवस कब है,
2: जिसका सही जवाब है 12 जून
1: का। सही जवाब दिया है पूर्वी चंपारण से रामविलास प्रसाद कुशवाहा ने,
2: दलसिंह सराय से अर्णव आनंद और अनुष्का रॉय ने,
1: वैशाली से नेहा सरिता देवी ने,
2: मोतिहारी से चंदन कुमार ने।
1: और अब बारी है इस बार के सवाल की। इस बार का सवाल है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है।
2: बिल्कुल, इस

0: जवाब आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9142432658।
1: जी हाँ, 9142432658।
0: आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है इसकी भी जानकारी आप हमें इसी नंबर पर दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपको बाल किलकारी के अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: रविवार के दिन संध्या 6:45 से आकाशवाणी पटना पर अवश्य सुने कार्यक्रम ममता का आंचल। साथ में होंगी IVF विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: आज नन्हे साथियों की पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडली में आपकी साथी आई हैं रिब्या सिंह और हम हैं रंजना दीदी और हम अपने नन्हे

0: लगता है ऐसा? और जब आप अपने नन्हे साथियों से मिल रही हैं तो यहाँ भी आपको अच्छा लगता होगा।
1: हाँ
0: और बच्चों, अपना अपना एक परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, और इसको कहते हैं एकाकी परिवार। जहाँ मम्मी पापा जॉब करते हैं वहाँ हम लोग रहते हैं, और कई बार अपने दादा दादी के साथ भी रहते हैं। आपके घर में कौन कौन है रिब्या?
1: दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मैं, मम्मी पापा और भाई बहन।
0: वाह, आपका तो परिवार संयुक्त परिवार है, और उसमें जब सब मिलजुल कर रहते होंगे तो कितनी खुशी होती होगी ना।
1: हाँ
0: हर त्योहार, हर समय खुशी का माहौल रहता
1: जी
0: होगा,
1: दीदी,
0: और सब एक दूसरे की मदद भी करते होंगे,
1: हाँ
0: और बहुत मन भी लगता होगा परिवार में।
1: हाँ
0: हमको भी मन हो रहा है कि एक बार आपकी फैमिली में हम भी आएं, और जब हम अपने परिवार को एक साथ देखते हैं तो वो एक फैमिली ट्री की तरह हम बना सकते हैं। आप जानती हैं फैमिली ट्री?
1: हाँ मुझे कई बार अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है।
0: फैमिली ट्री का?
1: हाँ
0: तो वो फैमिली ट्री का प्रोजेक्ट आपके घर में है?
1: नहीं, मैंने अपने स्कूल में उसे जमा कर दिया है।
0: अच्छा, तो आपके घर में तो पूरा परिवार है, और परिवार का जो आपने फैमिली ट्री अपने प्रोजेक्ट में बनाया वो स्कूल में भी है। उसको कैसे बनाते हैं रिव्या?
1: पहले एक ट्री बना के उसमें अपने सारे परिवार के सदस्य का एक फोटो चिपका के नाम लिख देना रहता है।
0: ये तो बड़ा अच्छा लगता होगा। और पर्यावरण जो है, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, नदी तालाब झरना सब कुछ होता है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के साथ हमको तालमेल से रहना चाहिए।
1: जी दीदी,
0: पर्यावरण को हम कैसे उसके साथ तालमेल से रह सकते हैं रिव्या?
1: हमें हर साल अपने घर में एक पौधा मात्र लगाना ही चाहिए और इको फ्रेंडली चीजें यूज करनी चाहिए।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने अपने नन्हे साथियों को बताई और रंजना दीदी को भी बताई। और एक पौधा तो लगाए ही, उससे ज्यादा जितने पौधे लगा सकते हैं।
1: हाँ
0: पौधे लगाएं, लेकिन कटाई पर रोक लगाएं। अगर कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसको कटने से बचाना चाहिए। जब पौधे छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल हम करते हैं।
1: हाँ
0: कैसे करते हैं देखभाल?
1: पानी देके, उनका
0: हाँ
1: ख्याल रख के।
0: हाँ अगर छोटा पौधा है तो उसको चारों तरफ से घेर देते हैं ताकि कोई पशु उसको खराब ना करे, कोई बच्चा भी उसको खराब कर सकता है, तोड़ सकता है, तो उसको थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। और जब पौधे पेड़ बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो अपना खुद ही बहुत अंदर तक जमीन में उनकी जड़ें जाती हैं, और वहाँ उनको पानी मिलता है जिससे वो पेड़ हरा भरा रहता है।
1: हाँ
0: फूल की खेती करते हैं, जो बाजार में फ्लावर्स मिलते हैं, बुके मिलते हैं, वो भी खेती होती है। तो उसको भी सही तरीके से उसका रख रखाव किया जाता है, सही तरीके से उसको तोड़ा जाता है, और फिर मार्केट में वो मिलता है और हम लोग उसको खरीदते हैं। तो इससे और पर्यावरण से हमको शुद्ध वायु मिलती है।
1: हाँ
0: उसका हम क्या करते हैं?
1: उस शुद्ध वायु से हमें अच्छी अच्छी जिंदगी मिलती है। अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगा तो हमारा जीना मुश्किल हो सकता है।
0: बिल्कुल, शुद्ध वायु के रूप में हम लोग क्या लेते हैं श्वासों के द्वारा,
1: ऑक्सीजन,
0: और छोड़ते क्या हैं?
1: कार्बन डाइऑक्साइड।
0: जिसको पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और उनके द्वारा जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो हमारे लिए प्राणवायु होती
1: हाँ
0: है ना। और जब खेत खलिहान सब कुछ हरा भरा, खिला खिला, फूल है, पौधा है, वो फूलों से लदा हुआ। अभी आप देखती होंगी, कहीं जाती होंगी, जब दूर की यात्रा में जाइएगा, गर्मी छुट्टियां होंगी तब भी जाएंगी, तो रास्ते में पेड़ मिलेंगे, आम के पेड़ मिलेंगे, उसमें बहुत सारे आम लगे होते हैं, है ना।
1: दीदी,
0: तो वो देखकर कितना अच्छा लगता है ना। और किसान दिन भर मेहनत करके अपने खेत खलिहान का पूरा ख्याल रखकर वहां अनाज उपजाते हैं, और हम लोगों को मिलता है वो।
1: हाँ
0: तो
1: दीदी,
0: इसके पीछे बहुत मेहनत होती है ना।
1: जी दीदी,
0: और स्कूल में जब रिबिया को मौका मिलता है पढ़ाई के बाद, तो वो क्या करती हैं?
1: मैं खेलती हूँ
0: क्या खेलती हैं
1: बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे कई खेल खेलती हूँ।
0: स्कूल में जो होता है? तो
1: हाँ
0: खेल के बारे में अपने नन्हे साथियों को बताइए।
1: स्वस्थ शरीर

0: मस्तिष्क का निवास होता है। इस कहावत को चरितार्थ करने का सबसे अच्छा साधन खेल कूद है। आज के आधुनिक युग में जहाँ लोग मोबाइल कंप्यूटर में व्यस्त हैं, वहाँ खेलों का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। हम विश्व खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाते हैं और भारत में हम खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं।
1: आपको तो बहुत अच्छे से पता है और अब आपके नन्हे साथियों को भी पता है कि खेल दिवस हम कब मनाते हैं।
0: जी
1: लेकिन
0: दीदी,
1: खेल दिवस पर तो विशेष आयोजन होता ही है। खेलना हम सब के लिए हर उम्र में जरूरी होता है। आप जैसे अपने दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ कौन सा खेल खेलेंगी?
0: बैडमिंटन
1: खेल
0: जैसे।
1: लेंगे? दादा दादी आपके खेल लेंगे बैडमिंटन?
0: हाँ
1: उनके हिसाब से धीरे धीरे खेल लेंगी ना।
0: हाँ
1: और कौन सा खेल है?
0: और हम बैठ के भी कई खेल खेल सकते हैं, जैसे लूडो, कैरम, चेस, टेबल टेनिस, जैसे कई गेम खेल सकते हैं हम इंडोर गेम में।
1: आप तो ये भी जान रही हैं और खेलती भी हैं, है
0: हाँ
1: ना? और खेल खेल में लड़ाई भी होती है
0: नहीं
1: तो लड़ाई होनी भी चाहिए, तभी तो पता चलता है कि हाँ आपको पता है कि आप जहाँ गलती किसी ने की तो आप उससे बोलेंगी। और हो सकता है आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन भी कभी लड़ाई करने में आपसे जान ले कि हाँ हमने गलती की तो रिव्या से लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई लंबी नहीं चलनी चाहिए,
0: नहीं।
1: मना लेना चाहिए ना, चाहे स्कूल में चाहे घर में ऐसा होना ही चाहिए। और रिव्या, हम बात कर रहे थे अभी पर्यावरण के विषय में ना, तो
0: हाँ
1: आपको बताएं और नन्हे साथियों को भी बताएं, पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। पहला है जैविक घटक, इनमें सजीव आते हैं जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव। और दूसरा है अजैविक घटक, इसमें निर्जीव तत्व शामिल होते हैं जैसे हवा, पानी, प्रकाश, तापमान और खनिज। इन सब से जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है और दोनों की ही जरूरत होती है। बच्चों, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब अच्छा लगता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे अपने आसपास, जो कि पढ़ नहीं पाते हैं। वो या तो किसी दुकान पर काम कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं, या किसी होटल में, या फिर रास्ते के किनारे ऐसे बैठे मिलते हैं। उन बच्चों को देखकर अच्छा तो नहीं लगता है ना?
0: नहीं
1: कैसा, क्या लगता है आपको, उनके लिए क्या कर सकते हैं?
0: कि अगर मैं उनकी मदद कर सकती तो मैं ज़रूर करती कि उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में मैं कोशिश करती कि वो जा सकें।
1: हाँ, इसके लिए हम मदद कर सकते हैं। वो बाल मजदूरी करते हैं।
0: हाँ
1: तो आपके आसपास मोहल्ले में यदि ऐसे बच्चे हैं तो उन सबको इकट्ठा करके हम चाहें तो कुछ उनको पढ़ा सकते हैं। पेपर के खिलौने बनते हैं इस तरह के, या जिसकी रुचि ड्राइंग में उनको ड्राइंग सिखा सकते हैं। इस तरह हमारा भी मन लग जाएगा और उन बच्चों को कुछ सीखने को मिल जाएगा।
0: जी दीदी,
1: तो ऐसा करने के लिए आप अकेले तो नहीं करेंगी, अपने कुछ मोहल्ले के साथी, स्कूल के साथी जो इस तरह का शौक रखते हैं उनको शामिल कर सकती हैं।
0: हाँ दीदी,
1: और आपके पास बहुत सारी कॉपी किताब होंगे, कॉपी जिनमें पन्ने भी खाली, या खरीद भी सकते हैं, कलर पेंसिल हो, पेन हो, इन सबको उन बच्चों के बीच ले जाकर उनसे बनवाएं और उनको बताएं कैसे क्या बना सकते हैं, कुछ पढ़ना लिखना सिखाएं। और रिव्या, एक काम आप छोटी होकर भी बड़ों का कर सकती हैं, वो बताएं। आप कुछ बताएंगी तो बताइए।
0: मैं उन्हें मदद कर सकती हूँ पढ़ने में, ज्यादा से ज्यादा उन्हें कॉपी किताबें खरीद के दे सकती हूँ। उसके आगे मैं बस उन्हें पढ़ा सकती हूँ और जिस चीज में उनकी रुचि है उसमें उनको और मदद कर सकती हूँ।
1: वाह, ये तो रिब्या की बहुत बहुत अच्छी ये सोच है। और
0: आप जानती हैं दीदी, मेरे दादा ये कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती।
1: ये बिल्कुल सही कहते हैं और आप भी इसको मानती हैं?
0: हाँ,
1: और मानती हैं। और आपको दादाजी की ये बात बिल्कुल आपने गांठ बांध ली, तभी अपने नन्हे साथियों को भी बता रही हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती।
0: हाँ
1: हम कभी भी कुछ सीख सकते हैं ना।
0: हाँ
1: जब परिवार

0: परिवार में ऐसे बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं, उनकी आर्थिक तंगी थोड़े समय के लिए वो मजदूरी करके पूरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बड़े होकर फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो आगे चलकर उनको मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में।
1: हाँ
0: तो सही उम्र होती है बचपन से पढ़ाई लिखाई की थोड़ी आदत बने, होता है ना ऐसा?
1: हाँ
0: तो
1: दीदी
0: हाँ, तो इन बातों को रिव्या बहुत अच्छे से समझ रही हैं और अपने उन नन्हे साथियों के लिए जो बाल मजदूरी करते हैं उनके लिए कई तरह से मदद करने को रिव्या तैयार हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगी गर्मी छुट्टी में।
1: हाँ
0: कहीं घूमने भी जाएंगी?
1: नहीं इस साल नहीं पर अगले साल जाऊंगी।
0: अच्छा, तो इस साल जब आपकी गर्मी छुट्टियां होंगी तो आप ऐसे कुछ काम जरूर करिएगा जिसमें मजा भी आए और उससे बहुत आपको मन भी लगे और किसी को उससे फायदा भी मिले, है
1: हाँ
0: ना? करेंगी?
1: हाँ
0: और भी कुछ प्लान है आपका गर्मी छुट्टी का?
1: नहीं पहले तो मैं अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करूंगी, फिर आगे कुछ और सोचूंगी।
0: होमवर्क के साथ बीच बीच में समय मिले तो खेलना। और आपको साइकिल चलाना कैसा लगता है?
1: मुझे
0: आता है?
1: साइकिल चलाना बहुत पसंद है
0: आप साइकिल चलाती हैं?
1: जी,
0: आप कैसे सीखी साइकिल चलाना?
1: मेरी दीदी ने मुझे बचपन से सिखाया साइकिल चलाना।
0: गिरती भी थी?
1: हाँ
0: गिरने से डरना नहीं चाहिए और कोई गलती हो तो डांट खाने से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां कई बार होती हैं, उसी से हम सीखते भी हैं।
1: हाँ
0: जरूर सीखते हैं ना? तो
1: जी
0: रिव्या, हमको मन हो रहा है कि आपको और अपने नन्हे साथियों को एक चुटकुला सुना दें। क्या सुना दें? तो सुनिए, गोलू बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मोनू बोलता है, क्या कहती थी तेरी माँ? गोलू बोलता है, जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता वो क्या कहती थी। हंसी आई ना?
1: हाँ
0: इसीलिए ये तो चुटकुला है, लेकिन सचमुच में जो मम्मी पापा या घर के बड़े कोई भी कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, उसको गौर करना चाहिए। भाई बहन जो हैं उनको भी जहाँ मदद की जरूरत हो वहाँ
1: सिखाना
0: मदद करनी
1: चाहिए।
0: चाहिए, है ना? अभी नए क्लास में आप गए होंगे तो नई कॉपी किताबें आई होंगी, सब पर जिल्द चढ़ाना, उस पर नाम लिखना, ये सारे काम आप खुद कर लेती हैं?
1: हाँ पर मेरे कजन्स भी मेरी मदद करते हैं और मैं भी उनकी मदद करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और साइकिल की बात हो रही थी तो साइकिल के बारे में अपने नन्हे साथियों को कुछ बताइए ना।
1: साइकिल दो पहियों से चलने वाला ऐसा वाहन है जो मानव श्रम यानी पैरों से पैडल मारकर चलाया जाता है। आज के आधुनिक युग में जहाँ कारों मोटरसाइकिलों की संख्या बढ़ते जा रही है, वहां साइकिल का अपना ही एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। यह समाज के हर वर्ग के लिए उपस्थित है। इसका आविष्कार बैरन कार्ल ड्रीस ने सन 1817 में किया था। इसे हम पहले ड्रेसिन या स्विफ्ट वॉकर के नाम से जाना करते थे। हम विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाते हैं।
0: रिव्या के लिए तो आपके नन्हे साथी ताली भी बजाएंगे, क्योंकि रिव्या लिख कर तो लाई है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए अपने नन्हे साथियों से बात करते समय साइकिल के बारे में बताने में। लेकिन रिव्या झूम झूम कर अपने मन से ही सारी बातें बता गई, और ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि आज के समय में कार, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल सब कुछ है जिससे प्रदूषण भी फैलता है, लेकिन साइकिल से कोई प्रदूषण नहीं। हमारा अच्छा व्यायाम होता है
1: हाँ
0: और व्यायाम होता है तो हमारे अंदर उससे एक नई ऊर्जा के साथ हम फिर से काम करने लगते हैं।
1: जी
0: और
1: दीदी
0: साइकिल के लिए तो कोई ईंधन नहीं, बस आपकी मेहनत लगती है, जो कि मेहनत लगनी भी चाहिए, है ना?
1: जी
0: तो
1: दीदी
0: अभी आप साइकिल चलाती हैं तो किन बातों का ख्याल रखती हैं अगर रोड पर निकलती हैं साइकिल लेकर तो? जाती हैं।
1: हाँ हमें हमेशा अपना हेलमेट रखना चाहिए साइकिल चलाने के लिए, और हाथ में ग्लव्स होने चाहिए।
0: हाँ
1: जब भी हम रोड पे से मोड़ लेते तो हमें अपने साइकिल का हॉर्न जरूर बजाना चाहिए।
0: हम लोगों को किस तरफ से चलना चाहिए रोड पर?
1: लेफ्ट साइड।
0: वेरी गुड। पढ़ाई करते हैं, खुश रहते हैं और थकान

0: नहीं रहे तो हमको बातचीत करना भी अच्छा लगता है, और इन सब के लिए हमारे शरीर को और दिमाग को पौष्टिक भोजन चाहिए।
1: हाँ
0: पौष्टिक भोजन दिमाग को कैसे मिलेगा?
1: हमें दूध पीना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर
0: हाँ।
1: के खाने को अवॉइड करना चाहिए, हफ्ते में एक बार बाहर का खाना इनफ।
0: रिव्या ने तो अपने दोस्तों को ये छूट दी है कि सप्ताह में एक बार बाहर का खाना खाया जा सकता है, लेकिन जब बाहर का खाना खाएं तो हमको थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करना चाहिए
1: हाँ
0: और उसके साथ कुछ फल सब्जी भी उसके पहले या बाद खाना चाहिए। और सबसे अच्छा भोजन क्या होता है उन लोगों के लिए जो खाना नहीं चबा सकते, नहीं खा पाते हैं, उनके लिए
1: दूध।
0: दूध होता है। उसको पेय पदार्थ भी कहते हैं, एक संतुलित आहार भी कह सकते हैं। तो दूध के बारे में कुछ बताइए ना।
1: दूध एक अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थ है जिसे हम पूर्ण आहार के नाम से भी जाना करते हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी जैसे दुधारू पशुओं से मिलता है। हम विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाते हैं। दूध में एक केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो दूध को उसका सफेद रंग देता है। दूध में एक प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है जो दूध को हल्की सी मिठास देती है।
0: रिव्या तो एकदम अपने नन्हे साथियों का मनोरंजन भी कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बता रही है जो शायद नन्हे साथी दूध तो जानते होंगे लेकिन उसके इतने सारे गुण नहीं जानते होंगे जो रिव्या ने अपने दोस्तों को बताया। और दूध आपको कैसा लगता है? अपने को बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश और स्वस्थ रखने के पूरे नुस्खे जानती हैं। दूध पियो, ताकत पाओ, हर दिन आगे बढ़ते जाओ, हड्डियां हो मजबूत, हमारी सेहत बने सबसे प्यारी। सबसे प्यारी हमारे लिए क्या है? हमारी सेहत है ना। सेहत अच्छी है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ मुश्किल काम भी कर सकते हैं, कुछ बहुत दिमाग लगाने का सोचने का काम हो वो भी कर सकते हैं, और हल्के काम तो बहुत आसानी से कर सकते
1: हाँ
0: हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं।
1: जी दीदी,
0: आप अपने घर में दादा दादी नाना नानी जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, उनकी क्या मदद करती हैं?
1: मैं मम्मी के काम में मदद करती हूँ, मतलब जैसे ज़्यादा सामान नहीं फैलाती हूँ, जब सो के उठती हूँ तो अपना बिस्तर तैयार देती हूँ कि मम्मी को ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल सके।
0: वाह, आपकी मम्मी भी ड्यूटी के लिए निकल सके, और जब किसी की आपके किसी साथी की मम्मी घर में भी रहती हैं तो उनको बहुत काम करने होते हैं ना,
1: हाँ जी
0: तो
1: दीदी,
0: उसमें आपकी ये मदद मिलती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप ऐसा करती हैं तो आपके नन्हे जो भाई बहन हैं उनको भी मौका मिलता है कि ऐसे कर रही हैं दीदी तो हमको भी ये सीखना चाहिए। और सीखते हैं हम देख के ही, घर में कोई बताए तो या हम उनको अच्छे काम करते देखें तो, है ना?
1: हाँ जी
0: और
1: दीदी,
0: जब आपकी सेहत अच्छी होगी रिव्या तो आप आगे पढ़ने में, खेलने में, सब कुछ में बहुत मन लगाएंगी। और साइकिल की जो आप जब साइकिल चलाती हैं तो आपके नन्हे भाई बहन या आपके बड़े भाई बहन जो साथ चलते हैं तो उनसे क्या टक्कर होती है?
1: नहीं, मैं सावधानी रख के चलती हूँ और उन्हें भी सिखाती हूँ कि सावधानी से चला करो कि हमें कम से कम टकराना ना पड़े।
0: बिल्कुल, और जब इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और जब घर में आपकी छुट्टियां होती हैं तो भाई बहन के साथ खेलने का मौका मिलता होगा।
1: जी दीदी,
0: और कहीं घूमने जाने का भी मौका मिलता होगा।
1: हाँ दीदी,
0: तो आप कहाँ घूमने जाती हैं?
1: मैं अपने मम्मी पापा के साथ कभी कभार मंदिर जाती हूँ और कई जगह जाती हूँ जो कंफर्म नहीं रहते हैं, अचानक से प्लान बनता है।
0: वाह, जहाँ सुविधा होती है, जैसा समय होता है मम्मी पापा के पास, उस हिसाब से आप घूमने भी जाती हैं।
1: हाँ जी,
0: और जब
1: दीदी।
0: हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, चाहे हम अपने आसपास जाएं, चाहे गार्डन में ही जाएं या फिर कहीं दूर जाएं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं।
1: हाँ जी दीदी,
0: जैसे
1: जैसे हमें किसी स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़े या हम जिस जिनके भी साथ हैं उन्हीं के साथ चलना चाहिए।
0: हाँ, और अपने घर का एड्रेस

0: पता होना चाहिए।
1: हाँ
0: और मोबाइल नंबर, आजकल तो मोबाइल सबसे जरूरी है, जिसको हमको जानना चाहिए, नंबर जानना चाहिए, है
1: जी
0: ना।
1: दीदी
0: कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास आपके पास मोबाइल हो, लेकिन नंबर पता हो तो हम कहीं से भी मदद ले
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं।
0: और सबसे बड़ी बात कि यदि आप भटक भी जाएं थोड़ा अपने गार्जियन से या जिनके साथ भी निकले हैं, थोड़ा सा भटक भी जाएं, तो सामने वाले को पता नहीं चलने देना चाहिए।
1: हाँ नहीं तो अगर उसे पता चल जाएगा तो वो हमें ले जाने की और कोशिश करेगा, हमें
0: हाँ
1: चोट पहुंचाएगा।
0: हाँ ये अगले को पता नहीं चलना चाहिए, स्मार्ट तरीके से हमको वहाँ अपने को पेश करना चाहिए।
1: हाँ
0: कविता कोई याद है आपको?
1: साइकिल पे।
0: साइकिल पे है। अच्छा, रिव्या साइकिल तो चलाती हैं, साइकिल के बहुत सारे फायदे भी बताई, और साइकिल पर और भी कुछ है इनके पास,
1: हाँ मेरे पास कविता है साइकिल पे।
0: तो अपने नन्हे साथियों को सुनाइए।
1: साइकिल केवल पहियों का नाम नहीं, ये मेहनत, सेहत और साधन की पहचान सही। धीरे-धीरे चलकर भी मंजिल दिला देती है, जीवन को संतुलन का पाठ सिखा देती है। ना धुआं, ना शोर, ना ईंधन की पुकार, साइकिल से जुड़ा है प्रकृति का प्यार। हर पैडल के साथ बढ़ता आत्मविश्वास, साइकिल सिखाती है मेहनत का एहसास।
0: वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको साइकिल चलाना भी आता है, साइकिल के फायदे भी पता है, और आपने अपने नन्हे साथियों को साइकिल पर कविता भी सुना दी। रिव्या, आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है?
1: खेल
0: खेल और पढ़ाई? खेल तो पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ खिलाड़ी जो हैं उनके विषय में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और जिस खेल में रुचि है उसको हम खेल सकते हैं, और खेल में भी भविष्य बना सकते हैं। बड़े होकर हम उस खेल को अगर अच्छे से खेलते हैं तो हमको उसमें
1: रुचि मिल सकती,
0: रुचि भी होती है, उसमें हम और बहुत आगे
1: सफलता भी मिलती है।
0: सफलता मिलती है। और विषय में,
1: विषय में पढ़ाई,
0: पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है?
1: इंग्लिश और मैथ्स।
0: मैथ्स भी पसंद है, वाह तब तो ये अच्छी बात है। और हिंदी?
1: हिंदी भी मतलब ठीक है, मुझे हिंदी गंदी नहीं लगती, पर हाँ ठीक है, हिंदी भी अच्छी लगती
0: अच्छी
1: है।
0: लगती है, आनी भी चाहिए ना
1: हाँ
0: हिंदी। बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश में बातें नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो हिंदी में ही बात करनी होगी उनसे आपको।
1: हाँ
0: और बहुत जगह, ज्यादातर जगह हिंदी में लिखा होता है, कोई भी जानकारी होती है तो हिंदी आएगी जब, तभी तो पढ़ पाएंगे ना और
1: हाँ
0: जान पाएंगे,
1: हाँ
0: इसलिए हिंदी में रुचि भी होनी चाहिए। और वैसे छोटे बच्चों को तो शुरू से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, हर विषय, अपने विषय पर जानकारी होनी चाहिए, और भाषाएं जो हम सामान्य तौर पर जाननी चाहिए वो जानना ही चाहिए ना।
1: हाँ
0: तो संस्कृत आप पढ़ती हैं क्या?
1: हाँ मैंने अभी, ये मेरा पहला साल है जो मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, तो मुझे कुछ आ, आ, कुछ जानकारी पता है संस्कृत के बारे में, हल्के
0: और
1: फुल्के।
0: हाँ, और जब आगे बढ़ती जाएंगी तो संस्कृत की और जानकारी मिलती जाएगी, और अभी तो संस्कृत बहुत मुश्किल लगता होगा शायद,
1: हाँ क्योंकि ये
0: लेकिन
1: पहली बार है।
0: हाँ, और उसी में जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगी तो आपको उसमें भी दिलचस्पी आने लगेगी,
1: हाँ दीदी
0: है ना।
1: हाँ
0: और आप अपने साथियों के लिए और भी कुछ लाई हैं?
1: हाँ मैं दूध पे भी कविता लाई हूँ।
0: हाँ तो सुना दीजिए बच्चों को, अपने नन्हे साथियों को, दूध पर कौन सी कविता है?
1: दूध से मिलती ताकत और नई पहचान, सेहत का खजाना है बढ़ाता सम्मान। हर सुबह का ये अमृत प्यारा, तन मन को रखे हमेशा न्यारा।
0: वाह, ये भी कविता तो बहुत अच्छी थी। कविता तो थी ही, लेकिन रिव्या ने इसी बहाने दूध के क्या महत्व है, उससे क्या फायदा है, कितना अच्छा लगता है दूध, ये सब कुछ इस कविता में रिव्या ने अपने नन्हे साथियों को बता भी दिया।
1: हाँ
0: आप अपने स्कूल में अपना लंच बॉक्स जब लेकर

0: जाती हैं रिव्या, तो अपने नन्हे और दोस्तों के साथ मिलकर लंच करती हैं,
1: हाँ जी दीदी,
0: सब मिलकर बैठते हैं और लंच करते हैं।
1: हाँ
0: तो आपको क्या पसंद है?
1: मुझे सैंडविच पसंद है लंच में ले जाना, क्योंकि वो बहुत हल्का भी रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता
0: उसमें
1: है।
0: सब्जियां डाली जाती हैं।
1: हाँ,
0: अच्छा, और
1: और मुझे मैगी पसंद है, पर मैं वो हफ्ते में एक ही दिन लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में पूरे हफ्ते जंक फूड नहीं अलाउड है, हफ्ते में बस एक ही दिन अलाउड है।
0: वाह, तो ये भी अच्छी बात है, जंक फूड खाकर देखे तो सही कि वो कैसा होता है, और उसके बदले में फिर हमको उससे अच्छा अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना भी चाहिए। और ये तो आपके स्कूल में बहुत अच्छा नियम बना है कि सिर्फ आप एक दिन जंक फूड मन हो तो ले जा सकते हैं।
1: वो भी फ्राइडे के दिन।
0: अच्छा, फ्राइडे के दिन, तो ये अच्छा है कि एक दिन डिसाइड है, लेकिन जो जंक फूड ना ले जाए उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई बच्चा प्रतिदिन जंक फूड ले जाएगा तो उसको तो मैम सजा दे देंगी,
1: हाँ
0: और क्योंकि ये सजा सही है, तभी ये उनके हेल्थ पर अच्छा, उनका अपना हेल्थ अच्छा रहेगा तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे।
1: हाँ
0: दिव्या, और अपने नन्हे साथियों से आप कुछ बात करना चाहेंगी?
1: मैं बाल मजदूरी पे भी एक कविता लेके आई हूँ।
0: तो सुना दीजिए।
1: हाथों में किताबें होनी थी पर थमा दिया औजार, जिस उम्र में हंसना खेलना था वहां मिला सिर्फ अंधकार। छोटा सा वो कोमल बचपन काम के बोझ में खो गया, सपनों का वो सुंदर आंगन मजबूरी में सो गया।
0: ज्ञानवर्धक थी उन बाल मजदूरों के लिए जिनके जीवन में ये सब परेशानियां आती हैं। तो रिव्या का कहना है कि अपनी छुट्टियों में ये उन बच्चों का जरूर ख्याल रखेंगे जो इनके आसपास उनको दिखेंगे, या आपके नन्हे साथी भी बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में इस तरह के हैं बच्चे, तो आप लोग मिलकर उन बच्चों को कुछ अच्छी बातें
1: सिखा
0: सिखाएंगी
1: सकते हैं।
0: सिखाएंगी ना। तो ये तो रिव्या की अच्छी प्लानिंग है अपनी गर्मी छुट्टी के लिए, और जब इनका होमवर्क और सब कुछ पूरा हो जाएगा तो ये घूमेंगे भी, खेलेंगे भी, अपने पर्यावरण का ख्याल भी रखेंगी, अपने सेहत का भी ख्याल रखेंगी। और हम लोगों को रिव्या समय का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो
1: हाँ
0: हमारे बाल मंडली कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो हम अपने नन्हे साथियों से लेते हैं विदा। जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। मैं आपका रेडियो दोस्त आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेकिन एक बात, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखें। कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। हेलो फरमाइश।
3: हेलो, नमस्कार सर।
2: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो फरमाइश सर।
2: जी हेलो फरमाइश में ही आपने फोन किया है।
3: वाला बोल रहे सर।
2: स्वागत है आपका। नाम पता आप बताइए, क्या करते हैं बताइए, कैसा माहौल है?
3: काम करते हैं सर, कॉपी बनाते हैं, इंस्पायर वाला।
2: हाँ,
3: इंस्पायर वाला कॉपी बनाते हैं।
2: अच्छा, कॉपी बनाते।
3: हाँ कॉपी। हाँ,
2: ये काम कहाँ करते हैं? घर पर करते हैं?
3: घर पे।
2: तो एक कार्यक्रम सुनते हैं आप ठीक से?
3: जी हाँ, रोज सुनते हैं।

0: रोज सुनते हैं?
1: जी
0: कौन कौन सा कार्यक्रम रोज सुनते
1: आलू
0: हैं?
1: फरमाए सुनते हैं, आपको सेहतनामा सुनते हैं, हाल चाल अंजुमन सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, मैच देता अनशा तो मैच भी सुनते हैं
0: ये सब आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता
1: जी।
0: है?
1: हाँ सर,
0: कुछ और कहना
1: चौपाल भी
0: चाहेंगे?
1: सुनते हैं सर, चौपाल भी सुनते हैं, चौपाल
0: जी, सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगता है
1: आलू
0: आपको?
1: फरमाए ज्यादा आलू फरमाए
0: चलिए, आज आपने कॉल किया है,
1: जी सर।
0: क्या मन बना है, क्या सुनेंगे
1: एक गाना सुना फकीरा फिल्म में सर,
0: बताइए।
1: गाना है जो आओ में असर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। दिव्य दृष्टि वाले को मेरा बार बार नमस्कार। मेरा नाम ब्रजनंदन पासवान, गांव नथुदी, थाना कील, जिला लखीसराय से बोल रहा हूँ श्रीमान।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। कहिए कैसे हैं आप? गर्मी का मौसम है, स्वस्थ है ना?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं जब तक मौका मिला, और कम से कम सवेरे का कार्यक्रम 6 से 7:15 तक तो अवश्य सुनता हूँ।
0: जी
1: जी हाँ,
0: तो आप
1: आज
0: हमारे
1: संजोग रहा कि आपने लाइन दे दी बात करने के लिए।
0: तो इन दिनों क्या हो रहा है, कुछ बताएं।
1: इन दिनों क्या हो रहा, धूप खिली हुई है, हवा पुरवा चल रही है, गर्म में बैठे खेती बाड़ी के दिन।

0: आ गया, अब धान का बिचड़ा मकई का बिचड़ा सब लगेगा ना सर।
1: तो ये मिलता है बरसात के बाद ना?
0: हाँ हाँ बाद में मिलता है, सावन महीना से झिंगली खाना शुरू कर देते हैं, भर कार्तिक खाते हैं झिंगली बोरा ये सब।
1: हाँ फलीदार जो सब्जियां हैं लतर वाली।
0: हाँ, ऐसे भी गर्मा सब्जी लगाए लेकिन बरसात को बर्बाद कर दिया है।
1: बरसात बर्बाद कर दिया?
0: कुछ किया बर्बाद, टूट फट गया गाछ, पत्ता टूट गया, आम की फसल कुछ खत्म हो गया, ये सब है ना।
1: बेमौसम बारिश की वजह से पत्थर,
0: बेमौसम बारिश, आंधी ज्यादा तेज है, पानी कम है, ज्यादा हवा है, गाछ से तोड़ के गिरा था, जो हो समय आपका लिया है। जी हाँ, अच्छा आपने आज नहीं कहा आओ साथ चले ना कार्यक्रम में करीब एक है, इसमें आपने क्या नाम है कि भगवान महावीर जी के बारे में ही बतलाया
1: जी,
0: जिसमें आपने कहा कि इनका जन्म हुआ था वैशाली, लेकिन नहीं मैं आग्रह करूंगा आपको, बड़ी शोध हुआ है, इनका जन्म वास्तव में हुआ था लछवाड़ महकुंड गांव जो पकड़ता है जम्मू जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत।
1: इस बारे में भी हम लोगों ने, इस बारे में भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है जो
0: लछवाड़ लछवाड़
1: लछवाड़ के बारे में जानकारी दी है। अभी इसमें
0: आपने,
1: बहुत
0: आपने
1: विवाद चल रहा है। हाँ जी, तो
0: जहाँ तक सवाल है फरमाइशी जीत का फिल्म भाभी में भी मैंने देखा था 50 साल पहले जिनका, फिर दो रास्ते में, दो रास्ते में बड़ा बढ़िया कहानी है, उसको उसी समझो सुना दीजिए। एरेस में जुलसे ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।

0: नमस्कार,
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: मैं रविंदर महतो अमरपुरा गोपालगंज जिला बिहार से बोल रहा
1: जी स्वागत है, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में।
0: हूँ। हम तो बिजनेसमैन हैं।
1: जी
0: रेडियो जब से 5:45 से रेडियो खुलता है स्टेशन, तब से मैं सुनता हूँ।
1: अच्छा जी
0: 1989 से मैं सुन रहा हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया,
0: उसी समय से प्रयास करते करते आज सफल हुआ है।
1: बहुत खुशी हो रही है मुझे। इतने सालों के बाद आपका प्रयास कम नहीं हुआ और आप आज बात कर रहे हैं मुझसे,
0: मैं
1: बहुत
0: आपका
1: अच्छा।
0: सब प्रोग्राम मैं सुनता हूँ। हाँ ना, कार्यक्रम
1: तो कुछ कार्यक्रम के बारे में ही बताएं हमें।
0: हेलो फरमाइश, एवन कार्य, ये सब हम सुनता हूँ।
1: सब कार्यक्रम पसंद है
0: जी, हम मैं सब सुन लेता हूँ।
1: और व्यवसाय क्या है आपका, कैसे करते हैं?
0: व्यवसाय है कि हम जाते हैं, सामान लाते हैं, 12 बजे तक चलाते हैं दुकान, है ना, और उसके बाद सामान लाते हैं, फिर 3 बजे दुकान खोलते हैं, 5 बजे से स्टेशन खुलता है, तो 5 बजे से 8 बजे 9 बजे तक सुनता हूँ।
1: बहुत अच्छा, हमारे कार्यक्रम सुनते रहें, आज आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। क्या सुनेंगे?
0: बहुत नदिया के पार कौन दिशा में लेके चलू रे बटोरिया।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी हम राकेश पांडे बोल रहे हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं।
0: क्या करते हैं राकेश जी?
1: हम तो बस कीर्तन भजन करते हैं, संगीत में जुड़े हुए हैं।
0: तब रेडियो कैसे सुन पाते हैं? क्या क्या सुनते हैं कुछ हमें
1: हम तो
0: बताएं।
1: रेडियो सेट रखे हुए हैं सर,
0: अच्छा, तो पासे में रहता है।
1: रेडियो पास में ही रखता हूँ।
0: क्या क्या सुनते हैं आप?
1: उसमें हम खेती गृहस्थी सुनते हैं, समाचार वगैरह सुनते हैं, और भक्ति संगीत भी सुनते हैं, रामचरितमानस वो भी सुनते हैं।
0: सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं?
1: अभी हम पसंद कर रहे हैं एक

0: हेलो
1: हेलो। हाँ भैया नमस्ते
0: जी, नमस्कार
1: जी। भैया योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी। योगेश जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया भी अच्छे हैं।
0: सब ठीक ठाक चल रहा
1: हाँ जी सब ठीक ठाक है।
0: है? तो उधर का क्या हाल चाल है, कुछ बताइए।
1: गर्मी तो बहुत है भैया, नौटप्पा की स्थिति है अभी।
0: क्या की स्थिति है?
1: नौटप्पा जो धरती बहुत ज्यादा तप जाता है।
0: अच्छा, उसको नौटप्पा बोलते हैं आप लोग उधर।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, उसमें क्या होता है?
1: इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है भैया, ये मतलब स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा मतलब ध्यान देने वाली चीज होती है। मतलब स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ता है इसमें, धूप वगैरह में। हाँ
0: तो आपके यहाँ भी लू चलती है?
1: हाँ वही सब मान लीजिए, लू ही बोल सकते हैं।
0: जी। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का जो ये इलाका है, ये तो भारी गर्मी वाला इलाका है। उमस भी रहती है इस इलाके में, और पेड़ों की कटाई हो रही है तो गर्मी अब और बढ़ेगी।
1: जी
0: हमारे अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी को तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा
1: हाँ जी
0: जी। जिस रफ्तार से पेड़ कट रहे हैं उसका तो कुछ कहना ही नहीं, और उस रफ्तार से ना संस्थाएं लगा रही हैं पेड़ और ना व्यक्ति ध्यान दे रहे हैं।
1: जी
0: तो व्यक्ति भी जिम्मेदार हैं और बाकी लोग तो जो हैं सो हैं ही जिम्मेदार। उनकी
1: जी
0: भी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को बहुत गहराई से समझें। हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे, जो हो सकता है आने
1: जी
0: वाले समय में। 5 जून को विश्व
1: जी पर्यावरण
0: पर्यावरण दिवस है,
1: जी
0: संकल्प लें, कुछ करें। चलिए, इस गर्मी से राहत पाने के लिए कोई अच्छा सा गीत मन में चल रहा हो तो बताएं।
1: वो फिर की वाली तो कल फिर आना फिल्म है राजा और रानी।

0: हेलो समाइक संपर्क चक से बोल रहे हैं अशोक कुमार गुप्ता, सोनारी दुकान बाजार में सोनारी दुकान है संजय किशोर जी। आपका प्रोग्राम 50 सालों से सुन रहे हैं। पहले का चौपाल बच्चों का बाल मंडली जो हम लोग बच्चा थे तो बाल मंडली भी अच्छा बहुत अच्छा लगता था।
1: अभी भी बाल मंडली चलता है, कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो गया है।
0: हाँ रविवार को देता है तो भी सुन लेते हैं।
1: तो अभी क्या हालचाल है आपकी तरफ, बताएं कुछ।
0: हाँ मौसम तो ठीक है, पहाड़ थोड़ा गिरा है संपर्क में,
1: हवाएं चल रही हैं, कुछ बादल वगैरह है क्या?
0: हाँ हवा भी चल रहा है, बादल भी कुछ है हल्का फुल्का।
1: तो ठीक लग रहा होगा अभी आपको।
0: हाँ
1: क्या कर रहे हैं इस वक्त?
0: इस वक्त दुकान में बैठे हुए हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं।
1: सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है सब?
0: हाँ दुकानदारी का सब ठीक ठाक है, अभी लगन नहीं है, थोड़ा मंदा चल रहा है। संपर्क चक का सबसे पुराना दुकान हमारा ही है 55 साल से। हाँ एकदम चौराहे पर है संपर्क चक बाजार में।
1: आज आपने क्या मन बनाया है, क्या सुनाया जाए आपको?
0: आज हम मन बना हुए हैं सुनिए किशोर जी, बंधन फिल्म का गाना जो है मुकेश की आवाज में, बिना बदरा के बिगुड़िया कैसे चमकी।

0: समस्तीपुर से बोल रहे हैं। हेलो फरमाइश
1: जी, हेलो फरमाइश में आपने फोन किया, अपना नाम पता पूरा बताएं।
0: समस्तीपुर से बोल रहे हैं, जितवारपुर निजामत से।
1: जी
0: गाँव हो गया हमारा जितवारपुर निजामत ना।
1: जी
0: भुवनेश्वर राय,
1: स्वागत है आपका। क्या करते हैं राय जी?
0: हम ये समस्तीपुर में जो संत कबीर कॉलेज है ना, डिग्री कॉलेज,
1: जी
0: जी उसी में लिपिक के पद पर है सर।
1: हो सेवा में है जी,
0: जी
1: बहुत अच्छा। तो हमारे रेडियो का कार्यक्रम सुन पाते हैं आप?
0: हाँ बहुत सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। हम तो सुनते सुनते कहे एक दिन कहे जो अब हम जो है ना ट्राई करेंगे। परसों सुने थे संडे को ना, तो नंबर नोट किए थे, तो हम कहे अच्छा बुधवार का ख्याल किए हुए थे जो फोन करेंगे, लग गया। फिर
1: फोन लग गया आपका, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं?
0: बहुत अच्छा लग रहा है। सब प्रोग्राम सब सुनते हैं हम, 11 बजे रात तक हम सुनते हैं सब फरमाइश फरमाइश।
1: अच्छा
0: है ना, सब सुनते रहते हैं।
1: तो कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए, कौन कौन कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हैं आप?
0: हम तो सब पसंद करते हैं। सवेरे में जो है ना ये फरमाइशी, ये रसमंजरी है, और ये सब जो है दोपहर ऊपर का जो है संडे वाला जो हेलो फरमाइश है वो सब भी सुनते हैं। शाम उम का जो प्रोग्राम है सब रात तक 11 बजे तक जो है ना सब सुनते हैं, उसके बाद सोते हैं।
1: रेडियो के कार्यक्रम ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप?
0: जी जी जी
1: तो बताइए आज क्या सुनने का मन बनाया, आपने फोन किया है बताइए।
0: सुना दीजिएगा, कोई डॉन का ही सुना दीजिएगा, डॉन का।

0: जी नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: मैं मनोज कुमार झा बोल रहा हूँ, सहरसा
0: जी कहाँ से? मनोज,
1: बिहार से। जी
0: पहली बार कॉल किया आपने?
1: सर, बात यह करना चाहता हूँ सर, मैं एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हूँ
0: अच्छा जी।
1: और बच्चे को पढ़ाई पर मतलब फोकस डालता हूँ, वो जो अच्छा करे, कुछ आगे बढ़े, हमारे देश की प्रगति हो, अच्छे बच्चे बनेंगे तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे,
0: जी
1: इस सोच करके मैं ये पढ़ाई को ही, मैं टीचर बनने का ही शौक था बचपन से ही। और रेडियो मैं सर 10th क्लास में से ही सुन रहा हूँ, मेरे पास रेडियो अभी तक 10th क्लास से अभी तक, यानी क्या मतलब लगातार आपके पटना का फरमाइश सुनता हूँ, जैसे रात में भी रोज सुनता हूँ 10 बजे से जो आपके फिल्मी गीत देता है और भोजपुरी या संगीत जो भी है वो सारा चीज सुनता हूँ। और अभी तक मौसम तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग यहाँ फिर मौसम का सुहावना ले रहे हैं, ठंडा मौसम हो गया है तो हम लोग को सोचिए, और अभी छुट्टी भी होगी गर्मी की हम लोग का, तो
0: अभी
1: गर्मी की छुट्टी में अभी आपके ही गाना सुनेंगे संडे को।
0: तो आप निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं कि सरकारी में?
1: जी सर, जी सर,
0: निजी विद्यालय,
1: हाँ सर,
0: बहुत अच्छा है। आप
1: जी
0: अपने इस पठन पाठन के कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे,
1: जी
0: हमारी ऐसी उम्मीद है आपसे कि जो आप सोचते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे।
1: हाँ सर, हम
0: जी
1: सोचते हैं जो बच्चे हमारे अच्छे करें, कुछ करके दिखाएं ताकि हम लोग का भी नाम रोशन हो।
0: जी तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आज बहुत शिद्दत के बाद आपका प्रयास सफल हुआ।
1: बहुत प्रयास के बाद सफल हुआ सर आपका, आपके मोबाइल मैंने रेडियो स्टेशन लगा पटना।
0: तो फिर बताइए क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: सर हमको एक गाना सुनना था उदित नारायण और अलका याग्निक का, आप अपने फरमाइश से हमको कोई एक गाना सुना दीजिएगा।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी नमस्कार सर।
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं
1: भोजपुर जिला से बोल रहे हैं, नारायणपुर से। जी
0: जी।
1: नाम है सर संतेश्वर कुमार शर्मा। सर
0: जी कहिए, अपने बारे में बताइए।
1: सर ठीक है सर, बहुत गर्मी पड़ रहा है सर, 40 से 41 डिग्री तापमान चला जा रहा है।
0: तो सब ठीक है ना?
1: जी जी सर।
0: चलिए, तो सब ठीक रखने के लिए कुछ बचाव भी ज़रूरी है। वो सब जो करते हैं करते रहिए, तापमान तो गर्मी में इतना लगभग हो ही जाता है जी।
1: जी
0: बचाव करके रखना ही उपाय है, तो आप वो सब करिए। और इस गर्मी में कर क्या रहे हैं आप?
1: सर, धूप में केनो सुबह शाम निकलते हैं, न तो धूप में केनो नहीं जाते हैं सर।
0: काम धाम कैसे चलता है आपका?
1: काम धाम दुकान है, दुकान पर बैठे हुए हैं, घर पर दुकान है।
0: ठीक है, बढ़िया है। और रेडियो सुनते रहते हैं दुकान पर बैठ के
1: जी।
0: जी।
1: एक भोजपुरी में समाचार प्रसारण किए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया किए हैं सर।
0: अच्छा, भोजपुरी समाचार सुन रहे हैं,
1: जी
0: कैसा लग रहा है बताइए।
1: बहुत मस्त, अच्छा लग रहा है सर।
0: ठीक है, धन्यवाद। अभी क्या सुनेंगे?
1: राज का गाना सुना दीजिए।

0: आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1 बजे से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 0612-222-2250। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 0612-222-2250। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत कलाकार हैं सर्वजीत यादव अनुज और नीलेश्वर मिश्र। पहले सुनिए सर्वजीत यादव अनुज से लोक भजन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे सर्वजीत यादव अनुज और नीलेश्वर मिश्र।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वैज्ञानिकी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आकाशवाणी पटना के खास कार्यक्रम वैज्ञानिकी में, जिसे हम लेकर आते हैं प्रत्येक माह पहले, तीसरे और पांचवें रविवार दोपहर के 12:30 पर। तो हाजिर हूँ ज्ञान, रोमांच और नई सोच का शानदार मेल लेकर। शुरुआत करते हैं हम सबकी पसंदीदा साइकिल की बात से। क्या आपको पता है 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। यह दिन केवल एक परिवहन साधन के महत्व को रेखांकित नहीं करता, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। यह स्वास्थ्य के लिए वरदान और प्रदूषण व तनाव जैसी समस्याओं का प्रभावी समाधान है। कभी गांव और कस्बों की पहचान रही साइकिल आज फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बदलती जीवन शैली में मोटर वाहनों के उपयोग के बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी तेजी

तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आज चिकित्सक भी कहते हैं कि साइकिल चलाने से पूरे शरीर का प्राकृतिक रूप से व्यायाम होता है। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो साइकिल ना तो धुआं छोड़ती है और ना ही इसे चलाने में किसी ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही दुनिया के लिए साइकिल एक ऐसा रास्ता है जो सुलभ, टिकाऊ विकल्प के रूप में है। इसलिए

0: समुदाय के निर्माण में साइकिल की महत्ता पर प्रकाश डालती है। तो चलो एक बार फिर से हम सब भी अपने बचपन की ओर लौटें और अपनी प्यारी साइकिल को अपनी दिनचर्या में, अपने रोज के कम से कम छोटे मोटे कामों में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो एक बार फिर से शुरू करें साइकिल की सवारी। अगर बात पर्यावरण संरक्षण की करें तो अभी हाल ही में हमने 5 जून को मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। इस वर्ष इस दिन का थीम था प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक कचड़े जैसी चुनौतियों के बीच इस दिवस का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की थी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन चुका है, जिसमें 150 से भी अधिक देशों के लोग भाग ले रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित है, क्योंकि समुद्रों, नदियों, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। तो आइए हम सब मिलकर प्लास्टिक से अपनी लड़ाई लड़ें और प्लास्टिक उपयोग को ना करें या ना कहना सीखें, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। नवीनतम तकनीकें भी क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, पर्यावरण निगरानी हो, उपग्रह तकनीक हो या जलवायु स्मार्ट कृषि हो। विज्ञान और तकनीक आज हर क्षेत्र में योगदान दे रहा है। तो हम सब भी पर्यावरण की सुरक्षा, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए ध्यान रखें कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें और अपने आसपास भी लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें, क्योंकि हमारी आज की एक छोटी सी पहल हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकती है। श्रोताओं, विज्ञान और तकनीक आज हर क्षेत्र में योगदान दे रहा है। बच्चों की दुनिया भी आज विज्ञान से अछूता नहीं है। आइए डॉक्टर संदीप दफ्तुआर से विस्तार से जानते हैं कि बच्चों के लिए बदलती विज्ञान और तकनीक की दुनिया।
1: 21वीं सदी को विज्ञान और तकनीक की सदी कही जा सकती है। आज विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कृषि और रोजगार, सभी क्षेत्रों में तकनीक का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों की दुनिया भी इससे अछूते नहीं है। पहले जहां बच्चे केवल किताबों, ब्लैक बोर्ड और पारंपरिक तरीकों से शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं आज मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज का बच्चा डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुका है। विज्ञान और तकनीक ने बच्चों की सोच, सीखने की क्षमता, क्रिएटिविटी और भविष्य की संभावनाओं को नई दिशा दी है। यह परिवर्तन बच्चों को अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और आधुनिक बना रहा है। विज्ञान और तकनीक है क्या? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो प्रयोग, अवलोकन, परीक्षण और शोध पर आधारित होता है। विज्ञान हमें प्रकृति और संसार के नियमों को समझने में सहायता करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, बिजली की खोज, ग्रहों और तारों का अध्ययन। और तकनीक वह विज्ञान का वह व्यावहारिक रूप है जब वैज्ञानिक खोजों और सिद्धांतों का उपयोग मानव जीवन को आसान, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए किया जाता है, तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रोबोट, ये सारी की सारी हमारी तकनीक है। बच्चों के जीवन में विज्ञान और तकनीक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज के बच्चे डिजिटल पीढ़ी कहलाते हैं। वे छोटी उम्र से ही तकनीक का उपयोग करना सीख जाते हैं। विज्ञान और तकनीक ने बच्चों के जीवन में कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पहले शिक्षा केवल किताबों और शिक्षक तक सीमित थी, आज डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को आसान, रोचक और प्रभावी बना दिया है। आधुनिक शिक्षा के बहुत सारे साधन है, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, शैक्षणिक मोबाइल ऐप, वर्चुअल लैब, ये सारी आधुनिक शिक्षा के साधन है। स्मार्ट क्लास में बच्चों को चित्र, वीडियो, एनिमेशन और प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाया जाता है। इससे कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आते हैं। इनके बहुत सारे लाभ भी हैं। पढ़ाई बहुत रोचक बनती है, बच्चों की याद रखने की क्षमता बढ़ती है, विज्ञान प्रयोग को आसानी से समझाया जा सकता है, बच्चे जल्दी और बेहतर तरीके से सीखते हैं। दूसरा है वो ऑनलाइन शिक्षा का विकास। ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए नए रास्ते खोले हैं। कोविड के समय इसका महत्व और अधिक बढ़ गया था। ऑनलाइन शिक्षा के प्रमुख माध्यम है वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट।

डिजिटल नोट्स, लाइव लेक्चर, शैक्षणिक वेबसाइट और ऐप्स, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। घर बैठे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, समय और धन की बचत होती है, बच्चे अपने गति से सीख सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। इंटरनेट आज बच्चों के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। यह पूरी दुनिया को बच्चों के सामने खोल देता है। इससे बहुत सारे लाभ है जो बच्चों को मिलती है। नई जानकारी तुरंत मिल जाती है, बच्चे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, विज्ञान प्रयोग के वीडियो देख सकते हैं, दुनिया भर के छात्रों से जुड़ सकते हैं, नई भाषाएं और कौशल सीख सकते हैं। ये सारे इंटरनेट के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। आधुनिक तकनीक में बच्चे और ज़्यादा सीख रहे हैं, जिसमें आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक ऐसा तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने का कार्य करती है। बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग क्या होंगे? स्मार्ट लर्निंग ऐप है, उसमें भाषा सीखने वाले ऐप होते हैं, चैट बॉक्स हैं, गणित हल करने वाले ऐप हैं, व्यक्तिगत अध्ययन योजना इसमें है, बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। इसके बाद रोबोटिक्स, जो एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, इससे बच्चे सीखते हैं रोबोट बनाना, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, तार्किक सोच, समस्या समाधान उसमें अच्छी तरह से उनको हो जाता है। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये दो वर्ड है। वर्चुअल रियलिटी बच्चों को किसी काल्पनिक दुनिया का वास्तविक अनुभव कराता है, जिसमें विज्ञान प्रयोग, ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन, अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव और मानव शरीर की संरचना को समझना आसान हो जाता है। 3D प्रिंटिंग है, इसके माध्यम से बच्चे अपने मॉडल और प्रोजेक्ट स्वयं तैयार कर सकते हैं, जैसे विज्ञान मॉडल, मशीन के छोटे भाग, कला और डिजाइन प्रोजेक्ट। यह तकनीक बच्चों के क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्षमता को बढ़ाती है। विज्ञान और तकनीक के बहुत सारे लाभ हैं। यह बच्चों को दुनिया भर की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती है। बच्चे नए विचार, मॉडल और प्रोजेक्ट तैयार कर पाते हैं। तकनीकी ज्ञान बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल साधनों से कार्य तेजी से होती है। टेक्नोलॉजी शिक्षा बच्चों को भविष्य की नौकरियां और चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, जिसमें बच्चे को इंटरनेट, मोबाइल की लत लग जाती है, मोबाइल गेमिंग लग जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, मोटापा आ जाती है, नींद की कमी होती है और सामाजिक दूरी भी बनते हैं। तो ये इनका चुनौतियां है जिनका हमें सामना करना रहता है। इनका सही संतुलित उपयोग करें, बच्चों को तकनीक का उपयोग संतुलित तरीके से करना चाहिए। सीमित समय तक मोबाइल का यूज करें, खेल और पढ़ाई दोनों पर ध्यान दें, इंटरनेट की सुरक्षित उपयोग करें और माता पिता की निगरानी में करें। विज्ञान का प्रयोग और नवाचार, इनोवेशन, आज के दिनों में इनोवेशन जिसका मतलब हुआ कि नई विचार, नई सोच लाना, वह विज्ञान के प्रयोग से बहुत ही आसानी से लोग कर सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान मिलता है, समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत सारे मॉडल हैं जो बच्चे बनाते भी हैं, जिसमें वाटर प्यूरिफिकेशन का है, सोलर है, उसके बाद ज्वालामुखी का मॉडल बनाते हैं, जिससे उनकी आत्मविश्वास बढ़ती है। पर्यावरण और विज्ञान में भी बच्चों का बहुत बड़ा रोल है आधुनिक शिक्षा का। इसे सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, इलेक्ट्रिक वाहन, पॉल्यूशन नियंत्रण तकनीक, ये सारे चीज के बारे में बच्चे जानते हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। विज्ञान मेले और नवाचार भी है। नवाचार का सबसे बड़ा रूप विज्ञान मेले के रूप में आता है, जिसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, टीम वर्क सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, नए विचार विकसित होते हैं। और यह नवाचार जो है वो मेले के द्वारा या कंपटीशन के द्वारा ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जगह भारत सरकार ने भी कई तरह की योजना लगा के रखी है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, उसमें नवाचार के प्रति बच्चों के जागरूकता को बढ़ाने का काम ज़्यादा होते हैं, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाते हैं। यह हर जिला में होती है और ये जो बच्चे सुदूर गांव में रहते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, नया चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अंतरिक्ष और विज्ञान में बच्चे की रुचि भी बढ़ती है। इससे इसमें माता पिता और शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। माता पिता की जिम्मेवारी होती है बच्चों को सही शिक्षा देना, ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देना, समय सीमा निर्धारण करना। शिक्षकों की भूमिका होती है कि वह तकनीक आधारित शिक्षा देना, बच्चों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, ये माता पिता और शिक्षकों की भूमिका होती है। यहाँ पर भविष्य में विज्ञान और तकनीक और अधिक विकसित होंगे। इसमें आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें AI आधारित स्कूल खुलेंगे, रोबोट

0: रोबोट घर के काम को देखेंगे और करेंगे, ड्रोन तकनीक बढ़ेगी, अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ोतरी होगी, अंतरिक्ष पर्यटन भी संभव हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी बढ़ेगी, स्मार्ट शहर बनेंगे, स्वचालित वाहन बनेंगे जिसे हम लोग ड्राइवरलेस कार कह रहे हैं, वो भी आगे चल के बनेगी। आज के बच्चे ही भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक बनेंगे। विज्ञान और तकनीक से रोजगार में भी बहुत सारी मांगें बढ़ेगी। भविष्य में प्रमुख है इसके रोजगार में AI इंजीनियर, रोबोटिक्स विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी है विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रोजगार के साधन। इसके निष्कर्ष ये निकलता है साइंस के रूप में कि बदलती विज्ञान और तकनीक की दुनिया में बच्चों के लिए अवसर से भरी हुई है। यह शिक्षा को आसान, रोचक और प्रभावी बना रही है। विज्ञान और तकनीक बच्चों के ज्ञान, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास को बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि तकनीक का सही और संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि बच्चे विज्ञान और तकनीक का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें तो वह न केवल अपने भविष्य उज्जवल बना सकते हैं बल्कि देश और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विज्ञान और तकनीक बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने की माध्यम बन चुकी है। विज्ञान मानव जीवन को आसान बनाता है और तकनीक उसे आधुनिक बनाती है। आज का बच्चा ही कल का वैज्ञानिक है। तकनीक का सही उपयोग ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है।
1: अब बात करेंगे संपूर्ण पोषण की, यानी दूध की। 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को यह दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना है, साथ ही डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में भी सोचने का अवसर है। और इसी को ध्यान में रखकर इस वर्ष का विषय यानी थीम दिया गया है, सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर्स, यानी महिला किसानों का उत्सव। यह विषय डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान, सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा में उनकी भागीदारी को सम्मान देने के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा में तकनीकों के प्रयोग की, क्योंकि आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन और पानी से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पहली बार 2019 में मनाया गया था। इस अभियान का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानकों को बनाए रखने का कार्य भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इस दिन का जो विषय दिया गया वो है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि खाद्य जनित बीमारियों पर मजबूत आंकड़ों को ठोस कार्यों में कैसे बदला जा सकता है जो सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे। भोजन के बाद अब बात करेंगे महासागरों की, क्योंकि 8 जून को है विश्व महासागर दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है समुद्र के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 25-30% हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं। कैसे, बताते हैं। महासागर 2 प्रमुख तरीकों से वायुमंडल से कार्बन को सोखते हैं, जिनमें है जैविक प्रक्रिया, समुद्र की सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीव जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये जीव महासागर की खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार होते हैं और समुद्र में रहने वाले अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। और दूसरी है भौतिक प्रक्रिया, पानी और हवा के संपर्क से कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र के पानी में घुल जाती है। समुद्र की लहरें और धाराएं इस घुली हुई कार्बन को समुद्र की गहराई में ले जाती है, जहां यह सदियों तक जमा रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के अलावा महासागर ग्रीन हाउस गैसों से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त गर्मी का लग

90% हिस्सा भी अवशोषित कर लेते हैं, जो पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बढ़ते तापमान और प्रदूषण के कारण महासागरों की कार्बन सोखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यदि यह प्राकृतिक तंत्र कमजोर होता है तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा तेजी से बढ़ेगी, जो पर्यावरण और जीवन सबके लिए खतरा होगा। इस वर्ष का इस दिन का थीम है हमारे नीले ग्रह के लिए मजबूत समुद्री संरक्षित क्षेत्र, इसलिए समुद्रों को साफ सुथरा रखने में मदद करें और इसकी पहल जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण से संभव है। और क्या आपने सुना है या क्या आप जानते हैं विज्ञान धारा पहल के बारे में? यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई एक व्यापक और एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना और मानव क्षमता का विकास करना। इस पहल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी को मजबूत करना ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले, यह पहल भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई है। और अब जानेंगे भारत के पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा की प्रेरणादायक कहानी। भारत में पारिस्थितिकी की ठोस नींव रखने वाले व्यक्ति डॉक्टर रामदेव मिश्रा थे। उन्होंने न केवल इसकी नींव रखी बल्कि पारिस्थितिकी के विकास को और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले कई वर्षों में यह निरंतर फलता फूलता रहा। उन्होंने भारत में पारंपरिक संस्थानों में अनुसंधान और शिक्षण दोनों के लिए पारिस्थितिकी को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित करने में कई तरह से योगदान दिया, जिनमें रामदेव मिश्रा जी द्वारा 1975 में वाराणसी में पहला MB अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने भारत में पारिस्थितिकी में पहले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की योजना बनाई थी। डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी G.S. पुरी के साथ मिलकर सहलिखित इंडियन मैनुअल ऑफ प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो 1950 में इस विषय से संबंधित देश में उपलब्ध पहली पाठ्य पुस्तक बन गई। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों में जनसंख्या विभाजन की प्रायोगिक रूप से घोषणा की थी। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा 1972 में स्टॉकहोम कांग्रेस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट्स में भारत के लिए राष्ट्रीय पत्र प्रस्तुत किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मार्गदर्शन में प्रोफेसर आर मिश्रा राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति में कार्यरत थे। बाद में 1984 में NCEPC ने भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ स्थिति का आकलन किया, जिसे आज पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1966 में आयोजित पारिस्थितिकी ग्रीष्मकालीन विद्यालय के लिए तैयार की गई उनकी जीव विज्ञान कार्य पुस्तिका ने देश के विभिन्न हिस्सों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान के प्रसार पर व्यापक प्रभाव डाला। वे अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संघ के पहले कुलपति थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कार्यक्रम और यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने लंबे समय तक भारत को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संस्थान और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका की स्थापना की। वे भारतीय वनस्पति सोसाइटी के बीरबल साहनी स्वर्ण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानद वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे। और 1998 का वो वर्ष था जब ऐसे महान पर्यावरणविद वनस्पति शास्त्री हमारे बीच नहीं रहे। आप हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी देश आपको आपके कार्यों के लिए आज भी याद करता है। साइंस अपडेट में हर घर की जरूरत माचिस की
खोज

की कहानी। आज से ठीक 200 साल पहले 1826 में मानवता को एक आकस्मिक घटना का लाभ मिला और हमेशा के लिए आग पैदा करने और रोशनी जलाने के तरीके बदल गए। यह वो वक्त था जब एक प्रयोगधर्मी लेकिन गुमनाम फार्मासिस्ट जॉन वॉकर अपनी लैब में केमिकल मिला रहे थे और अनजाने में उन्होंने माचिस का आविष्कार कर दिया। यह ऐसी घटना थी जो इतिहास में कभी नहीं हुई थी और इसने इंसान के लिए आग के उपयोग को आसान बना दिया। ऐसा कारनामा करने वाले इंग्लैंड के प्रयोगधर्मी फार्मासिस्ट जॉन वॉकर थे। वे उस समय विस्फोटक बनाने के प्रयास में रासायनों को मिला रहे थे, तभी लकड़ी पर लगा एक मिश्रण गलती से उनके फायरप्लेस के पत्थर से टकराया और उसने अचानक आग पकड़ ली और 1827 में माचिस का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हुआ। वॉकर का जन्म 1781 में ब्रिटेन के डरहम के बंदरगाह नगर स्टॉकटन ऑन टीज में हुआ था। इस वक्त औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। इस क्रांति का मुख्य आधार जेम्स वॉट का भाप का इंजन था। बाद में वॉकर के माचिस के आविष्कार ने भाप के इंजन में आग को आसानी से जलाए रखने में मदद की। अप्रैल 1827 में माचिस की बिक्री शुरू हुई। वॉकर ने इसे फ्रिक्शन मैच नाम दिया और शुरुआत में इसे टीन में सैकड़ों की संख्या में बेचा जाता था। वॉकर के फ्रिक्शन लाइट्स पतली लकड़ी की तिलियां थीं, जिनके एक सिरे को पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, गोंद, अरेबिक और पानी के मिश्रण में डुबोया जाता था। जब इन्हें सैंड पेपर से रगड़ा जाता था तो ये जल उठती थी। वॉकर ने अपने फॉर्मूले को गुप्त रखा लेकिन उसका पेटेंट नहीं कराया। उनकी बनाई माचिस का उत्पाद सस्ता था और वे अपने शहर स्कॉकटन में उसकी मांग पूरी करने में सक्षम थे। हालांकि फार्मास्यूटिकल जर्नल के अनुसार वॉकर की माचिस पूरी तरह बेहतर नहीं थी। जलता हुआ सल्फर कभी कभी लकड़ी से गिर जाता था, जिससे माचिस जलाने वाले व्यक्ति के कपड़ों या फर्श को नुकसान होने का खतरा रहता था। 1829 तक लंदन के सैमुअल जोन्स ने लूसीफर्स नाम से माचिस बाजार में उतार दी, जो वॉकर की फ्रिक्शन लाइट्स की बिल्कुल नकल थी। साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन वाली यह पहली माचिस थी। ब्रिटिश मैच बॉक्स लेबल एंड बुक मैच सोसाइटी के अध्यक्ष डेरिक जूड ने बीबीसी न्यूज से कहा कि अन्य लोग भी इस नुस्खे में सुधार करने लगे थे। माचिस के डिब्बों के आकार और डिजाइन में भी बदलाव हुए। वह बताते हैं, साल 1844 में स्वीडन में माचिस का एक वर्जन सामने आया, जहां से आधुनिक रूप में माचिस लोकप्रिय बनी। डेरिक जूट बताते हैं कि कई जगहों पर माचिस बनाना घरेलू उद्योग बन गया। परिवार इसे घर पर बनाते थे, जो एक जोखिम भरा लेकिन अतिरिक्त आय का स्रोत था। डेरिक जूट बताते हैं, महिलाएं और बच्चे कारखाने के आसपास घरों में डिब्बे बनाते थे और उन्हें उत्पाद के अनुसार भुगतान मिलता था। बाद में मशीनों के आने से यह एक विशाल उद्योग बन गया और उस वक्त शुरू हुई ये कहानी आज तक हमारे घरों का एक अहम हिस्सा है। और अब सवाल हमारे जवाब आपके, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब और फिर पूछेंगे आज के दो सवाल। हमने पिछले अंक में पूछा था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। और हमारा दूसरा प्रश्न था, विश्व प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक वेंकट रमन राधाकृष्णन की मुख्य खोज क्या है? वेंकट रमन राधाकृष्णन की मुख्य खोज है खगोल भौतिकी और रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। और अब आज के दो सवाल। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर से दोहरा रही हूँ पहले प्रश्न को, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा प्रश्न है, भारत के पारिस्थितिकी के जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, भारत के पारिस्थितिकी के जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब चाहे तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। नोट करें पत्राचार का पता, कार्यक्रम वैज्ञानिकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001। हमारा ईमेल पता है feedback@gmail.com। और चलने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी।

श्रोताओं, किसी भी तरह की साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो या कोई शिकायत हो, आप भारत सरकार के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पहल अर्थात ISEA के तहत व्हाट्सएप नंबर 9490771800 या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर संदेशों का आदान प्रदान कर साइबर अपराध से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वैज्ञानिकी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैज्ञानिकी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच

0: के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हारु
0: तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी तो मुगिला
1: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी
1: की दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है। हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुआ नाका
1: बान लोक नगुआ नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना ये गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता ताकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हेमलता को। फिल्म का नाम है सुनैना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: रविवार के दिन संध्या 6:45 से आकाशवाणी पटना पर अवश्य सुने कार्यक्रम ममता का आंचल। साथ में होंगी आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार।
4: लिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है सिलसिला। फिल्म सिलसिला में अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

फिल्म सरगम में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है तलाश। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज होगा। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि पंचायत स्तर से लेकर जिला अध्यक्षों तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए पार्टी के सभी प्रतिनिधि पटना पहुंचे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर।

0: हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है।

0: एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुख तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में

0: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर को सुनिए फिल्म दोस्ताना में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को फिल्म का नाम है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: AIR at 90.
1: लिए सुनी लता मंगेशकर और ए हरिहरन को, फिल्म का नाम है लम्हे।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म गीत में। गीतकार हैं हर्षद जयपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मनीष, आप सभी के साथ। और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ 101.6 मेगाहर्ट्ज पर, यानी एफएम रेनबो पटना पर। मैं जानता हूँ कि आज है संडे, तो संडे के दिन कुछ धमाकेदार बॉलीवुड ट्रैक्स के साथ बहुत सारी बातें करेंगे हम सब मिलके। और बहुत ही खास दिन है ये संडे, गर्मी है बाहर, जरूर आप अपने अपने घरों में होंगे और शाम का इंतजार कर रहे होंगे कि कब शाम हो, थोड़ी धूप कम हो और हम बाहर घूमने निकलें। ऐसा होता है अपना संडे। चलिए फिलहाल हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम पटना अपडेट्स से। बस थोड़ी देर में 3:30 पर हाई वोल्टेज हंगामा, 4:00 समाचार हेडलाइंस, 4:02 पर बातें होंगी प्रोग्राम बिहार कनेक्शन में, बिहार की खास चीजों पर। और 4:30 पर रेडियो मिक्स में सुनवाएंगे हम आपको धमाकेदार बॉलीवुड ट्रैक्स, 5:00 समाचार हेडलाइंस और 5:02 पर हाफ आवर हिट्स में कुछ खूबसूरत फिल्मी नकमे। इसी तरह बॉलीवुड तड़का हर दिन की तरह आज भी 5:30 और शाम 6:25 पर प्रादेशिक समाचार मैथिली में सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दिन है संडे का, इसलिए दिन है आज यादों के सफर पर भी चलने का। प्रोग्राम याद आ रही है ये हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30, 7:00 सफरनामा और 7:15 पर किसी खास शख्सियत से बातें करेंगे प्रोग्राम मेहमान की बातें में। तो ऐसा है आज का अपना संडे। चलिए हम प्रोग्राम पटना अपडेट्स की शुरुआत करना चाहेंगे कुछ ऐसे ही कुछ धमाकेदार बॉलीवुड ट्रैक्स से। चलिए एक बार सुनते हैं नीति मोहन के साथ बेनी दयाल को फिल्म बैंग बैंग में।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उन किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपर कोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम।

इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिया का नाल राजा साहब से अभी मिला है। इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया। आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। लो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए, कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाब कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई। जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना अब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी हुजूर।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।

0: जी चाचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
1: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
0: तो चाचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।

0: फरमाया?
1: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
0: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
1: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
0: उफ दादी जान,
1: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तोहीन होती रहती है।
0: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये रदा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
1: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
0: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
1: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
0: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
1: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
0: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
1: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीज की तरह।
0: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
1: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
0: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
2: जो हुक्म आ लीजिए। आलमबरा, गुलाम कादिर हाजिर है।
0: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल कि तू शाही हरम में।
3: हुजूर, हुजूर, रहम।
0: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में, इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया, तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा, क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। गोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: कर बेदार वक्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
1: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटा

0: मियां शमशेर खां, किले की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही हैं।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक तो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगम ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जा बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियां शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहां पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

0: इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है, मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साबका पड़ा ही कहां है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं।
3: लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा!

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासबमान कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूँ हुजूर, अभी सब देता हूँ।
0: ला निकल।

0: दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाच।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत, यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे, फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना कले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां, उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है, हाथ लगाकर देखूंगा।

0: उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह ये शायद उसके होंठ हैं, वाह बहुत खूब बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूकें और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त। नहीं
1: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
2: हुजूर
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
2: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
2: हुजूर मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो बहुत नेक है सरदार, इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियाँ, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लगा रहा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।
1: देखते

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और

0: एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी।
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
1: जी।
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है,
0: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहाँ पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं, और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब व्हाटएवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ, ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना, लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे,

0: फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, वहाँ
1: हाँ
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना,
1: जी
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहाँ पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए।
1: जी
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो
1: लो
0: सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि ये
1: हाँ
0: क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज़ को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है?
1: जी
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्यूटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली?
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है। जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया, मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।

0: इसी गीत को
1: इसी गीत
0: आप
1: को।
0: सुनाएं।
1: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूँगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
0: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया,
1: जी
0: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
1: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
0: जी।
1: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई, वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की, विधवाओं के लिए दान कर दी है।
0: जी
1: ए मेरे वतन के लोगों की
0: लोगों
1: जो भी
0: रॉयल्टी आई।
1: रॉयल्टी आती है वो वहाँ पर जाती है, उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो
0: अरे
1: मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
0: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
1: जी
0: लोगों,
1: जरूर
0: जरा
1: जरूर।
0: आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए, हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
0: जी
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और
0: हाँ
1: कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग खड़े।
0: जी
1: तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं

0: पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
1: जी।
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ, अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
1: जी।
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा जाता
0: और
1: था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए।
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों। सुबह की ताजगी हो, शाम की थकान हो, या फिर पढ़ाई और काम के बीच का छोटा सा ब्रेक, अगर इन सबके बीच कोई आपका अपना साथी बनकर कुछ देर आपके साथ चले तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। तो लीजिए, आकाशवाणी पटना की युवा कार्यक्रम युवाणी में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य।
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रफत सलीम।
0: दोस्तों, रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ आवाज़ों का रिश्ता सीधे दिल से जुड़ता है। हम आपको देख नहीं रहे होते, लेकिन यकीन मानिए, हम आपको महसूस कर रहे होते हैं। कोई छात्र अपनी पढ़ाई के बीच हमें सुन रहा होगा, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, कोई नौकरी की तलाश में होगा, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ रहा होगा।
1: और शायद कोई ऐसा भी होगा जो दिन भर की व्यस्तता के बाद कुछ सुकून भरे पल तलाश रहा हो। युववाणी ऐसे ही सभी युवा साथियों का अपना मंच है, जहां बात होती है आपकी, आपके सपनों की, आपकी चुनौतियों की और आपके उज्जवल भविष्य की।
0: आज का दौर अवसरों का दौर है। एक ओर विज्ञान और तकनीक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो दूसरी ओर समाज के सामने कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर युवाओं की जागरूकता और भागीदारी बेहद जरूरी है।
1: यही वजह है दोस्तों कि आज के युववाणी में हम लेकर जानकारी नहीं देंगे, बल्कि उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो सीधे आपके जीवन और समाज से जुड़े हुए हैं।
0: कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे होगी आज की प्रेरक पंक्ति से, जो आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार करेगी।
1: इसके बाद बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, जानेंगे कि सुरक्षित भोजन क्यों जरूरी है और स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारी थाली से कैसे होती है।
0: फिर चर्चा होगी विश्व देखभाल दिवस की, जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और मानवीय मूल्यों का संदेश देता है।
1: इसके बाद बात करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत की। यह केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
0: और फिर चर्चा होगी नशा मुक्त बिहार की, क्योंकि युवा शक्ति तभी राष्ट्र शक्ति बनती है जब वह सही दिशा में आगे बढ़े।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत होगा स्वरांजलि का विशेष खंड भी।
0: खेल जगत की ताजा गतिविधियों से आपको रूबरू कराएगा हमारा स्पोर्ट्स अपडेट।
1: इसके बाद होंगे कुछ रोचक तथ्य जो आपको चौंकाएंगे भी और ज्ञान भी बढ़ाएंगे।
0: और कार्यक्रम में रहेगा फिल्म संगीत, क्योंकि संगीत के बिना युवाणी का सफर अधूरा लगता है।
1: तो युवा साथियों, अगले कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिए। ज्ञान, प्रेरणा, जागरूकता, मनोरंजन और सकारात्मक विचारों से भरी इस यात्रा में आपका स्वागत है। तो सुनते हैं आज का पहला ट्रैक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब भी मिट से ये गीत, जिसे आवाज दी है शान और उस्ताद सुल्तान खान ने। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं एक प्रेरक पंक्ति से, जिसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती।

0: होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी यह प्रेरणादायक संदेश देते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं और असफलताओं से कभी घबराते नहीं हैं।
1: हार मानना सीखना नहीं है, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की राह में एक चुनौती है, जिसे हम सीख और आत्म सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए।
0: आत्मविश्वास और साहस बनाए रखना जरूरी है। कवि चींटी और गोताखोर का उदाहरण देते हैं, जो बार बार असफल होने के बावजूद भी हार नहीं मानते और अपने प्रयास जारी रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।
1: अतः कविता का मूल संदेश है, जो प्रयास करता है उसकी हार नहीं होती। दोस्तों, बातें आगे भी होती रहेगी, उससे पहले सुनते हैं अपना अगला ट्रैक।

0: मधुर गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवावाणी में। अभी आप सुन रहे थे जावेद अली की आवाज में फिल्म राज 3 से ये गीत।
1: रफत, आजकल अगर किसी युवा से पूछा जाए कि उसे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है, तो शायद जवाब होगा अच्छा खाना।
0: बिल्कुल आदित्य, और अगर वो खाना दोस्तों के साथ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ स्वाद की बात नहीं करेंगे बल्कि सुरक्षित भोजन की बात करेंगे।
1: दोस्तों, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल इसका विषय बोझ से समाधान, हर जगह सुरक्षित भोजन, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि भोजन केवल स्वाद का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का आधार भी है।
0: आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ खाने के विकल्प बहुत बढ़ गए हैं। सड़क किनारे की दुकान से लेकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी तक हर चीज़ हमारी पहुँच में है।
1: लेकिन सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह देखना होगा कि जो भोजन हम खा रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार हम दोस्तों के साथ किसी दुकान पर पहुँचते हैं और सबसे पहले पूछते हैं यहाँ का खाना स्वादिष्ट है या नहीं।
1: जबकि सवाल यह भी होना चाहिए कि यहाँ साफ सफाई कैसी है।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि दूषित भोजन कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है।
1: दोस्तों, भोजन की सुरक्षा खेत से लेकर हमारी थाली तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी होती है। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही हो जाए तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, युवाओं के लिए यह विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर जल्दी में रहते हैं। कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, ऑफिस जाना है, और इसी भागदौड़ में जो मिला वही खा लिया।
1: लेकिन स्वास्थ्य के साथ जल्दबाजी ठीक नहीं है।
0: कुछ आसान आदतें हमें स्वस्थ रख सकती है दोस्तों, जैसे हाथ धोकर खाना खाना, साफ पानी पीना, फल और सब्जियां धोकर खाना, और एक्सपायरी डेट पर जरूर ध्यान दीजिएगा श्रोताओं।
1: और एक बात जो मैं अपने सभी युवा दोस्तों से कहना चाहूंगा, फिटनेस सिर्फ जिम जाने से नहीं आती, बल्कि सही खान पान से भी आती है।
0: बिल्कुल आदित्य, स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों की मजबूत नींव है। इसी के साथ सुनते हैं वो अपना अगला ट्रैक।
1: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म 72 घंटे से ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहित चौहान और प्रियंका नेगी ने। श्रोताओं, आज विश्व देखभाल दिवस है, एक ऐसा दिन जो याद दिलाता है दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से देखना चाहिए। आदित्य, एक बात बताइए, दुनिया में हर जगह लोग देखभाल शब्द तो बोलते हैं, पर करते क्या है वास्तव में?
1: रफत, यह सवाल बहुत गहरा है। अक्सर लोग समझते हैं देखभाल मतलब कोई बीमार हो तो उसके पास बैठना या किसी को दवा देना, पर रफत, यह तो सिर्फ ऊपरी बात है।
0: तो गहराई में क्या है आखिर? मैं समझना चाहती हूँ।
1: देखभाल का पहला अर्थ है किसी की पीड़ा को महसूस करना बिना शब्दों के भी। जैसे कोई पक्षी जमीन पर गिर जाए तो उसे पानी देना, छांव देना, तब तक साथ रहना जब तक उसके पंखों में फिर उड़ान भरने का शक्ति शक्ति ना आ जाए।
0: सच में आदित्य, मुझे याद आया, पिछले साल बारिश में मैंने एक सूखे हुए पेड़ को पानी दिया था। सब लोगों ने कहा यह तो मर चुका है, पर इस वर्ष उस

0: पेड़ पर हरे पत्ते आए, तब लगा देखभाल करने वालों को फल भले ना मिले पर पेड़ तो हरा हो ही जाता है।
1: बिल्कुल, देखभाल मतलब बिना शर्त का रिश्ता। जैसे धरती बिना कुछ मांगे बीज को उगाती है, वैसे ही हमारी नजरें देखे कि कहाँ किसी को गर्मजोशी की कमी है।
0: आज के दिन में बहुत सारी संस्थाएं केयर के नारे लगाती हैं, पर क्या सिर्फ एक दिन के कार्यक्रमों से देखभाल हो जाती है? नहीं, देखभाल का कोई दिन नहीं होता दोस्तों। यह तो एक ऐसा व्यवहार है जो रोज के रोज चाहिए। जब दुकानदार बुजुर्ग के पैसे कम लेता है, जब पड़ोसी बिना बुलाए बीमार घर खाना रख जाता है, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को रोता देख अपनी चॉकलेट बांट देता है। आदित्य, मैं अक्सर सोचती हूँ दुनिया में इतनी हिंसा, इतनी उदासी क्यों है? क्या वजह है कि लोग एक दूसरे का दर्द नहीं देख पाते हैं?
1: इसलिए क्योंकि देखभाल सीखनी पड़ती है, यह विरासत में नहीं मिलती। जिस घर में माँ बाप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहाँ बच्चे स्वतः ही दूसरों की परवाह करना समझ जाते हैं। यह एक संस्कृति है, स्नेह की, धैर्य की, माफी की।
0: तो आप क्या कह रहे हैं, इस दिन को मनाने का सही तरीका आखिर क्या होना चाहिए? किसी प्रदर्शन के साथ या बिना प्रदर्शन के साथ?
1: हाँ, बिना फोटो खिंचवाएं, बिना हैशटैग लगाए, बिना बहुत अच्छे इंसान कहलाने के लिए, बस इतना कि सामने वाला हल्का महसूस करे। एक पौधे को पानी देना भी देखभाल है, एक बेघर जानवर के लिए पानी रखना भी देखभाल है, किसी उदास मित्र को चुपचाप सुन लेना भी।
0: पर आदित्य, एक तकलीफ है, दुनिया इतनी तेज दौड़ रही है कि लोगों के पास रुकने का समय ही नहीं है। हर कोई अपने दुख में व्यस्त है, यही विडंबना है। देखभाल के लिए समय निकालना पड़ता है, समय से नहीं मिलता। जो रुकना सीख जाता है वही दूसरे के आंसू पोंछ पाता है। बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक वो मरीज की तरफ देख कर यह ना समझ ले कि दर्द कहाँ है। मुझे लगता है देखभाल का सबसे कठिन काम है खुद से शुरू करना। जो अपनी थकान को नजरअंदाज करता है, वो कभी दूसरे की थकान को आराम नहीं दे सकता है दोस्तों।
1: सुंदर बात कही, अपने शरीर की सुनना, अपने मन को शांति देना, गलतियों पर खुद को कोसना नहीं, यह पहली देखभाल है। फिर यह भावना बाहर फैलती है, जैसे तालाब में डाला गया एक कंकड़ लहरें बनाता है।
0: बातें आगे भी होती रहेगी दोस्तों, इसके साथ सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: रफत, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सपनों, शिक्षा और भविष्य का विषय है, बाल विवाह मुक्त भारत।
4: बिल्कुल आदित्य, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यह भी जरूरी है कि हर बच्चे को अपना बचपन जीने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए।
3: दोस्तों, बाल विवाह का अर्थ है कानूनी उम्र से पहले विवाह। भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है।
4: लेकिन क्या आप जानते हैं आदित्य कि बाल विवाह को रोकने की कोशिश की जा रही है कि नहीं?
3: बिल्कुल, भारत में बाल विवाह के खिलाफ पहला बड़ा कानूनी कदम वर्ष 1929 में उठाया गया था, जब बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया। इसे आमतौर पर शारदा एक्ट कहा जाता है। इस कानून को लागू कराने में समाज सुधारक हरबिलास शारदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
4: बिल्कुल, उस समय यह कानून सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल माना गया था। हालांकि समय के साथ इसमें कई संशोधन किए गए ताकि बच्चों के अधिकारों और अधिक सुरक्षा मिल सके उन्हें।
3: इसके बाद वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया, जिसने बाल विवाह को रोकने के लिए और अधिक सख्त कानूनी प्रावधान किए।
4: लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी बाल विवाह होते हैं?
3: दुर्भाग्य से हाँ, पिछले वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में आज भी बाल विवाह की घटनाएं सामने आती है।
4: संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है। पहले जहाँ कम उम्र में विवाह की दर काफी अधिक थी, वहीं अब जागरूकता, शिक्षा और कानून के कारण इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये
3: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 23% ऐसी थी जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। हालांकि यह संख्या पहले की तुलना में कम हुई है, लेकिन यह बताती है कि अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है।
4: और इसका सबसे बड़ा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। कई बार विवाह के बाद पढ़ाई छूट जाती है और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं।
3: सिर्फ शिक्षा ही नहीं, कम उम्र में विवाह स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि सरकार, सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न अभियान लगातार बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि इस बदलाव में युवाओं की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण होती है।
3: बिल्कुल, अगर युवा जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक होगा। अगर हम शिक्षा का महत्व समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां और अधिक सशक्त बनेंगी।
4: दोस्तों सोचिए, जिस उम्र में किसी बच्चे को अपनी पढ़ाई, खेल, करियर और सपनों के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में उस पर जीवन भर की जिम्मेदारियां डाल देना कितना उचित है, आप ही बताइए।
3: इसीलिए आज बाल विवाह मुक्त भारत केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक संकल्प है, हर बच्चे को शिक्षा मिले, अवसर मिले और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अधिकार मिले।
4: याद रखिए श्रोताओं, बेटी हो या बेटा, पहले शिक्षा और आत्मनिर्भरता, फिर जीवन के बड़े फैसले।

0: रफत, जब भी युवाओं की बात होती है तो हमारे मन में ऊर्जा, उत्साह, सपने और नई संभावनाओं की तस्वीर उभरती है।
1: बिल्कुल, युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यही ताकत अगर नशे जैसी बुरी आदतों में उलझ जाए तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है।
0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नशा मुक्त बिहार की, लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी कब लागू हुई थी?

0: शायद बहुत से श्रोता इसका जवाब जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लागू किया गया था। बाद में 2 अक्टूबर 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को और व्यापक रूप से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य नशे पर नियंत्रण और सामाजिक सुधार था।
1: शराबबंदी लागू करने के पीछे एक बड़ा तर्क यह था कि इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, और कुछ शोधों में यह भी सामने आया है कि शराबबंदी के बाद नियमित शराब सेवन और घरेलू हिंसा के मामलों में कमी देखी गई है। एक अध्ययन के अनुसार लाखों लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।
1: लेकिन एक और सच यह भी है कि चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।
0: बिल्कुल, आज भी अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी तथा सेवन खबरें मतलब कि समय समय पर सामने आती रहती हैं। यही वजह है कि केवल कानून बनाना काफी नहीं है, समाज की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।
1: तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि अपनी प्रतिभा, अपने सपनों और अपने भविष्य को किसी भी नशे से बड़ा नहीं मानेंगे।
0: क्योंकि एक जागरूक युवा ही एक मजबूत बिहार और मजबूत भारत की पहचान है।
1: और यही है नशा मुक्त बिहार का असली संदेश। दोस्तों, पेश है अब अगला ट्रैक, गाने का बोल है गजब का है ये दीन, गया फिल्म सनम रे से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: मधुर गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवावाणी में। दोस्तों आज है संडे और संडे को हम सुनते हैं स्वरांजलि। तो सुनते हैं स्वरांजलि।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरांजलि में। और आज स्वरांजलि में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है युवा कवि मधुयंका राज। मधुयंका, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
0: जी धन्यवाद सर।
1: तो मध्यंका, आज हम आपसे आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे और साथ ही जानेंगे कि भविष्य में आप क्या करने वाली हैं, और आपकी पसंद का एक गाना भी आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी कविताओं से। तो सबसे पहली कविता कौन सा सुना रही हैं?
0: जी जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पर बहुत बार कविताएं पढ़ी हैं इस मंच पर, तो आप जानते ही होंगे कि मैं ज़्यादातर श्रृंगार रस की ही कविताएं लिखती
1: ओहो
0: हूँ।
1: हो, हाँ बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: तो जो कविता है वो श्रृंगार रस पर ही है कि एक तरफा मोहब्बत पर है ये सारी कविताएं मेरी। तो जैसा आप इजाज़त दें।
1: बिल्कुल
0: जी
1: इशाद।
0: एक कविता है जो कि एक तरफा इश्क पर है कि जो शिकायतें हैं कुछ प्रेमिकाएं की, कुछ शिकायतें हैं तो उस पर है कि ना चांद अपना था ना तू अपना था, कि ना चांद अपना था ना तू अपना था, मुझसे पूछ मेरे दिल में तेरा इश्क कितना था।
1: क्या बात है।
0: जी ना चांद अपना था ना तू अपना था, मुझसे पूछ मेरे दिल में तेरा इश्क कितना था। तुम ढूंढते थे इश्क किसी और की बाहों में, तुम ढूंढते थे इश्क किसी और की बाहों में, और एक मेरी नींद थी जिसमें सिर्फ तुम्हारा सपना था। जी तुम्हारी तस्वीरों से बातें करके मैं वक्त बिताया करती थी, तुम्हारी तस्वीरों से मैं बातें करके वक्त बिताया करती थी, दोस्तों को अपना तेरा इश्क बताया करती थी। मैं जानती थी ये झूठ है कि तुझे मुझसे मोहब्बत है, मैं जानती थी कि ये झूठ है कि तुझे मुझसे मोहब्बत है, फिर भी मैं अपने दिल को बहलाया करती थी। मुझे तुझ में रब दिखता था और तुझे मुझ में कुछ भी नहीं, मैं तुझे अपना खुदा मानती थी और तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं। काश दिल को रोक लेती तुझसे इश्क करने को, काश दिल को रोक लेती तुझसे इश्क करने को, तुझे सारी खुशियाँ दी मेरे लिए तेरी नफरत सही। और इश्क के मेरे इस रिश्ते में साथ ये ज़माना नहीं था, इश्क के मेरे रिश्ते में साथ ये ज़माना नहीं था, तेरी तस्वीरों से बातें करते थे हम और कोई बहाना नहीं था। हमने ताउम्र गुजार दी बस एक तेरे इश्क में, हमने ताउम्र गुजार दी बस तेरे एक इश्क में, लेकिन एक तू था जिसके दिल में हमारा ठिकाना नहीं था।
1: काफ़ी गंभीर रचनाएं लेकर आज मध्यंका हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। और मध्यंका, ये श्रृंगार रस से ज़्यादा लग रहा है कि जुदाई की बात ज़्यादा हो
0: जी
1: रही है इसमें, और जुदाई से भी ज़्यादा बेवफाई की बातें ज़्यादा हो रही हैं इसमें। तो ये
0: जी
1: श्रृंगार रस से तो बिल्कुल ही अलग रस है।
0: जी
1: तो चलिए इनके रसों की चाशनी में डूबते हैं और इनसे एक और इनकी कविता सुनते हैं। मध्यंका, दूसरी कविता कौन सी सुना रही हैं आप?
0: जी जो मेरी दूसरी कविता है उसका जो ख्याल कुछ ऐसा है कि जब बिछड़ने का वक्त होता है तो किस तरह जो प्रेमिका है वो किस तरह क्या बोलती है और वो क्या सोचती है कि आगे क्या होगा, और वो प्रेमी से यह आह्वान करती है कि अगर तुम्हें मुझसे इश्क है तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो उस पर कुछ कविता की जो कुछ पंक्तियाँ हैं कुछ इस प्रकार है कि शायद जब तुमसे बिछड़ने का वक्त होगा, कि शायद जब तुझसे बिछड़ने का वक्त होगा क्या मुझे तेरी यादों को भी भुलाना पड़ेगा, कि शायद जब तुझसे बिछड़ने का वक्त होगा क्या मुझे तेरी यादों को भी भुलाना पड़ेगा, मेरी लिखावट जो है तेरे ऊपर क्या उसको भी छिपाना पड़ेगा। और तुम सोचो कि कैसे मैं अपना अक्स मिटाऊंगी, तुम सोचो कि कैसे मैं अपना अक्स मिटाऊंगी, मुझ में जो तू शामिल है क्या इसको भी मिटाना पड़ेगा। तुम भूल जाना कि कोई थी जो मुझे मुझसे ज़्यादा चाहती थी, कि कोई थी जो मुझे मुझसे ज़्यादा चाहती थी, कोई थी जो शायद मेरे होने से खिलखिलाती थी, क्या मैं उसे वो खुशियाँ नहीं दे सकता, इस बात का शोक मनाना पड़ेगा, मुझ में जो तू शामिल है क्या मुझे अपना वजूद भी मिटाना पड़ेगा। खलिश और बंदगी के अलावा जब तेरे पास कुछ नहीं होगा, खलिश और बंदगी के अलावा जब तेरे पास कुछ नहीं होगा, मेरे नंबर के अलावा जब तेरे पास कुछ नहीं होगा,

0: खुद को यूं कोस कर तुझे खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को यूं कोस कर तुझे खुद को यूं समझाना पड़ेगा, मेरी सांसों में जो तू बसा है, क्या मुझे अब इन हवाओं को भी बहकाना पड़ेगा। और कुछ चार पंक्तियां इसकी बची है कि अधूरी कहानी अधूरे लफ्ज लेकर तुम भी क्या करोगे, अधूरी कहानी अधूरे लफ्ज लेकर तुम भी क्या करोगे, एक कोशिश करके क्या कहानी मुकम्मल करोगे। अधूरी कहानी अधूरे लफ्ज लेकर तुम भी क्या करोगे, एक कोशिश करके क्या कहानी मुकम्मल करोगे। और वक्त बीत जाएगा जब तुम्हें खुद को कसूरवार ठहराना पड़ेगा, मेरे दिल में जो तुम्हारा इश्क है, क्या मुझे इसको भी मिटाना पड़ेगा।
1: क्या बात है, क्या
0: जी
1: बात है मधुरिका। और इस समय के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपकी कविताओं की जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो
0: जी
1: गंभीरता है,
0: जी
1: वो बढ़ती जा रही है।
0: जी
1: तो और इसके साथ ही हमने अपने श्रोताओं से वादा किया था कि आज आपकी पसंद का एक गाना भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। तो कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: मैं श्रोताओं के बीच कलंक फिल्म की एक सॉन्ग है, कलंक, उसका गाना, टाइटल ट्रैक भी उसका कलंक है, तो मैं चाहती हूँ कि श्रोताएं उसे सुने, बहुत अच्छा संगीत
1: बिल्कुल मृदंका, और जहाँ तक मुझे पता है तो आप गाती भी अच्छा है। तो
0: है।
1: क्या इस जो गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं, तो दो लाइन गुनगुना दीजिए।
0: जी जरूर की।

0: वाह। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे युवा कवि मधुअंका राज को बोलते हुए भी और गाते हुए भी। तो हम सुनवा रहे हैं आपको मधुअंका की पसंद का ये गाना, और साथ ही अब हम मधुअंका से विदा लेते हैं। मधुअंका, आज आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को इतनी बढ़िया कविताएं सुनाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: दोस्तों, अब है हमारा सबसे मजेदार सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं कि पहला सेगमेंट ये है हमारा रोचक तथ्य। कंगारू जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं चल सकते हैं दोस्तों।
1: तो कंगारू जिंदगी में कोई भी गलती अंडू नहीं कर सकता। माफ करो, अब पीछे मुड़ना तो मुमकिन ही नहीं।
0: और कंगारू के बच्चे को जॉय कहते हैं। वो पैदा होने के बाद माँ की थैली में आकर तुरंत दूध पीने लगता है। माँ एक साथ दो तरह का दूध बनाती है, एक नवजात के लिए, दूसरा बड़े जॉय के लिए।
1: मतलब कंगारू माँ अपने बच्चों के लिए बूफे सिस्टम चलाती हैं। रफत, आज तुमने मेरा दिमाग घुमा दिया।
0: बिल्कुल दोस्तों, सुनते हैं हम अपना अब अगला और लास्ट ट्रैक।

0: तो युवा साथियों, इसी के साथ आज का युवानी कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने आरंभिक चर्चा में युवाओं की सोच और जिम्मेदारियों पर बात की, प्रेरक पंक्ति के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के जरिए स्वस्थ जीवन का महत्व जाना और विश्व देखभाल दिवस के अवसर पर संवेदनशीलता तथा मानवीय मूल्यों की चर्चा की।
1: साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत और नशा मुक्त बिहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया। स्वरांजलि रोचक तथ्यों के जरिए ज्ञान बढ़ाया और फिल्म संगीत के साथ मनोरंजन का सफर भी तय किया।
0: दोस्तों, युवावस्था केवल सपने देखने का समय नहीं है, बल्कि उन सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने का समय भी है। आपके विचार, आपके निर्णय, आपके प्रयास ही आने वाले भारत की तस्वीर तय करेंगे।
1: इसीलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनिए। याद रखिए दोस्तों, एक जागरूक युवा ही एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की नींव होती है।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति,
1: फिर मुलाकात होगी युवानी के अगले अंक में कुछ नए विषयों, नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ।
0: सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेजें। हमारी मेल आईडी है feedback@patna@gmail.com। खुद भी स्वस्थ रहें, पर्यावरण का ध्यान रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। युवानी में फिर मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। धन्यवाद
2: श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका स्वरांजलि में।

युववाणी। अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता, आज भारतीमे केशव कुमार झाक वार्ता हैत, नीक स्वास्थ्यक लेल नीक खान पान जरूरी। संगहि नीलू मिश्रा गीत सुनौती, मुदा पहिने आउ हमरा लोकनि किछु गप कऽ लै छी। श्रोता, पर्याप्त मात्रामे सुरक्षित भोजन के उपलब्धता जीवन के बनौने रखबाक लेल तऽ जरूरी अछि, संगहि ओ नीक स्वास्थ्यक लेल सेहो जरूरी थिक। भोजन सँ हुअ वला व्याधि संक्रामक आ नुकसान पहुँचाबय वला होइत अछि, जे सामान्य रूपे फुजल आँखि सँ नहि देखबा मे अबैत अछि। ई व्याधि दूषित भोजन आ पानिक माध्यम सँ शरीर मे पैसा वला बैक्टीरिया, वायरस या परजीवीक कारणे होइत अछि। सब वर्ष 7 जून कऽ मनायल जायवला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य जनित खतरा के रोकबाक, पहचान करबाक आ प्रबंधन में सहायताक लेल जागरूकता बढ़ाबय आ संगहि कार्रवाई के प्रेरित करबाक उद्देश्य सँ मनाओल जाइत अछि, जाहिसँ खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, पर्यटन आ लगातार विकास करबा में योगदान भेटैत रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन आ संयुक्त राष्ट्रक खाद्य आ कृषि संगठन के माध्यम से आयोजित एहि दिवस के मुख्य उद्देश्य थिक लोक के दूषित भोजन सँ स्वास्थ्य पर पड़े वाला प्रतिकूल असर के प्रति जागरूकता करब आ संगहि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करब। खेत सँ थारी धरि सुरक्षित भोजन के महत्व के जन जन धरि पहुँचायब, जाहिसँ खाद्य जनित व्याधि के रोकल जा सकै छै। श्रोता, काल्हि 8 जून थिक। 8 जून का सब वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाओल जाइत अछि। महासागर के संरक्षण, जैव विविधता के रक्षा आ महासागरक उपयोगक प्रति वैश्विक जागरूकता के उद्देश्य सँ मनाओल जाय वाला ई विश्व महासागर दिवस थी। धरतीक दू तिहाई भाग पर पसरल अछि महासागर। धरती पर उपलब्ध ऑक्सीजन के कुल आधा भाग ऑक्सीजन के उत्पादन महासागर करैत अछि। जलवायु के नियंत्रित करबाक संग अरबों लोक के भोजन आ आजीविका महासागर पर निर्भर थिक। एहना मे एहि दिवस के उपयोगिता आर बेसी बढ़ि जाइत छै। वर्ष 2008 में आधिकारिक रूपे 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूपे घोषित कयल गेल। वर्ष 2026 में एहि दिवस के थीम थीक हमरा लोकनिक नीला ग्रहक लेल सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र। श्रोता, आप किछु गप अपन मिथिलाक। माता सीताक मिथिलाक संस्कृति बड्ड प्राचीन अछि। मिथिला सदित काल सँ अपन साहित्यिक उत्कृष्टता, अद्वितीय कला आ पारिवारिक मूल्यक कारणे जानल जाइत रहल अछि। मिथिलाक प्रसिद्धिक गप करी तऽ भाखा आ साहित्यक संगहि मधुबनी पेंटिंग, विशिष्ट बियाह आ सामाजिक परम्परा, प्रमुख खानपान, पाबनि तिहार, आचार

विचार आ अतिथि सत्कार एहि कारणसँ मिथिला प्रसिद्ध अछि। श्रोता, मिथिलाक गप करी आ माछ मखान आ पानक गप नहि हो तऽ गप पूर्ण नहि होयत। ई तीनू मिथिलाक परम्परा, आतिथ्य आ शुभ कार्यक प्रमुख हिस्सा थिक। पान सम्मान आ आतिथ्यक प्रतीक थिक। पाहुनक स्वागत हो, पावनि तिहार हो वा कोनो शुभ कार्य, पानक बिना ओ सम्पूर्ण नहि मानल जायत। कतबो छप्पन भोग खुआ दियौ

पावनि तिहार हो वा कोनो शुभ कार्य, पानक बिना ओ सम्पूर्ण नहि मानल जायत। कतबो छप्पन भोग खुआ दियौ मुदा पान नहि देला पर ई बात अनायास निकलि जाइत छै जे ओ की स्वागत करता, पान तऽ खुएबे नहि कयलनि। तऽ पान के एते महत्ता थिक। मखान जकरा सौंसे दुनिया सुपर फूड के रूपे जनैत अछि, जाहि मे प्रोटीन, कैल्शियम आ फाइबर सन पोषक तत्व भरल छै, ई मिथिलाक जलीय संसाधन के पहचानक रूपे जानल जाइत अछि। धार्मिक अनुष्ठान, स्वादिष्ट व्यंजन वा मखानक खीर के रूप में एकर उपयोग होइत अछि आ मिथिलाक कोनो शुभ कार्य हो एकर रहब अनिवार्य मानल जाइत अछि। मिथिला मे माछ के सेहो शुभ मानल जाइत अछि। पाहुनक स्वागत, बियाह, दुरागमन आ कोनो शुभ कार्य हो माछ हैब अनिवार्य। प्रसिद्ध रचनाकार हरिमोहन झा खट्टर काकाक तरंग में माछक बहुत विस्तार सँ वर्णन कयने छथि। तऽ मिथिला मे माछ, मखान आ पानक लेल एकटा कहवी थिक, पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस नगर मिथिलांचल थिक। तऽ श्रोता गप सप चलते रहते, आओ हमरा लोकनि कार्यक्रम दिस बढ़ी। पहिने सुनै छी नीलू मिश्रा सँ ई गीत।

0: श्रोताई चलिए नीलू मिश्रा सुना रहा चलिए हनुमान भजन गीत निकला गल है आगा कार्यक्रम में हिंदा सा आर गीत सुना श्रोता हम लोग हमारा सब सबसे सब पहले गप कहने चलो हैं खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में तो जे खाद्य पदार्थ हो ओ एना कहल जाए छे कि टटका खाली बायस भोजन नहीं करी बायस भोजन में कतेक रास व्याध हुआ के समस्या बढ़ जाए छे जँ वही बायस भोजन के ग्रहण करे छी तो ई जे छे से कोनो न कोनो स्वास्थ्य के नुकसान पहुँचाबे छे हानि पहुँचाबे छे तो नीक स्वास्थ्य के लेल नीक खान पान से जरूरी है ऐ संदर्भ में सविस्तार आओ हमारा लोकन जानकारी ली केशव कुमार झा सा वार्ता के विख्या है नीक स्वास्थ्य के लेल नीक खान पान जरूरी
1: स्वास्थ्य हमर सभक जीवनक सबसे पैघ आयाम होइत अछि ई हमर सभक शारीरिक मानसिक और सामाजिक तंतु के संतुलन होइत छै जे हमर सभक जीवनक गुणवत्ता के प्रभावित करैत अछि स्वास्थ्य के मतलब बस बीमार परवाक नहि होइत अछि बल्कि सब तरहक पहलू के मेल होइत अछि जे हमर सभक जीवन के सुखमय और सफल बनबैत अछि स्वास्थ्यक मतलब शारीरिक स्वास्थ्य टा नहि होइत अछि एकर मतलब ई होइत अछि कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य संग संग सामाजिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्यक मतलब ई होइत अछि कि हमर शारीरिक अंग सही तरीका से काज कऽ रहल अछि कि नहि और हम नियमित रूप से ओकर ध्यान रखैत छी कि नहि एहिमे सही आहार नियमित व्यायाम पर्याप्त नींद लेनाइ जरूरी छै मानसिक स्वास्थ्यक मतलब ई होइत अछि कि हमर मानसिक स्थिति स्थिर और सकारात्मक अछि जाहिमे चिंता कम करे के तरीका सकारात्मक विचारधारा और सही सामाजिक संबंध शामिल होइत अछि मानसिक स्वास्थ्य हमर सभक जीवन मे बड़ महत्वपूर्ण अछि मस्तिष्क मे आबे वाला विचार के सही दिशा मे राखे के जरूरत होइत अछि सामाजिक स्वास्थ्य के मतलब ई होइत अछि कि हमर सभक सामाजिक संबंध स्वस्थ और सुखमय होइत अछि एहिमे जे शामिल करैत अछि कि हम अपन परिवार दोस्त और सामुदायिक संग सामंजस्यपूर्ण और समर्थन में रहैत छी नीक स्वास्थ्य के लेल नीक खान पान के बड़ आवश्यकता छैक जाहिसँ मनः स्थिति ठीक रहैत छैक ओहिसँ ऊर्जा भेटैत छैक मांसपेशी के पोषण भेटैत छैक बीमारी सबसँ रक्षा होइत छैक स्वास्थ्यकर जीवन के कुंजी छी दिन में 3 बेर नीक और अलग अलग भोजनक सेवन करबाक चाही कोनो व्यक्ति के कतेक पोषण के आवश्यकता छैक से ओकर दिनचर्या पर निर्भर करैत छैक ओकर आनुवंशिक प्रकृति जलवायु आ स्वास्थ्यक इतिहास पर निर्भर करैत छैक ओकर उम्र पर निर्भर करैत छैक स्वास्थ्य व्यक्ति के पहचान एना कऽ सकैत छी जे ओकरा समय से भूख लगे छै कि नहि ओकरा समय से नींद अबै छै कि नहि ओकरा समय से शौच अबै छै कि नहि ई सब स्वस्थ व्यक्ति के पहचान अछि एकटा स्वस्थ जीवन शैली के लेल संतुलित आहार यानि नीक खान पान बड़ योगदान करैत छैक नीक खान पान के अर्थ होइत अछि कि 5 टा प्रमुख खाद्य समूह जाहि मे रंग बिरंगक खाद्य पदार्थ हेबाक चाही रंग बिरंगक खाद्य पदार्थ खेलासँ विभिन्न पोषक तत्व भेटैत छैक जाहिसँ स्वास्थ्य नीक बनल रहैत छैक और बीमारीसँ दूर रहैत छैक स्वस्थ रहैक लेल किछु योगा आ किछु व्यायाम सेहो करबाक चाही जाहिसँ शरीर फुर्तीला आ सुगठित रहैत छैक योगा कयलासँ बहुत रास फायदा भेटैत

0: छैक, ई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बेहतर बनबे छैक। ई तनाव के सेहो कम करे छैक, लचीलापन के बढ़बे छैक और बीमारी से लड़े में मदद सेहो करे छैक। योगा कला से किछु विशेष फायदा सेहो होइत छैक, जेना पाचन में सुधार, रोग सब से बचाव, शक्ति और लचीलापन, आत्मविश्वास, मन शांत रहनाय, सकारात्मक सोच आदि सब फायदा होइत छैक। एकटा स्वस्थ जीवन शैली के आधार संतुलित आहार होइत छैक, जखन हम अपन शरीर के सब आवश्यक पोषक तत्व से ओकरा पोषित करै छी, त हम नहि मात्र शारीरिक रूप से सक्रिय रहै छी बल्कि मानसिक रूप से सेहो चुस्त दुरुस्त होइत छी। नीक खान पान शरीर के संक्रमण और आन बीमारी सब से लड़े के क्षमता सेहो बढ़बैत छैक। नीक खान पान के नियमित रूप से पालन कला से ओजन के नियंत्रण, हृदय रोग, डायबिटीज और अन्यो आन बीमारी सब के रोकैत अछि। ई नहि केवल जीवन के नीक बनबैत अछि बल्कि जीवन काल के बढ़बैत अछि, यानी उम्र सेहो बढ़बैत अछि। एहि दुआरे नीक खान पान के आयोजन आवश्यक अछि। नीक खान पान में अलग अलग खाय वाला वस्तु के एहन मात्रा और अनुपात होइत अछि कि जे कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आ अन्य आन पोषक तत्व के आवश्यकता के पूर्ति करैत छैक। संतुलित आहार के लेला से एकटा से अधिक खाय वाला वस्तु के शामिल करे के आवश्यकता होइत छैक, ताहि से सब प्रकार के पोषक तत्व भेट सकैत छैक। सब पोषक तत्व के अपन अपन काज होइत छैक आ ओ सब व्यक्ति के लेल अति आवश्यकता छैक। जेना वसा आ कार्बोहाइड्रेट ई शरीर के ऊर्जा प्रदान करैत छैक, प्रोटीन शरीर के वृद्धि आ विकास में सहायक होइत छैक, शरीर के अंदरूनी भाग में कोनो खराबी भऽ गेला सँ ओकरा ठीक ठाक केनाय प्रोटीन के काज छैक, विटामिन शरीर के सब क्रियाकलाप, भरण पोषण आ वृद्धि के लेल अति आवश्यक अछि, खनिज लवण शरीर के निर्माण कार्य यानी बनबैक लेल आ ओकरा नियंत्रण करे के लेल काज करैत छैक, जल शरीर के सब काज जेना पाचन, अवशोषक, उत्सर्जन आदि सब के लेल अति आवश्यक अछि। ई शरीर के तापमान के सेहो नियंत्रित करैत अछि। नीक स्वास्थ्य के लेल नीक खान पान के आवश्यकता होइत छैक और शरीर के काम काज के लेल आवश्यक पोषक तत्व के प्रदान करैत अछि। नीक स्वास्थ्य के लेल नीक खान पान के आदत अपन जीवन शैली के सही दिशा दैत छैक। एहि दुआरे नीक खान पान जीवनक अनिवार्य हिस्सा बनेबाक आवश्यकता छैक, जाहिसँ स्वस्थ आ खुशहाल जीवन जीव सकी।
1: हाँ श्रोता, नीक स्वास्थ्यक लेल खान पान तऽ जरूरी छै। ओना नीक स्वास्थ्यक चारिटा स्तंभ छै। जँ ओहि स्तंभ के बात करी तऽ ओहिमे पहिला आबैत अछि शारीरिक श्रम, दोसर छै पर्याप्त मात्रा में आराम, तकर बाद तेसर होइ छै चिंता मुक्त जीवन, किया तऽ चिंता से बहुत रास व्याधि होइ छै, आ चारिम भेल खान पान। तऽ खान पान जँ नीक रहत तऽ ओहिसँ स्वास्थ्य नीक बनत, संगहि जे बदलैत जीवन शैली छै ओहि जीवन शैली में सेहो आवश्यकता अनुसार बदलाव सेहो जरूरी छै। धन्यवाद दियन केशव कुमार झा के। आओ हमरा लोकनि नीलू मिश्रा से सुनी ई अगला गीत।

0: मोरारे आंगनमा चनन केर गछिया इछल विद्यापति गीत सुना रहल छली है नीलू मिश्रा। श्रोता कार्यक्रम में आगा बढ़ब मुदा लै छी एक गोट क्षणिक विराम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोता भारती में एक बार फिर से आपने लोकनिक स्वागत है। श्रोता गप करब ओहि माध्यम के जाय सँ जुड़ हम अपने लोकन से गप कर रहल छी। हाँ श्रोता, ऑल इंडिया रेडियो माने आकाशवाणी। श्रोता हम आकाशवाणी के गप कर रहल छी। आकाशवाणी पछिला 90 वर्ष सँ राष्ट्रक सेवा कर रहल अछि। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के आधिकारिक नाम बदल कर ऑल इंडिया रेडियो कह दिल गया छल। श्रोता के एक बार फिर से सुन लेल जाए, 8 जून, आई 7 जून है, कल है तो 8 जून, 8 जून वर्ष 1936 का इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के आधिकारिक नाम बदल कर ऑल इंडिया रेडियो कह दिल गया, जकरा वर्ष 1956 में औपचारिक

एक रूपे आकाशवाणी नाम देल गेल वर्ष 1956 मने आजादी के बाद। वर्तमान में देशक 98% आबादी के आकाशवाणी पहुंच भ गेल अछि। श्रोता, देश में रेडियो प्रसारण के शुरुआत मुंबई आ कोलकाता में भेल छल। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के आधिकारिक नाम जे आकाशवाणी भेल तकर अर्थ थिक आकाश सँ आबय वाला वाणी माने आवाज। आकाशवाणीक प्रमुख विशेषता में विविध भारती अछि जे मनोरंजन, सदाबहार गीत आ मनचाहे गीत सन कार्यक्रम सँ देशक सेवा कऽ रहल अछि। 23 भाखा आ 146 बोली में प्रसारित हुआ वाला आकाशवाणीक कार्यक्रम अपन मजबूत आ विश्वसनीय प्रसारण के पहुँचक कारण देशक सुदूर आ ग्रामीण इलाका धरि सटीक समाचार आ सूचना पहुँचा रहल अछि। तैं लऽ कऽ आकाशवाणी जे छै से लोक प्रसारक कहल जाइत अछि। तऽ आकाशवाणी पर जे आबय वाला कार्यक्रम सब छै से सब सुनैत रही आ अपन मनोरंजन के संगे ज्ञानवर्धन करी आ सूचना के जे स्रोत छै तकर लाभ उठाबी। आ श्रोता, कार्यक्रम में हम सब चली अगला गीत सुनी नीलू मिश्रा सँ।

श्रोताई छली नीलू मिश्रा सुना रहल छली झूमर। आ श्रोता आजुक वार्ती में आई बसत बे अगला कार्यक्रम धर पवन अपने लोकन से विदा मांगत अछि। विदा दी नमस्कार।

भारती, अभी आप ये मैथिली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 20 मिनट पर संस्कृत में

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही देर बाद भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

भोजपुरी में समाचार सुनी। बिहार विधान परिषद के 9 गो सीट पर होखे वाला द्विवार्षिक चुनाव और 1 गो सीट खातिर होखे वाला उपचुनाव खातिर काल नामांकन दाखिल करे के अंतिम दिन बा। प्रत्याशी लोग 11 जून तक अपन नाम वापस ले सकेगा। लोग जरूरी पड़ला पर इस सीट खातिर 18 जून के वोट डालल जाये और वही दिन सांझ के मतगणना हुई। एने एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार विधान परिषद के 1 सीट खातिर पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के उम्मीदवार घोषित कैले बा। भाजपा 4 और जदयू भी 4 गो उम्मीदवार के नाम के लिस्ट पहले ही जारी कर देले बा। तेल कंपनी सब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर देले बा। 14 किलो वाला सिलेंडर के दाम में 29 रुपया के वृद्धि कल गेल बा। अब पटना में एकर कीमत 1011 रुपया से बढ़ के 1040 रुपया प्रति सिलेंडर हो गेल बा। उन्हें 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर के दाम 375 रुपया से बढ़ के 386 रुपया हो गेल बा। नया दर तत्काल प्रभाव से लागू हो गेल बा। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में कोनो बढ़ोतरी नहीं कल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीते पर बधाई देले बाड़न। सोशल मीडिया पोस्ट में वो कहलन कि टीम पूरा टूर्नामेंट में कमाल के खेल देखवला। श्री मोदी कहलन कि ये जीत से आए वाला समय में लड़का लेकिन के फुटबॉल खेले के प्रेरणा मिली। बता दें कि भारत काल गोवा के मडगांव में खेलल गए फाइनल मैच में पिछला चैंपियन बांग्लादेश के 3-1 से हरा के रिकॉर्ड 26वीं बार ई खिताब अपन नाम कैले बा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातिर सुरक्षित और साफ सुथरा भोजन के प्रति सरकार के संकल्प के दोहरावले। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन लोग से स्वस्थ खान पान की आदत अपनावे स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करे के अपील कैले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्नपत्र के कथित लीक होके अब बेचे जाए के दावा के साफ खारिज कर ले बा। एनटीए कहलस कि सब छात्र और उनके परिवार के परेशानी के फायदा उठाए वाला संगठित नकलची गिरोह के काम बा। एजेंसी बतावलस कि वैसन पोस्टन के पहचान करके ओकरा से जुड़ल प्लेटफॉर्म के खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लेवे के चेतावनी देले बा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहले बाड़े कि वैश्विक परिस्थिति के कारण भारत के साथे साथे पूरा देश में तेल और गैस के दाम बढ़ रहा बा। श्री सरावगी पटना में कहले कि प्रधानमंत्री के प्रयास और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते दोसर देश के तुलना में भारत में गैस के दाम बेकाबू नइखे भइल। विक्रमशिला सेतु पर बनल बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गई। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र एकर उद्घाटन कैले। अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथे साथे अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि लोग मौजूद रहे। बता दी कि बीतल 3 मई के रात के पुल के 1 गो स्लैब टूट के गिर गए रहे। इस पुल से आवागमन ठप हो गए रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के मुंगेर दौरा के सिलसिला में आज पटना पहुंचले। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संघ के पदाधिकारी और बाकी वरिष्ठ नेता लोग उनका स्वागत कई। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र के शिक्षा वर्ग में शामिल हुई है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज पटना में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के आयोजन कल गई, जेकर उद्देश्य लोग के फिटनेस स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाव के खातिर जागरूक करे के रहे। ए अवसर पर बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार बतावले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन संदेश में कहले बाड़े कि पूरा देश के फिट रहल जरूरी बा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद खातिर आज चुनाव भइल, जेमे पार्टी के आलोक सिंह के प्रदेश अध्यक्ष चुनल गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा एकर घोषणा कैले। उन्हें प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनावल गेल बा। दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में 16 जून के बाद आवे के संभावना बा। मौसम विभाग से मिले जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सा में आगे बढ़ रहा बा। विभाग बतावलस कि अगला 2 से 3 दिन के भीतर देश के पूर्वोत्तर हिस्सा में मानसून सक्रिय हो जाये। राज्य में चक्रवाती परिसंचरण के असर से मौसम के मिजाज बदलल बा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटा के भीतर बांका कटिहार और भागलपुर जिला में हल्का बारिश हो सकेला। ए दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के भी संभावना बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के एजे समाप्त भइल।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं इश्क सूफियाना फिल्म का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद कैफ की आवाज में।

0: रविवार के दिन संध्या 6:45 से आकाशवाणी पटना पर अवश्य सुने कार्यक्रम ममता का आंचल। साथ में होंगी आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार।
1: अगला गीत हमने लिया है बाजीगर फिल्म से अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसके गीतकार हैं गौहर कानपुरी।

0: बाजीगर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी।

0: श्रीनगरे दिवंगतः। तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः। प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96-29 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलच्चित्रस्य माध्यमेन चलच्चित्रजगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिणपश्चिम प्रावृत्तकालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु सम्पूर्णे देशे तीव्रवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तरमध्यभारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमराजस्थान, तटीय आंध्रप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तरपश्चिमभारते, मध्यभारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगुदेशं पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण एन चन्द्रबाबू नायडुवर्येण आगामी जून मासस्य 18 दिनाङ्के राज्यसभा निर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविद भाष्यं रामकृष्णः तथा TDP सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिंतकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये संघर्षस्य 100 दिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इज़राइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धः अयं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युवकार्याणां क्रीडामन्त्री डॉक्टर मानसुख मांडविय अद्य प्रातःकाले नवदिल्लीनगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतदभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलनरूपं धारयति। अद्य विश्वखाद्यसुरक्षादिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्वखाद्यसुरक्षादिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधानपर्यन्तं सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्यसुरक्षायाः अधिकाररूपेण तथा सामूहिकदायित्वरूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तम् अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमम् आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान्। नवचण्डीगढ़नगरे आयोक्ष्यमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीयदलेन अफगानिस्तानदलस्य सम्मुखे 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 64-500 धावनाङ्कान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता। भारतीयमल्लक्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं

0: प्रणाम अंजुला बहिन।
1: प्रणाम प्रणाम मीनू बहिन, की हाल चाल है, बताए थीन सब।
0: निमन बार वा अपन सुनाई कैसन बानी?
1: हम ठीक ही भाई, गर्मी तो बहुत पड़ते है, वही से ध्यान से खाए पिए पड़ रही है ना। तो भाई देखा कि
0: गर्मी में ढेर एकदम खूब ज्यादा भी खाइल ठीक बात नहीं है। खाना भी खाए तो एकदम ताजा खाए, बनावल ऐसा ना कि बासी ते बासी,
1: बिल्कुल
0: मन मिजाज खराब हो जाए।
1: भाई मन मिजाज एकदम दुरुस्त रखे के चाहिए। यही से भोजन हमने सब लगी एगो खाली जरूरी चीज ना है, बल्कि हम सब के जीवन और संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव है। और ये बात हम ये लगी कहली कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज सब लोग मनाते थे।
0: मतलब कि देखिए बहन, स्वस्थ स्वच्छ भोजन और स्वस्थ जीवन के आधार है। वही तरीका से स्वच्छ साफ सुथरा पानी, साफ हवा हमनी सबन के जीवन के खातिर जरूरी भी। वही प्रकार से सुरक्षित और गुणवत्ता वाला भोजन भी हमनी के शरीर खातिर महत्वपूर्ण बा। अगर भोजन सुरक्षित ना रही तो वो ढेर मनी प्रकार के बीमारी के कारण बन सकेला। मतलब समझे और लोग के जागरूक करे के खातिर हर एक बरस मतलब आज 7 जून के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सब लोग मना रहे बाटे।
1: बिल्कुल, देखा खाद्य सुरक्षा लगी बहुत सा काम करना जरूरी है मीनू बहिन। जेकरा में खाली भोजन के उत्पादन करना ही जरूरी ना है, बल्कि एकरा सबके लगी सुलभ, सस्ता और पौष्टिक भी बनाना शामिल है, ताकि सब लोग के पास खाए के थाली में अच्छा भोजन, बढ़िया भोजन और सुलभ तरीके से और सस्ता तरीके से पहुंच जाए। कुछ तरीका खाद्य सुरक्षा लगी अपनावे के चाहिए, जेकरा में किसान भाई के भी भूमिका अहम होवे है,
0: बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनावे के घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा 2018 में कैले रहन, एकरा बाद पहला बार 7 जून 2019 के मनावल गेल। ई दिवस मनावे के पीछे यही उद्देश्य बाटे कि लोग के खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना बा और खाद्य जनित रोग के रोके के खातिर आवश्यक उपाय के बढ़ावा भी देना बा। खाद्य सुरक्षा के अर्थ ही बाटे कि भोजन ऐसन होके कि स्वास्थ्य के सुरक्षित रखे, ओकरा में कोनो प्रकार के हानिकारक जीवाणु, वायरस, रसायन या विषैला पदार्थ ना रहे और इंसान के खाए खातिर सुरक्षित और उपयुक्त रहे।
1: बिल्कुल सही कहला। और कुछ देखा कि किसान भाई के जैसे हम बात कैली कि खाद्य सुरक्षा लगी उनका कुछ सुरक्षा लगी कुछ अपनावे के चाहिए, जैसे कि किसान भाई चाहते तो फसल चक्र के अपना के जैविक खेती, कुशल सिंचाई, कीटनाशक के कम प्रयोग करके। कीटनाशक के ज्यादा प्रयोग से मतलब
0: बहुत तरह के बर बीमारी भी हो रहल बा, ऐसन चीज खाए से।
1: तो ऐसन पद्धति के बढ़ावा देके मट्टी और जल संसाधन के रक्षा करके ई पद्धति पर्यावरण के नुकसान पहुंचावे में पहुंचेले बिना पैदावार के बढ़ावा ही, जैसे कीटनाशक ज्यादा उपयोग ना करतीन, रासायनिक चीज ज्यादा उपयोग ना करतीन, तो ये सब मट्टी के भी मतलब सुरक्षा प्रदान करतीन। और आवे वाला पीढ़ी जो है ओकरा खाद्य उत्पादन मतलब उनका खाद्य मिलते रहते वो मट्टी से, तो खाद्य सुरक्षा में ये बात भी आवे है कि कैसे हम सब फसल के उपजा जा सके और अच्छे तरीके से उपजा सके।
0: भोजन अगर ना करम, अगर असुरक्षित खाना खाएं तो ओकरा से डायरिया हो गेल, फूड पॉइजनिंग हो गेल, टाइफाइड है जा, हेपेटाइटिस जैसे मनी बीमारी भी हो सकेला। आ देखिए बहन, ई दिवस मनावे के पीछे यही कारण बा कि लोग सुरक्षित खाना के प्रति जागरूक रहस, खाद्य उत्पादन, भंडारण और वितरण के गुणवत्ता सुनिश्चित करे के प्रेरणा देवल जाएला। किसान भाई भी खाद्य उद्योग और उपभोक्ता के उनकर जिम्मेदारी के बारे में बतावस। देखिए खाद्य सुरक्षा खातिर खाना हमेशा साफ सुथरा से बनाएं और खाएं, रसोई के बर्तन साफ सुथरा रखें, कचरा के खाना से दूर रखें और कच्चा सब्जी और पक्कल खाना के एक जगह

0: एकदम से ना रखें, हमेशा रसोईया में साफ सफाई के ध्यान रखें,
1: और साथ ही
0: ताकि
1: भंडारण में सुधार करके बेहतर आपूर्ति श्रृंखला बना करके उपभोक्ता के और उपभोक्ता के प्रति सचेत रह के भी हमने सब मतलब हर साल लाख टन से भी ज़्यादा भोजन बचा सके।
0: हाँ, तो खाद्य सुरक्षा दिवस आज हमने सब मना रहल बानी। एकरा खातिर जागरूक रहना बहुत जरूरी बा, काहे कि स्वास्थ्य से जुड़ल बा।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम

0: बानी और एकरा खातिर जागरूक रहना बहुत जरूरी बा, काहे कि स्वास्थ्य से जुड़ल बा।
1: बिल्कुल।
0: और जब हमने स्वस्थ रहम तो जीवन में बहुत कुछ करम।
1: और स्वस्थ रहे लगी सब श्रोता लोग के भी कहे, अपने के भी कहे, सब लोग के कहे कि लोकगीत जरूर सुनते, लोकगीत जरूर गए थे।
0: तो सुने के बाद कहत नहीं तो सुनवाई केकरा से सुनवावत नहीं।
1: भाई सुन सुनाई थी गजेंद्र महाराज हथिन, बहुत अच्छा गीत सुनवावे ही श्रोता लोग के, और अपने भी सुनते
0: हाँ
1: तो सुन।
0: चलिए।

0: वाह,
1: वाह,
0: बहुत निमन ई विद्यापति गीत रहे गजेंद्र महाराज से हमने के सुननी, तो मन तो करत है
1: बिल्कुल।
0: एगो और कहानी सुन ली
1: अरे भाई
0: बस।
1: देखा, मन के मारे के ना चाहिए, हम तो यही कहम। तो
0: चलिए
1: फटाफट झटाझट एक और गीत अपने सुन लेती हूँ,
0: हाँ
1: यही गजेंद्र महाराज के स्वर में।

0: वाह।
1: बहुत निमन गीत रहे, श्रृंगार गीत,
0: बिल्कुल।
1: चकोर भइले गजेंद्र महाराज के आवाज में हमने के सुननी। और अब समय हो गई बा प्रायोजित कार्यक्रम सुने के, चलिए सुनल जाओ ममता का आंचल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और आज रविवार के दिन ममता का आंचल कार्यक्रम एक नए रंग एक नए कलेवर में हम लेकर आने लगे हैं आपके लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी परी से। आज से जैसा कि हमने अभी बताया आपको, एक नया सफर एक नया प्रोग्राम, लेकिन नाम पुराना ममता का आंचल हम शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर श्रद्धा चखियार को बुलाने से पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं

0: बिहार में हर दिन हजारों कपल एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसके बारे में घर में बात नहीं होती, डॉक्टर से पूछने में शर्म आती है और समाज में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो तकलीफ है निसंतानता। और आज से हर रविवार इस तकलीफ पर ममता का आंचल कार्यक्रम में हम खुलकर बेझिझक बात करेंगे और आप भी फोन के माध्यम से हमसे सवाल पूछिएगा। हमारे साथ होती हैं डॉक्टर डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, जो इलाज ही नहीं करती, समझती भी हैं आपको। हाँ, सारी बातें। ये कार्यक्रम वैसे लोगों के लिए जो दूर दराज गांव में बैठे हैं, पूरे बिहार में, जहां जानकारियां पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम रेडियो का सहारा लेकर के आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, जो बातें हमने कही ऊपर कि अगर बच्चा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, बेझिझक बात कीजिए, सिर्फ ये एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार को बुलाएं, उससे पहले हम अपना फोन नंबर यानी डॉक्टर श्रद्धा का फोन नंबर देना चाहते हैं कि आप सीधे सीधे बात कर लीजिए उनसे। 9162562266 ये नंबर है, इस पर आप चाहिए तो सीधे सीधे बात कर लीजिएगा उनसे। सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बस आपको खुलकर सामने आना है। डॉक्टर श्रद्धा, हम बातें कर रहे हैं लोगों से, आपने सुना, और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी। आज हम लोग नए टाइम पे बात कर रहे हैं,
0: नए दिन पर भी,
1: नए दिन पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है
0: जी,
1: और इसका इलाज संभव है
0: जी।
1: और हमने रेडियो प्रोग्राम इसलिए चुना है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो निसंतानता से जूझ तो रहे हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं मिल पा रही है
0: जी।
1: तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बीमारी है, विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और इसका इलाज संभव है
0: जी।
1: और अगर आप सही डॉक्टर से सही समय पे मिलते हैं तो आप इलाज से आपको अवश्य आपको बच्चा होता है
0: जी।
1: और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आजकल IVF जैसा जो मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक आ गया है, IVF ICSI, वो अगर लोग अपनाते हैं तो कितने लोग को बच्चा ठहर पा रहा है,
0: बच्चा ठहर पा रहा है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, झिझकने की जरूरत नहीं। जैसा कि हमने कहा ना कि खुलकर बात करनी है, रविवार के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में हम डॉक्टर श्रद्धा से सारे सवालों का जवाब दिलवाएंगे। एक छोटी सी बीमारी है, आराम से ठीक हो जाएगी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं। और ऐसे में हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर आपको बता रहे हैं कि 9162562266 9162562266। बिहार का कोई भी व्यक्ति ना छूटे, हमारी ये कोशिश है। और हम बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएं, अपने बच्चों को प्रेरित करें, न कि ताने दें। हाँ, मुझे ये भी पता है हमारे गांव घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे अपने घर में भी क्या होता है, अरे उसे बच्चा नहीं है, अरे उसे बच्चा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चा नहीं है ठीक है, लेकिन बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, बीमारी है, विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, हमने रविवार को ये कार्यक्रम शुरू किया है और एकदम नए तेवर में कि जो दिल में आए आपसे पूछें।
1: बिल्कुल,
0: हाँ।
1: ये सब लोग उत्सुक होंगे कि इस प्रोग्राम में क्या है और क्या जानना चाहते हैं। इसमें डेफिनेटली हम लोग निसंतानता के बारे में तो बताते ही हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरा चीज बताते हैं, यानी कि वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दर्द दिक्कत है, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कौन कौन सुन सकता है इस प्रोग्राम को। वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दिक्कत है, जिनको मासिक नियमित रूप से नहीं हो रहा है
0: जी,
1: जिनको जिनको अत्यधिक दर्द होता है और कहीं ना कहीं मासिक के समय, और कहीं ना कहीं ये सब कारण होते हैं निसंतानता के। उसी तरह पुरुष जो अत्यधिक बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ये लेते हैं
0: जी,
1: तो वह कहीं ना कहीं वो भी निसंतानता का कारण होता है। तो हम उन सभी को प्रेरित करते हैं कि आप सही लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपका ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहे
0: जी जी।
1: और ये जानना जरूरी है कि क्या

0: करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप सही पूरी तरह से जानकार नहीं होंगे, सशक्त नहीं हो पाइएगा अपने जानकारी में, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि हर महिला का रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका चॉइस होना चाहिए, और वो तभी चॉइस ले सकती है जब वो प्रॉपर तरीके से वो जानकार हो।
1: जी।
0: आजकल हर बहुत सी महिलाएं एमबीसीएस भी हो गई हैं, वो अपना प्रेगनेंसी कुछ दिन बाद प्लान करना चाहती, अच्छी बात है, एमबीसीएस होना चाहिए, प्रेगनेंसी भी आप बाद में प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका सारा चीज ठीक है, इसलिए एक बार अपना जांच जरूर करा लें।
1: जी।
0: और जब जांच में सब कुछ ठीक हो तो आप अपना रिप्रोडक्शन अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं। और हम यहाँ एक चीज बताना चाहते हैं, यानी राजेश एक चीज कहना चाहता है कि बच्चा नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं, आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। और ये सारा कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से। श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी पटना में है, भिखना पहाड़ी में है, आप यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और आने से पहले 9162562266 ये नंबर है, इस पर बात कर सकते। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आपने निसंतानता की बात की आज के इस एपिसोड में, पहली बार बताइए लोगों को कि निसंतानता क्या है।
0: निसंतानता आजकल बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, ये वैसे दंपति को बोला जाता है जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। इसमें ये जानना जरूरी है कि अगर आपने एक साल कोशिश कर लिया और बच्चा नहीं ठहरा तो अब आपको जाकर इलाज कराना होगा। आप इलाज कराएं, कहाँ दिक्कत है, हो सकता है औरत में दिक्कत हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो, जो सामान्य डॉक्टर भी पकड़ लेते हैं। अगर औरत में अंडाशय का प्रॉब्लम है, अंडा नहीं बन रहा है, वजन ज्यादा है, या पुरुष में कोई दिक्कत है तो आप अपना इलाज कराएं। लेकिन ध्यान रखें, अगर दो साल हो गया और अब तक बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले, क्योंकि वो आपका इलाज बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे सही समय पे करेंगे, क्योंकि आपका जो कीमती समय है, जिस समय बच्चा सबसे ज्यादा ठहर सकता है, उस समय इलाज करेंगे, ताकि आपको आसान तरीके से, यानी कि दवाई से, कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे IUI, ये सबसे आपको बच्चा ठहर जाएगा। आप जितना लेट करेंगे आपकी बीमारी उतनी जटिल होते जाएगी और आपको बड़े बड़े प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा है। और एक बात बता दें डॉक्टर श्रद्धा की, अगर जिनको पैसे की समस्या है तो श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी में क्या सुविधाएं उनको मिल रही है।
0: बिल्कुल।
1: जो रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आएंगे यहाँ पर या बातें करेंगे तो उनके लिए पहला कंसल्टेशन फी मुफ्त होगा, अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त है, पहला अल्ट्रासाउंड मुफ्त होगा। अगर आप एडमिट होते हैं तो रहने के लिए, अटेंडेंट के लिए आपको जगह दी जाएगी, हर तरीके से सहयोग किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है ना कि एक बार पैसा नहीं देना है, टुकड़ों में EMI पर आप पैसा देके अपना इलाज करा सकते हैं। और ये टुकड़ा एक दो टुकड़ा नहीं, 24 टुकड़ों में, ये मतलब 24 पार्ट में, 24 भाग में आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि अब डॉक्टर श्रद्धा ने ये मुहिम चलाया है कि बिहार में कोई भी कपल जो है ना निसंतान ना रहे, इलाज कराए, पैसे की वजह से किसी का इलाज ना हो, ये वो नहीं चाहती है। डॉक्टर श्रद्धा सही कह रहे हैं ना, क्या चाहती है बिहार से आप?
0: बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि हर लोग जागरूक हो और उनको पता चले कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है।
1: जी।
0: सही समय पर सही जगह जाकर आप इलाज करा ले।
1: हाँ।
0: ताकि, क्योंकि निसंतानता से मेंटल टेंशन भी बहुत होता है, उनका पर्सनल लाइफ बहुत खराब होता है, उस दंपति को समाज में इधर उधर से ताने बहुत पड़ते हैं।
1: हाँ।
0: तो अगर आप सही समय पे इलाज कर लेते हैं और आपको अगर बच्चा हो जाता है तो हर तरह से ठीक है,
1: हर तरीके से ठीक है। और इसमें जब श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी एक राष्ट्रीय स्तर का आईवीएफ सेंटर है, आगे से बढ़कर हाथ बढ़ा रहा है, तो आपको हाथ पकड़ लेना चाहिए, किसी भी चीज में संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
0: मैं ये बताना चाहती हूँ निसंतानता का कारण क्या क्या है।
1: हाँ, बताइए।
0: निसंतानता का कारण औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। निसंतानता कभी कभी इस कारण से भी होता है कि औरत में अंडाशय में अंडे खत्म हो गए हैं,
1: हाँ।
0: या फिर अंडे ही नहीं बन रहे हो, क्योंकि जब

0: तक अंडा नहीं बनेगा तब तक वो पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिल सकता है और बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो सकता है कि अंडे ही नहीं बन रहे हो, कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर पुरुष के शुक्राणु में कोई दिक्कत
1: जी।
0: या फिर अनएक्सप्लेन्ड, जिसको कि जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, जो अनएक्सप्लेन्ड हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी।
0: तो ये सारे कारण निसंतानता के हैं। और जो भी निसंतान दंपति हैं और जो सही जगह इलाज करते हैं करवाते हैं, तो 60-70% लोग को बच्चा ठहर जाता है।
1: बच्चा ठहर जाता है, लेकिन उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना होगा, जिससे पता चल सके कि महिला में, पुरुष में, या कोई ऐसी अदृश्य चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। और IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान हो चुका है, और आप उसके लिए प्रयास कीजिए। बहुत बड़ी चीज मत मानिए, विज्ञान इतना आगे, मेडिकल साइंस इतना आगे है, ये छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप कहना चाहती हैं।
0: जी हाँ, श्रद्धा IVF ये चाहता है कि हम हर कपल को सही जानकारी दे, ताकि सही समय पर वो डिसीजन ले पाए, अपना संतान सुख का डिसीजन ले पाए, ताकि उनका सपना सही समय पे पूरा हो जाए,
1: सही
0: और
1: समय
0: उनको
1: पर,
0: जूझना ना पड़े।
1: बिल्कुल जूझना ना पड़े, और सारा प्रयोजन कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। बच्चे बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके जीवन में। बड़े बुजुर्गों बार बार कह रहे हैं, कि इसमें आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, पहचानिए, आगे बढ़िए। हमारे समाज में आज भी बड़े बुजुर्गों की बातें सुनी जाती हैं, ध्यान से सुनी जाती हैं। और जब डॉक्टर श्रद्धा नियमित रूप से अपने कीमती वक्त में से निकाल के रेडियो में आती हैं, बोलती हैं, आपकी काउंसलिंग करती हैं, तो आप घर पर बैठ के तो कर ही सकते हैं ना। पूरे बिहार में हम इसे लेकर आ रहे हैं कि पूरा बिहार जो है निसंतानता से मुक्त हो जाए। कुछ अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहिएगा श्रद्धा, IVF के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। आज इंट्रोडक्टरी एपिसोड है हमारा, संडे है।
0: मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में हम मरीज की का जो इलाज है वो तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हम संवेदना के साथ इलाज करते हैं। हम समझते हैं हर उस मरीज का दर्द जो निसंतानता से जूझ रहा है, और ये दर्द समझते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ट्रीटमेंट करें, बेहतरीन का बेहतरीन इलाज हो पाए, और उनका निसंतानता का जिस चीज से जूझ रहे वो खत्म हो पाए और उनका सपना पूरा हो।
1: सपना पूरा हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि विश्वास अगर हो गया ना, तो आधी समस्या तो वहीं दूर हो जा रही है। और हम एकदम खुले मन से इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के घर में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी आपके साथ खड़ा है। बच्चा नहीं हो पाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक रोग है जिसका इलाज किया जा सकता है। और इसी क्रम में हम अपने आगे से डॉक्टर श्रद्धा का नंबर दे रहे हैं, खुलकर बात कीजिए। पुरुष बात कीजिए, महिला बात कीजिए, बड़े बुजुर्ग बात करें, जो चाहे बात करें, और सकारात्मक रिजल्ट के लिए बात करें। नंबर नोट कीजिए, 9162562266, 9162562266, हिंदी में 9162562266 ये नंबर है। इस पर बेबाक बात करें, एकदम खुलकर बिना किसी शर्म के, संकोच नहीं करना है, अब बात करना है, समाधान निकलेगा। फिलहाल ममता का आंचल रविवार का ये एपिसोड देखते देखते समय खत्म होने को है। चलने से पहले डॉक्टर श्रद्धा को भी हम साथ लिए चलते हैं और दोनों कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: हाँ तो प्रिया मीनू बहन, मीनू इतना प्यारा नाम है ना कि हम प्यार से प्रिया बोल देली। तो देखा कि
4: तो
3: अभी हम सब सुनते हैं लिए प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल, और अभी चौपाल के समय संपन्न होते ही खेती गृहस्थी में हमने सब बातचीत कर भी।
4: हाँ तो खेती गृहस्थी में अब समय हो गई बा प्रायोजित कार्यक्रम के, तो चली सुनल जाओ रोजगार।
3: चला सुनही।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
5: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, और मेरा नाम है राजेश, और कार्यक्रम का नाम है रोजगार। रविवार का दिन है और इसमें हम आते हैं आपको गुरौल वालों बताने कि आपके गुरौल

0: में एक संस्थान आ चुका है जो कंप्यूटर पढ़ाता है और दूसरा संस्थान जो है हेल्थ सेक्टर में बीएससी नर्सिंग एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई करता है और दोनों श्री राज ग्रुप का संस्थान है और आप लोगों के डिमांड पर ही गोरौल में इन दोनों संस्थाओं का हाँ निर्माण किया गया है, स्थापित किया गया है। बीसीए और बीबीए के लिए एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम के लिए गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार लगातार आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ आज भी हैं, लेकिन उनको बुलाएं उससे पहले अगर जो आपको फोन नंबर चाहिए, कुछ सवालात हैं पूछना है तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। नंबर नोट करें 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। और अब स्वागत एक बार फिर से स्वागत है रोजगार कार्यक्रम में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं रोजगार कार्यक्रम में, क्योंकि जानकारियां जो मिलती हैं, रिस्पांस कैसा है ये बताइए।
1: देखिए, रोजगार की बात आपने जहां तक कही तो सबसे जो अभी के समय में सबसे ज्यादा रोजगार वाली शिक्षा जो है यह मेडिकल साइंस ही है,
0: हेल्थ सेक्टर
1: है। और उसमें भी खास करके लड़कियों के लिए नर्सिंग का क्षेत्र जो है यह स्वर्णिम है। पहले लोग बैंक के तरफ झुकाव था, उसके बाद शिक्षक के तरफ झुकाव था, अभी लड़कियों का सबसे ज्यादा झुकाव जो है वो नर्सिंग के क्षेत्र में है। कारण क्या है कि यह जो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और उसके साथ साथ आत्मसंतुष्टि के साथ साथ सेवा का भाव भी मिलता है, और सेवा का भाव मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, और साथ ही साथ अर्थ का भी कोई परेशानी नहीं रहती है। तो इस तरह से यह क्षेत्र जो है
0: जी,
1: यह क्षेत्र बेहतर क्षेत्र है, सबसे अच्छा क्षेत्र है। और इस तरह से बच्चे लोग अभी जो है वो नर्सिंग का क्षेत्र खोज रहे हैं। नर्सिंग का क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र है और इसीलिए बच्चे लोग का आकर्षण भी सबसे ज्यादा नर्सिंग के क्षेत्र में है,
0: आकर्षण नर्सिंग के क्षेत्र में। एक बात, जब नर्सिंग की चली है और हेल्थ सेक्टर की चल रही डॉक्टर साहब, तो हम रोजगार कार्यक्रम जो कि लेके आ रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से, एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये सच्चाई है कि अभी जो वैकेंसी आ रही है या जो अभी आने वाले 2-3-4 साल में आएगी, उसमें बच्चे कम पड़ जा रहे हैं, सीट ज्यादा हो जा रहा है?
1: हाँ, अब तक तो ऐसा ही होते आ रहा था।
0: हाँ,
1: अब तक ऐसा ही होते आ रहा था, लेकिन अब जो हुआ जो थोड़ा पिक एंड चूज होने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली। अगर आप 5 वर्षीय योजनाओं में देखें तो सरकार की ही योजना मान लीजिए, तो इसमें प्रत्येक जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज खुलनी है
0: जी,
1: प्रत्येक जिला में एक एक नर्सिंग कॉलेज खुलना है
0: जी,
1: प्रत्येक जिला में जितना भी सीट सदर हॉस्पिटल में है, सब डिविजनल हॉस्पिटल में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है, सबकी दुगनी करने का लक्ष्य है। तो इस तरह से अगर दुगनी लक्ष्य है सबको करने का, तो स्टाफ भी तो दुगना होना पड़ेगा।
0: तो गोरौल वालों से कह दें कि रोजगार की कोई समस्या नहीं होगी?
1: बिल्कुल, इस क्षेत्र में अभी सेचुरेशन आना बहुत दूर है, अभी सेचुरेशन ही आना बहुत दूर है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: कमी के बातें कहना मतलब कि अभी के समय में अनुपयोगी होगा,
0: माने रोजगार ही रोजगार है हेल्थ सेक्टर में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार ही रोजगार है,
0: और ऐसे में रोजगार ही रोजगार है, और ऐसे में गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का खुलना अपने आप में लॉटरी खुलने जैसा है। हम बार बार कहते हैं ना कि आसपास का जितना इलाका है 40 किलोमीटर का, मुजफ्फरपुर भी जाने की जरूरत नहीं, ना पटना आने की जरूरत है, अब आपको सीधे गोरौल आना है, संस्कार नगर है, वहां गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना हो गई, जहां एसएस प्रोफेशनल जिस कैंपस में है, और ये सारा जो है ना श्री राज ग्रुप का है, जिसका कार्यक्रम आप सुनते रहे वर्षों से, पैरामेडिकल है पारस, उसी ग्रुप का ये सारा है, और डॉक्टर साहब ने स्पेशल अनुरोध पर वहां ये संस्थाएं स्थापित की है आपके लिए। इसी सत्र से शुरू होगा पढ़ाई, नंबर नोट कर लीजिए अगर कुछ

0: कुछ जानकारी चाहिए तो खुल के बात कीजिए, शक चाहिए नहीं, नंबर हम आगे से दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब फ्री होंगे ना होंगे, होंगे भी नहीं तो उठाना पड़ेगा फोन। 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। एक क्वेरी आई थी डॉक्टर साहब कि जब आपका पटना में श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी ये सारी पढ़ाई होती है, तो क्या गोरौल में वही सुविधाएं आप दीजिएगा उन लोगों को?
1: देखिए, नया होता है तो और कुछ बेहतर होता है।
0: हाँ।
1: गोरौल में और कुछ बेहतर होगा।
0: अच्छा,
1: जो यहाँ है उससे और कुछ बेहतर होगा। जैसे देखिए, वहाँ का जो नॉर्म्स के हिसाब से क्लासरूम है।
0: हाँ।
1: उसके साथ और नॉर्म्स के हिसाब से पटना था तो थोड़ा छोटा पड़ जा रहा था।
0: हाँ।
1: लेकिन वहाँ सफिशियंट जगह है।
0: हाँ।
1: और सफिशियंट संसाधन भी उपलब्ध हो गए।
0: उतना बड़ा है, छोटा पड़ जा रहा।
1: नहीं देखिए, उस हिसाब से हम लोग इस बिल्डिंग को, ये जो चारों बिल्डिंग आपका है, वो उसके हिसाब से नहीं चला था, नॉर्म्स तो दूसरा था।
0: लेकिन डॉक्टर साहब ने कितनी राई से बता दिया कि चार चार बिल्डिंग है यहाँ, और फिर भी उसको छोटा कह रहे हैं। यही तो चाह रहे हैं कि आप वहाँ दे पाइएगा कि नहीं दे पाइए।
1: मैं उससे बेहतर वहाँ दे पाऊंगा,
0: उससे बेहतर आप
1: जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में कहा, हॉस्पिटल भी बस खुलने ही वाला है।
1: हाँ जी, बिल्कुल,
0: है ना। तो लगातार हम आपके बीच में आ रहे हैं ये रोजगार कार्यक्रम लेकर संडे के दिन, और आपके माता पिता से भी अनुरोध करते हैं युवा साथियों कि अगर कहीं कोई समस्या हो, इफ एंड बट हो, क्योंकि जिंदगी का ये चार साल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यही बुनियाद होती है पूरी जिंदगी, जिस पर आप आसानी से सफलता के साथ जिएंगे या फिर क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं, तो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने पिछली बार कहा था, याद होगा कि बहुत घर में अभी भी हेजिटेशन है कि लड़कियों को हम बाहर नहीं भेजेंगे, क्या माहौल होगा, इसलिए गोरौल जो है ना, हमने पिछली बार भी कहा था, गोरौल के आसपास बगल में भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, राजा पाकर, बिदुपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, सारे बच्चे आ सकते हैं, और कैंपस अपना है, बहुत बड़ा कैंपस है, सेफ कैंपस है, और डॉक्टर साहब लगातार यहाँ भी बने रहते हैं, ये बात हम आपको बता दें, इसलिए डॉक्टर साहब से खुल के बात कर लीजिए। 9162413233 ये नंबर है, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। डॉक्टर साहब, वैसे युवा साथियों ने कुछ सवाल पूछा कि फिर से बताइए कि किसी भी स्ट्रीम से अगर हम हैं तो हेल्थ का कौन सा कोर्स आपके गोरौल से कर सकते हैं, बताइए।
1: देखिए, दो स्ट्रीम जो है उन सबके लिए है। जैसे जीएनएम का कोर्स जो है
0: जी,
1: वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी क्षेत्र से हो
0: जी,
1: वो अगर इंटर पास किया हो।
0: हाँ।
1: तो वो जीएनएम का कोर्स कर सकता है। एक दूसरा लड़कियों के लिए है।
0: हाँ।
1: कि किसी भी स्ट्रीम से अगर इंटर पास की है तो एएनएम का कोर्स कर सकती है। तो ये दोनों कोर्स जो है वो बहुत ही उम्दा कोर्स है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मांग वाली कोर्स है। अगर देखिए, आप अगर कोई भी टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, अगर टेक्निकल एजुकेशन आप नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में समस्या बहुत आएगी।
0: हाँ हाँ।
1: तो आगे अगर बढ़ना है, अपने सपनों को उड़ान देना है, तो निश्चित रूप से आपको टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाना पड़ेगा और टेक्निकल एजुकेशन करना पड़ेगा, तभी आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हाजीपुर, वैशाली, सभी जगह काम कर रहे हैं, और हमेशा हमेशा मैं उसको मिल कर करके हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे जो पास आउट बच्चा हुआ, जो विभिन्न अस्पतालों में देखने को मिलता है। यह सुखद अनुभव होता है हमें कि जब हम किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे आकर के हमसे मिलते हैं, सर इधर कहाँ आए, किस काम के लिए आए सर, मैं बोला कि ऐसे ही पता घूमने के लिए आया था, अपने आप को तुमको देख कर करके और गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मुझे पता चला कि तुम यहाँ काम कर रही हो, इसलिए मैं तुमको देखने आ गया था, तो खुश हो जाता है, वहाँ के प्रभारी खुश हो जाते हैं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया है और बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया है।
0: तो इस कड़ी में आप भी शामिल हो सकते हैं, अगर आपने गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अगर आपने कोर्स किया है। डॉक्टर साहब, एक है सुनीता कुमारी महनार से लिखती हैं, एक सवाल पूछा था इन्होंने व्हाट्सएप पर, लिखा था कि बीएससी बॉटनी कर रही हैं सेकेंड ईयर में, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल में अगर जाती बीएससी

0: का कोई दूसरा कोर्स हेल्थ सेक्टर का अगर चुनती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो परामर्श मांग रही है कि क्या अभी भी हम पीछे से आके, ठीक है 2 साल जाएगा, लेकिन हम क्या टेक्निकल कोर्स हेल्थ सेक्टर का कुछ कर सकते हैं?
1: कर सकती है, जैसे देखिए अगर बीएससी है तो आईएससी बायोलॉजी है ही, तो बीएससी इसमें भी कर सकती है। हमारा एक प्रश्न हमेशा बच्चों लोग से होता है कि बीएससी क्यों, बीएससी नर्सिंग क्यों नहीं? वैसे ही करते हैं कि इंटर के बाद एमए क्यों, बीए क्यों, जीएनएम क्यों नहीं?
0: जी जी।
1: तो ये सब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्यों नहीं, जब अगर बैचलर करना है तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ बैचलर कर लीजिए, इससे आपका बैचलर डिग्री भी पूरा हो गया और उसके साथ साथ आप टेक्निकल एजुकेशन में भी आ गए। तो यही मैं उनसे बच्चों से कहता हूँ कि देखिए समय का महत्वपूर्ण समझिए, समय का महत्ता को जानिए, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और समय बहुत कीमती होता है, और समय को अगर पार कर देंगे तो फिर पढ़ने और लिखने का समय निकल जाएगा, तो फिर आपके पास कुछ नहीं मिलेगा।
0: यही सवाल इनका है कि 2 साल गुजर चुके हैं तो क्या अभी हम वापस लौटें तो हमको बेनिफिट होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी पढ़ाई हमेशा उसमें मदद ही करती है। अगर 2 साल उन्होंने बॉटनी का पढ़ाई कर लिया तो अगर बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहती है तो पर भी 1 साल का तो बचत है ही उनको, और वो पढ़ाई जो है वो कभी, जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बॉटनी में का भी जो पढ़ाई किए हैं वो इसमें मददगार होगा और निश्चित रूप से वो और लोगों के अपेक्षाकृत बेहतर करेंगे। वो
0: जिस कोर्स में क्रेडिट कार्ड से लोन है, क्या संस्था मदद करेगी उसको दिलवाने में?
1: बिल्कुल, सभी कोर्स हमारे जो दोनों कोर्स हैं, जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है, दोनों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है, उसमें सबको दिया जाएगा।
0: लड़कियों के लिए कैंपस सेफ है?
1: 100%।
0: आप क्या कहते हैं?
1: 100%
0: आ जाना चाहिए।
1: बिल्कुल 100% सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
0: ढेर सारी जानकारियां मिली और एक बार फिर से गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से और ये रोजगार कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब, तो जानकारियां देकर चले गए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो भी बातें हैं साफ साफ राफ साफ उन्होंने कह दिया। अब टकाटक टकाटक टकाटक आपको सोचना है कि गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाना है कि नहीं जाना है। हम तो कहेंगे जाना है। गोरौल, भगवानपुर, जंदाहा, राजा पाकर, हाजीपुर, वैशाली, जितने भी उस इलाके के युवा साथी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जी हाँ, डॉक्टर साहब से जो हमने बात की उस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। ये रोजगार कार्यक्रम है, अगर आपको भरोसा है तो संस्कार नगर गोरौल, एकदम स्टेशन है ना, गोरौल स्टेशन देखे है ना, वहीं से उतरिएगा और पीएससी की तरफ बढ़िएगा तो बीच रोडवे पर है, हाँ, बड़का इंस्टीट्यूट बना है जिसमें एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी है और जो बीसी और बीबीए के लिए है, और ये गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम एएनएम के लिए है, और दोनों संस्थान जो बुधवार को आप सुनते हैं ना, पैरामेडिकल है पारस श्रीराज ग्रुप का, उसी ग्रुप का है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा, सुने थे कि नहीं, कि पटना से बेहतर सुविधा वहां मिलने जा रहा है इसी सत्र से। तो बस नंबर नोट कीजिए, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर वही एकदम आसान वाला 9155558888, यही नंबर है, इस पर बात कर लेना है और दाखिला लेकर, हाँ एकदम निश्चिंत, बुनियाद मजबूत कर लेनी है, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। राजेश को दीजिए इजाजत, अगले रविवार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4: हाँ, तो अभी हमने के सुनत रहे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
5: भाई देखा, अब हम थोड़ा सा हम लोग को खेती गृहस्थी के बारे में बातचीत करे के चाहिए।
4: हाँ हाँ।
5: किसान भाई सोचते हो तिनकी अभी तक कुछ फायदा के बाद का है ना हो रही है, तो हम सब आज बात करवे कृषि चर्चा में हरी खाद लगी ढैंचा के खेती। तो ढैंचा के खेती करना हरा खाद लगी बहुत ही लाभदायक हो
4: गई, प्राकृतिक मतलब खाद भी है ढैंचा खेत के।
5: ढैंचा मट्टी के जल धारण क्षमता के भी बढ़ावा है। खेत में लगभग 50 से 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के खाद प्राकृतिक रूप से भी एकरा से मिल जाए, जेकरा से रासायनिक खाद के खर्चा कम हो जाए। और गेहूं के कटाई के बाद मेनू भाई ख्याली खेत पर किसान भाई ढैंचा के फसल

0: उगा के
1: हाँ
0: भूमि के उपजाऊ और बना बढ़ा मतलब जो उपजाऊ शक्ति है बढ़ा सक हथिन,
1: हाँ
0: और ढैंचा के खेती सामान्य तरीका से करल जा सक है। एकरा है कि बुआई के बाद 1 से 1.5 महीना के अंदर ही एकर जो लंबाई 3 फीट हो जाए,
1: हाँ
0: एकर गांठ में नाइट्रोजन के भंडार होवे है। साथ ही साथ ढैंचा के कटाई के बाद एकरा खेत में फैला करके एकरा खाद तैयार कर देवल जाए।
1: देखिए, ढैंचा के खेती खातिर जलवायु के बात करी तो गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होखेला। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान नीमन मानल गईल बा। और वहीं भूमि की बात करी तो लगभग 7 प्रकार के मिट्टी में उगा सकीला, चाहे वो दोमट मिट्टी होके, बलुई दोमट होके, या हल्का क्षारीय भूमि, मतलब सब तरह के मिट्टी में नीमन से वृद्धि होखेला, एकर बढ़वार होखेला। और अभी जैसे कि मई से जुलाई के समय ढेर मनी उपयुक्त मानल गईल बा, धान के रोपाई से लगभग 45 से 50 दिन पहले बोल जाला एकरा। हरी खाद के खातिर लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहेला। खेत में एक बार से 2 बार जुताई होके के चाहिए, पाटा चला के खेत के समतल कर लेवे के बाद। अब पर्याप्त नमी रहे के चाहिए, ऐसा ना कि खूब पानी डाल के एकदम कादो कर देना बा, ऐसा ना रहे के चाहिए। और ढैंचा की खेती से लाभ की बात करी तो नाइट्रोजन की पूर्ति होखेला, मट्टी के उर्वरा बढ़ जाला, रासायनिक उर्वरक के बचत होखेला, खर पतवार नियंत्रण होखेला, सूक्ष्म जीव के वृद्धि होखेला, फसल उत्पादन में भी वृद्धि होखेला।
0: बहुत बढ़िया फायदा की चीज़ है। तो हरा खाद लगी ढैंचा के खेती जरूर करे के चाहिए किसान भाई के। और ये जब नरम अवस्था में रहे, जब एक और फसल बोल जाए तो
1: हाँ
0: 40 से 50 दिन के बाद ये थोड़ा ये नरम रहे, और
1: हाँ
0: यही घड़ी मट्टी पलटे वाला हल से जुताई करके फसल के खेत में अच्छा तरीका से ढैंचा के मिलावे देवे के चाहिए। अगर खेत में नमी थोड़ा कम हो तो पानी थोड़ा दे करके ओकरा नमी ओकर बढ़ा देवे के चाहिए। एकरा से फसल जे है ढांचा के उस सड़ के खाद के रूप ले ले है।
1: आ देखिए, अब बात करी किसान भाइयन के फायदा वाला कि कीटनाशी जे पदार्थ बा ओकर रख रखाव और ओकरा कैसे उपयोग करम, ओकरा में का सावधानी करम, ओकर जानकारी रहे के चाही। तो
0: बिल्कुल
1: देखिए, कीटनाशक के घोल बनावे हेतु घरेलू बर्तन के प्रयोग तो एकदम ना करे के चाही। जैसे कि जे चौका में बर्तन के यूज करतनी, उपयोग करतनी, ओकरा एकदम ना उपयोग में लाई। खाली पेट कीटनाशक के छिड़काव ना करी। कीटनाशक के घोल तैयार करे समय पहले कीटनाशक डाली, फिर पानी डाल के घोल बनाई। और समय समय पर एगो डंटा ले ली, चाहे लाठी ले ली, ओकरा से लकड़ी के रहे जेकरा से हिलाते रही। आ ई भी ध्यान रखी कि स्प्रेयर लीक तो नहीं करत, जैसे जेकरा से छिड़काव करे खातिर भरतनी, उ लीक ना करे के चाहिए, मतलब बाहर ना
0: बिल्कुल
1: निकले के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और अगर बाहर निकल गए तो शरीर पर गिरे के भी डर रहेला,
0: बिल्कुल
1: आ ई
0: एकरा
1: जहर
0: से खतरा
1: होखेला।
0: भी है ना।
1: हाँ, स्प्रेयर मशीन के नोजल हमेशा साफ करके रखी ताकि कीटनाशक के डिब्बा के खोले के मुंह जो होला वो प्रयोग में ठीक से होखे। हाँ
0: और जे जे हवा के जे रुख है वही तो वो धीरे धीरे छिड़काव कर विपरीत दिशा में छिड़काव ना करे के चाहिए।
1: हाँ
0: और बीमार व्यक्ति, घाव फोड़ा चोट से पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती जे महिला थीं उनका ये कीटनाशक के छिड़काव बिल्कुल भी ना करे के चाहिए।
1: हाँ
0: कीटनाशक छिड़कते समय बहुत ही
1: हाँ
0: सावधानी बरते के जरूरत है। आँख नाक मुंह बढ़िया तरह के ढक लेथिन, चश्मा लगा लेथिन, हाथ में ग्लव्स
1: ग्लव्स
0: पहन
1: पहन
0: लेथिन
1: ली।
0: और
1: हाँ
0: माथा उथा सब बढ़िया से ढक के और तब
1: हाँ
0: कीटनाशक छिड़काव करथिन। और जब छिड़काव कर लेथिन तो कपड़ा बढ़िया से धो देवे के चाहिए,
1: हो सके तो नहा ली,
0: नहा भी
1: साबुन
0: लेके चाहिए।
1: से लगा हुआ के नहा
0: हाँ
1: ली,
0: हाँ हाँ
1: ये भी बहुत
0: तो बहुत
1: जरूरी बाटे।
0: सुरक्षा से कीटनाशक के छिड़काव करे के चाहिए और सावधानी बिल्कुल भी असावधानी ना बरते के चाहिए। जे जे जरूरत जरूरी है ओकरा जरूर सुरक्षा के लगी
1: हाँ,
0: वो ध्यान रखे
1: आ
0: के
1: देखिए,
0: चाहिए।
1: कीटनाशक के विरुद्ध, मतलब ओकर अगर कोई तरह के कीटनाशी के प्रभाव हो गेल बा तो ओकरा खातिर का प्राथमिक उपचार बा, जैसन कि रउआ कहनी कि एकर छिड़काव कैला के बाद तुरंत नहा लेवे के चाहिए, हाथ पैर धो लेवे के चाहिए, साबुन के उपयोग करे के चाहिए। आँख के स्पर्श ना करे के चाही। अगर कोनो कारण से सांस ले में परेशानी होता तो खुला हवा में चल जाई, ऐसे ना होके कि मतलब छिड़काव करत नहीं ओकरे में।

0: कम घुटाता वही में रहता नहीं, ऐसा ना होए के चाहिए।
1: और कोई
0: और
1: तरह की दिक्कत हो तो तुरंत
0: हाँ
1: चिकित्सक से संपर्क कर लेवे के चाहिए।
0: हाँ
1: तो ये सब सावधानी बरतना जरूरी है और
0: हाँ
1: कीटनाशक के छिड़के में। और भाई सावधानी तो हम सब बरते लगी बात कह ली, और किसान भाई इंतजार करते होते हैं कि कुछ
0: गीत
1: गीत नाद
0: के
1: हो जाए।
0: राउर इशारा गीत की तरफ रहे, तो चली देर निखे करे के हमने के सुनल जाओ गजेंद्र महाराज से ई दहेज प्रथा गीत।

0: हाँ, तो
1: वाह,
0: बहुत निमनी दहेज प्रथा गीत रहे
1: गजेंद्र
0: गजेंद्र महाराज
1: महाराज के,
0: के।
1: धन्यवाद।
0: सब गीत ला, और अब तो घड़ी के इशारा होता कि अब हमने के चले के चाहिए, आज जाएं
1: एकदम
0: तब ना कल आएं।
1: एकदम
0: तो
1: एकदम
0: प्रणाम
1: एकदम,
0: अंजुला बहिन।
1: प्रणाम मीनू बहिन।

0: चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा

0: या इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
8: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
7: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: CIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव।

0: होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं।
1: ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति है पूरे, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, यह हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है।
0: इधर सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। वहीं प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आलोक सिंह ने कहा कि वे संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे।
3: देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उन्होंने निर्वहन दिया है उसको निष्ठापूर्वक हम लोग निर्वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पार्टी का भी संगठन का चुनाव हुआ, 22 लाख से ऊपर हम लोग के सक्रिय सदस्य बने, इसको और आगे लेके जाएंगे हम लोग।
0: इधर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन 13 जून को नई दिल्ली में होगा। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस महाधिवेशन के दौरान पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव सम्पन्न होगा।
4: हाँ, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी 13 जून को। उस दिन भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बिहार से भी और दूसरी जगह से लोग आएंगे, वहां भी कार्यक्रम होगा।
0: अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि

0: परीक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने आज पटना के एक चर्चित निजी कोचिंग संस्थान की जांच की। जांच के दौरान संस्थान में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं पाई गई। अग्निशमन विभाग के सहायक जिला फायर ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि संस्थान को कमियों को ठीक करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
1: जो भी कमियां पाई गई है उनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा इस सप्ताह के अंदर, जो एक सप्ताह के अंदर सारा जो फायर सिस्टम सेफ्टी

0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश पुनर्परीक्षा नीट 2026 के लिए सीटी इंटीमेशन स्लिप को लाइव कर दिया है। उम्मीदवार अब इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया था। अब नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 जून को देश भर में किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है?
2: इधर आइए। इधर
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। श्री मोदी लंबे समय तक लगातार पीएम पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दायित्व को लगातार 4398 दिनों तक संभाला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है।
5: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा नेहरू जी से भी आगे रहा, लेकिन अंतर रहा। नेहरू जी के कार्यकाल में घोटालों का आरोप शुरू हो गया था। मोदी जी के 25 साल चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहते हुए कोई कह नहीं सकता कहीं एक दाग लगा हो। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से देश को आज यहाँ तक ले जाने का काम किया।
0: विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक कल नई दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे। इधर एनडीए के घटक दलों ने इंडी गठबंधन की बैठक की आलोचना की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है।
6: इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन है।
0: वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है, इस गठबंधन को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है।
7: आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर्फ उटवल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है। और एनडीए तो एकजुट है, उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उटवल है, वही जाने।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू।

0: हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। पंकज कुमार गुप्ता ने एनटीपीसी कांटी के परियोजना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता और सुरक्षा के उत्तम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। एनटीपीसी कांटी परिवार ने श्री गुप्ता के सफल और प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
1: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के समीप NH 120 पर आज 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब कारोबारी ने हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइकिल ऑन संडे अभियान के तहत आज पटना के इनकम टैक्स चौराहा से पटना जू तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली को पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में LPG सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
8: ये आकाशवाणी का

0: अब पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
1: राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा, लोक सेवाओं तथा अन्य जनहित से जुड़े कुल 48 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक मामले का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। युवा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद कंपनियों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिला निबंधन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार मेले में साक्षात्कार के उपरांत 70 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार पाने का अवसर मिलता है और उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इधर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, नियमित व्यायाम के प्रति लोगों को जागरूकता करने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को जिले भर में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 6 बजे गांधी स्टेडियम से साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। यह रैली गांधी स्टेडियम से निकलकर मेन रोड होते हुए जीडी कॉलेज मार्ग, हर हर महादेव चौक एवं ट्रैफिक चौक से होकर पुनः गांधी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में जिला प्रशासन के कई अधिकारी, युवा, छात्र छात्राएं तथा खेल से जुड़े युवाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
2: लगभग 5 किलोमीटर की साइकिल रैली की है और यह दिखाने के लोग जागरूक करने के लिए कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी प्लस ईंधन बचाने के लिए भी हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचता है। इसलिए हम लोग छोटे मोटे कार्यों के लिए या छोटे मोटे लघु कार्यालयों के लिए अगर हम लोग साइकिल का उपयोग करें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और सरकार के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा है।
1: भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए बेगूसराय के सदर अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के बेहतर उपचार एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष लू वार्ड की स्थापना की गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा 10 बेड का यह अलग वार्ड तैयार किया गया है जिसमें लू से प्रभावित मरीजों के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें ORS, IV फ्लू, आवश्यक दवाइयां तथा आपातकालीन उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि मरीज को तुरंत एवं प्रभावी उपचार मिल सके। इसके लिए साथ ही मरीजों की सतत देखभाल एवं उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है। यह टीम लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर रखेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि लू से प्रभावित मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बीते दिनों जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में मटिहानी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया गांव सिंहपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू सेवन और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में सभी उपस्थित लोगों को तंबाकू एवं धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। IMA बेगूसराय के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशा मुक्त जीवन शैली अपनानी होगी। बेगूसराय जिले में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन की ओर से बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुनीता जोशी से गीत।

0: अभी आप सुनीता जोशी से गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: This is Akashvani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला।

0: हम इसके आभारी हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
1: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए। और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
0: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
1: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे

0: परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे
1: जी
0: तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत
1: जी
0: सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के
1: से
0: पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, कभी
0: हाँ,
1: मिलते नहीं
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है, और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे

0: बॉट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं। एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू

0: किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से।

0: यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है, तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत

0: नहीं दे रहा। तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
0: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
0: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
1: बिना खर्च का तरीका है योग।
0: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य

0: क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ गीत। कलाकार हैं सुनीता जोशी।

0: अभी आप सुनीता जोशी से गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

0: दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान

0: को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं

0: दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
3: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest.

0: extra goal, beating Kazakhstan's Yedigay Kasimbev 2-0 in the 125-kilogram final. Meanwhile, Mohit Kumar secured a bronze medal in the 65-kilogram category after registering a commanding 17-6 victory over Kazakhstan's Ozimzan Dastanbek. In the 97-kilogram category, Vicky bagged bronze, defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single title clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing 4th Grand Slam final of his career, while 10 seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government launched today the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and an entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, करसियांग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी के हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी, ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती, मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है, और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल

की दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियांग, कालीपोंग और सिलीगुड़ी को 5 हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने इन कस्बों की तामीर के लिए तआवुन देने की बात कही है, जिससे सियाहत, तिजारत, सनत और इलाकाई मईशत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मोहतरमा पॉल ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे और सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगले माह की पहली तारीख से सिर्फ नामजद मकामात पर ही पार्किंग की इजाजत होगी और गैर कानूनी पार्किंग की सूरत में जुर्माना अदा करना होगा। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY पर अमलावरी करने वाली 36वीं रियासत बनने के लिए तैयार है। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम है। सेहत से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार रियासत में ABPMJAY पर अमलावरी के सिलसिले में कल एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इस मुफाहमतनामे पर नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मसावी और काबिल रसाई हिफ्जान सेहत की हसूलियाबी की जानिब सफर में ये मुफाहमतनामा एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए नतायज के बाद की खिदमात के ताल्लुक से जारी पोर्टल पर मुशाहदे में आए मामलात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरखास्त देने का आज आखिरी दिन है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोर्टल आज आधी रात तक खुला रहेगा। उसने तालिब इल्मों से कहा है कि वो वक्त खत्म होने से पहले पहले अपनी दरखास्तें मुकम्मल करके सबमिट कर दें। अमरीका की ओहायो रियासत के टोलेडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हुई गोलियां चलने के एक वाकये में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये गोलीबारी ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के करीब हुई। ये 2 रोज तक जारी रहने वाला सालाना फेस्टिवल है, जो मौसीकी के प्रोग्रामों और तारीखी मकामात की सैर के लिए जाना जाता है। टोलेडो के डिप्टी पुलिस चीफ जो हफरमैन ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि 2 अफराद ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तलाश शुरू कर दी है। ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने इस वाकये पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरिकी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरबी मानसून शुमाली मगरबी बंगाल के कुछ और हिस्सों, पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। उसने कल साहिली कर्नाटक, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दराज मकामात पर तेज और इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश हुई। इस बारिश से शहर के बाशिंदों को गर्मी और हब्स से कुछ राहत मिली। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश आज रत्नागिरी जिले तक पहुंच गई है। जिले के राजापुर तालुका में आज सपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारत की खवातीन फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। भारत ने गोवा के मडगांव में कल हुए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त दी और छठी मरतबा ये खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों ने गैर मामूली कारकर्दगी, जोश जज्बा और टीम वर्क का मुजाहरा किया। नायब सदर ने अपने पैगाम में कहा कि यह कामयाबी फुटबॉल में खवातीन की बढ़ती हुई कुव्वत की मजहर है और यह पूरे मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए तहरीक का बायस बनेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मंगोलिया के उलान बातर ओपन में भारतीय पहलवानों

0: उन्होंने आज भी अपनी मुतासिरकुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते। 61 किलोग्राम के जुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के एसाइल को फाइनल में सिफर के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। दिनेश ने 125 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के कासिम बेग को सिफर के मुकाबले 2 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के दास्तान बेग को 6 के मुकाबले 17 से हराया। 57 किलोग्राम के जुमरे में विकी ने मंगोलिया के गानबाटर को सिफर के मुकाबले 4 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा हासिल किया। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी एक ऑफ टेस्ट में मैच के दूसरे दिन आज अफगानिस्तान की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। वह भी भारत के स्कोर से 451 रन से पीछे हैं। भारत की तरफ से पहली बार खेलते हुए मानसूथर ने 3 विकेट जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए। भारत ने दिन में अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया। कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन जबकि केएल राहुल ने 100 रन बनाए। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों ने 81-81 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से सलीम सैफी 6 विकेट हासिल करके नुमाया गेंदबाज रहे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 70वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि यह तहरीक बन गई है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियोंग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: उस दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.

0: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
1: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला, वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
3: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
1: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
3: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे।

मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे। एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे। एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद

0: समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
1: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
0: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
2: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
0: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने
5: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए

0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
2: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला दे के उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पे बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
0: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

आकाशवाणी एट 90 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं

0: दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना, ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना, लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है, और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास

0: दर्द है, चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवर ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
2: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
3: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
2: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
4: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है।

आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke parivesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायोलिन पर Sri Saket Pantula.
1: Sri M.S.N. Murthy's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M.S.N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharilu.

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंचला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वेर इन वी प्रेजेंटेड अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही वॉज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड ऑन द घटम बाय विद्वान

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः के 5:45 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।